क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

जिंदगी हमें तो लाइट नहीं होने का नशा है। फिलहाल भैया दो दिन से ऐसी मसले आ रहे हैं कि लाइट वेट का कुछ पता ही नहीं है। आंधी पानी तूफान के बीच फाइनली आपका शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग गोंडा शो। एंड यस, आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो फिलहाल जिस तरह का बवाल मचा हुआ है कुदरत के जरिए गोंडा और आसपास के ज़िलों में, ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई वापस से कोविड का टाइम आ गया है या वापस से कोई ऐसी पैंडमिक में हम फंस गए जिसमें घर में कैद होना पड़ेगा। बाहर बारिश भी हो रही है प्लस आंधी भी चल रही है। मतलब अभी तो नहीं है, ना बारिश है और ना आंधी है, बस उसकी बर्बादी की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो पावर कट हुआ है, वो अब कब तक आएगा तो कोई नहीं बता सकता। फिलहाल जिस तरह के बड़े बड़े पेड़ गिर चुके हैं लाइन पर तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं कि हर सुबह जो है वो ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। सो कल रात तक जहाँ हम हर कोई परेशान था कि भाई घर का खाना कैसे बनेगा और चार्जिंग कैसे होगी और ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, ऐसा लगा कि फिर वापस से हम उसी दौर में चले गए हैं जहाँ से हमने बचपना जिया था। कि कई कई दिन लाइट्स नहीं होती थी और उसके बाद जो है वो पूरा काम हमारा चला करता था और काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन से होता था। तो कल एक चीज़ तो बहुत प्यारी लगी, लोगों के बीच का अपना कोलैबोरेशन। जी हाँ, आपस में जो लोगों ने मिलजुल करके काम किया वो बड़ी चीज़ थी। फिलहाल चलिए बातचीत तो होती रहेगी, इस गाने को पूरी तरह से एंजॉय कर लेते हैं, वापस से आते हैं। आने के बाद बताते हैं कि आज का मॉर्निंग यानी कि संडे मॉर्निंग थॉट क्या है आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो 11.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हाँ जी, फिलहाल चलते आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ। और ऑफ कोर्स वक्त है खूबसूरत से थॉट का। क्या कह रहा है आज का थॉट, चलिए आपको थॉट की तरफ ले चलते हैं। दरअसल आज का जो थॉट है वो कहता है, क्या कहता है आज का दौर तो बहुत कुछ कहता है, बट आप क्या सुनने वाले हैं ये ज़रा गौर फरमाने वाली बात है। तो चलिए फिलहाल थॉट को आप तक पहुंचा ही देते हैं।
2: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो आज का थॉट क्या कह रहा है? आज का थॉट जो है वो बड़ी ही खूबसूरत सी बात कहता है। वजह संडे यार, इसलिए। सो थॉट कहता है कि चुप रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यस, यू लर्न अ लॉट बाय बीइंग साइलेंट। यानी अगर कोई चुप रहता है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चुप रहने वाले से, आज चुप रहने वाले से भी मिल सकता है, बट यहाँ बात चुप रहने वालों से नहीं है। बात यहाँ खुद के चुप रहने से और

बहुत सारी ऐसी बातें होती जो कहीं सुना है कि मान लीजिए अब हम यही बता रहे हैं कोई भी बात होगी मौसम की, हाँ भैया चार पेड़ गिर गए, यहाँ के वहाँ के यहाँ के वहाँ के चार जगह गए और चारों बात यही कह रहे हैं, हाँ भैया चार पेड़ गिर गए। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत छोटी छोटी बातों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी ऐसा होता है कि दुनिया ऐसी है, ज़माना ऐसा है, क्यों? क्योंकि वो हमारी डेफिनेशन है। और हमारी डेफिनेशन भी कैसे बनी है? क्योंकि लोगों ने कहा, हमने माना, हमने जो माना हमने और लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया कि भैया इसका जो मतलब है वो ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है, राइट? लेकिन जब हम चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं और लोगों को सुनते हैं, तो फिर समझ में आता है कि किसकी क्या ओपिनियन है। और अगर ओपिनियन किसी की है, कुछ भी, कोई भी राय है, तो उसके पीछे क्या वजह है नज़र आ रही है, क्या रीज़न नज़र आ रहा है, ये भी समझ में आता है, राइट? यस, ऑफ कोर्स समझ में ज़रूर आता है। सो इसलिए कहा जाता है कि अगर खामोश रहा जाए तो बहुत कुछ समझ में आता है। अब वैसे तो देखिए, एक आम जो धारणा होती है वो बारिश होने पे इरिटेशन, अरे यार बारिश शुरू हो गई, भीग जाएंगे, ये काम कैसे होगा, वहाँ जाना है। मतलब इंसान को ये तो पता है कि उसको काम करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि कुदरत का भी काम बरसाना है। कुदरत नहीं बरसाएगी तो सारा काम, सारे इंसान जैसी कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। तो हर किसी का अपना काम है, हर कोई अपनी तरह से कर रहा है, और इसीलिए ये जहाँ चल रहा है, राइट? पर जब उसी खामोशी में हम बारिश को देखते हैं, तो कई बार बारिश जो है वो हमको बड़ा गमगीन सी भी लगती है, कि किसी के आंसू की तरह है। कभी हमको उम्मीद सी लगती है कि सूखे पे एक बारिश की बूंद या बारिश एक ज़िंदगी सी लगती है, कि पौधों पे गिरते ही पौधे खिलने लग जाते हैं, बचपन की नाव चलाना याद आ जाता है, बारिश का नीचे गिर करके हर तरफ फैल जाना नज़र आता है, सिर्फ चुप रहने से, खामोश रहने से और बहुत कुछ देखते रहने से। तो शायद हमारी लर्निंग जो है वो बहुत तेज़ी से होती है जब हम खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। एंड स्पेशली आप उन लोगों को ज़रूर समझते होंगे जो आपके आसपास, आपके घर में आपकी कोई फैमिली का मेंबर है या आप ख़ुद हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि भाई ये बहुत कम बोलते हैं या इनकी आदत नहीं है ज़्यादा बोलने की, बात करने की। तो उसी में आपको साफ नज़र आता है कि जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में कई सारे वेरिएशन होते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस होती है, लोगों से अलग राय होती है। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने चीज़ों को समझा है, जाना है। हमने किसी एक को समझ लिया और हमने उसी चीज़ को मान लिया, और उसने ऐसे जैसे 10 लोगों को सिर्फ सुना है, और सुनने से के बाद में जो चीज़ें उनको प्रोसेस हुई है वो उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। तो यही कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का, कि भाई कई बार खामोशी जो है हमको बहुत कुछ सिखा देती है, और बोलते रहना कई बार जो है हमको बस वहीं रोक के रखता है जितना हम जानते हैं। तो ये खूबसूरत सा थॉट आज आपके लिए है, आज के संडे को और भी ज़्यादा स्पेशल बना रहा है। एंड उम्मीद है भाई, जहाँ जहाँ ऐसा मौसम फ़िलहाल नहीं है उनका तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ धूप निकली होगी, कहाँ एकदम गर्मी सी हो रखी होगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ अभी भी बादल हैं। अभी भी बारिश शुरू हो जाए तो कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। एंड फिलहाल राहत की बात यह कि वो जो आंधी वाली हवाएं थी वो थम गई है, क्योंकि उससे बड़ा ज़्यादा लॉस हो रहा था। सो चलिए भाई, इस खूबसूरत से नगमे को सुनते हैं, वापस से आते हैं, और आने के बाद बाकी बातों का सिलसिला भी हम लेकर आने वाले हैं आपके अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: सो भाई चलिए वक्त हो गया है फिलहाल आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने का, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आप हमको सुनते हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। और जो लोग सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से, उनको चैट का ऑप्शन मिलता है जिससे वो डायरेक्ट जो कुछ लिखते हैं गुंडा एफएम के आरजेस तक सीधे बात पहुंचती है। तो चलिए फिलहाल आप लोगों ने क्या कुछ लिखा है उसको तो हम बताते हैं, लेकिन स्वागत करते हैं आप सभी का जो फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और साथ ही साथ जो रेडियो के ऐप से सुन रहे हैं। आप सभी को एक बार वापस या वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, तो भाई चलिए शुरू से शुरू करते हैं। और जो पहला मैसेज आया है आज के मॉर्निंग शो में, वो आया है आशु जी का। लिखा है, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात। सुबह है नई, नया है सवेरा, सूरज की किरण और हवा का बसेरा, खुले आसमां में सूरज का चेहरा, मुबारक हो आपको ये हसीन सवेरा। क्या बात है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में आशु जी। एंड महेंद्र देपन है फ्रॉम राजस्थान, गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। साथ ही आपने लिखा है, अदनान सर जी आपने बिल्कुल सही कहा, सब अपना अपना काम करते हैं, ऊपर वाला भी अपना काम करता है और ऊपर वाला कभी गलत नहीं करता, गलतियां तो हम इंसान करते हैं। क्लाइमेट की हालत हमने ही बिगाड़ी है, प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल, पेड़ों की कटाई और प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़। अब ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी आदतों में बदलाव लाएं। प्रकृति हमें जीवन देती है तो उसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। थैंक यू सो मच टू यू। एंड आप इस बात को समझते हैं और बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको कहा। और जिम्मेदारी की जहाँ तक बात रही तो जाहिर सी बात है, हमारी घर की जिम्मेदारी है और हमारा ये यूनिवर्स एक घर है और इस पूरे यूनिवर्स की हमारी जिम्मेदारी है। आशु जी लिखती है, जीवन में रिश्ते भले ही कम बनाइए पर जो बनाइए उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको भी थॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एंड थॉट सच में अपने आप में आज काफ़ी अलग ही अंदाज रखता है। थॉट जिस तरह कहता है कि चुप रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये बात तो आप सीधे सीधे आजमा के देख सकते हैं कि कुछ वक्त आप चुप रह करके देखेंगे तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि आखिर चुप रहने से सच में काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। तो चलिए भाई सीखते रहिए, और हम तो कहेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों ना करके ही देख लिया जाएगा, ताकि ये बात सच साबित होती हुई साफ हमको भी नज़र आने वाली है। फिलहाल चलिए आपको ले चलते हैं अगले खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ, और सॉन्ग नेम है चांद वालियां।

0: पीछे।
1: तेरी हरकतें ये सारी मुझ पे ना चल पाए, जट है तू पागल सरफिरा।
0: अच्छा मुक जाने नखरे तेरे, मेरा इश्क नहीं मुकना, पक्का है प्रॉमिस जट दा।

जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

सो जाहिर है जिस तरह की फिलहाल आंधी बारिश आई थी, यानी एक तरह से तूफान का सीधा असर था, उससे क्या क्या नुकसान हुआ और क्या कुछ हुआ, इसके अलावा कौन कौन सी अपडेट्स हैं जो कि गोंडा से ही आ रही है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपको ये खूबसूरत सा नगमा सुनाते हैं, वापस से आते हैं तो बताते हैं कि आखिर आज की सिटी अपडेट्स में आपके लिए मॉर्निंग शो में क्या है।

0: सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। फिलहाल हम बताने वाले हैं आपको सिटी के अपडेट के बारे में, यानी गोंडा में क्या कुछ चल रहा है। सो चलिए बताते हैं आपको गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो आपको हम बता दें कि फिलहाल आंधी बारिश में कई पेड़ गिरे हैं जिसमें दो लोगों की जान भी गई हुई है। जी हाँ, सो गोंडा के अगर हम भंगही गांव में बात करें तो छप्पर के ऊपर नीम का पेड़ गिरा। दर्जी कुआं अयोध्या रोड की बात करें, यानी दर्जी कुआं मनकापुर जो रास्ता है वहाँ निवादा गांव के पास पेड़ गिरने से आवागमन जो है वो रुका हुआ। और लखनऊ हाईवे पर पोर्टरगंज में बिजली का पोल जो है वो भी गिर गया। सो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं नज़र आई इसी आंधी बारिश पानी में। और गली मोहल्ले ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जलमग्न हुए और इस वक्त तक तो कुछ जगहों से पानी उतर गया है, बट जहाँ से निकासी की सही व्यवस्था नहीं बनी है वहाँ पर अभी भी पानी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। और साथ ही साथ इसी आंधी बारिश की वजह से, तूफान की वजह से खेतों में जो बिछी थी गन्ना और धान की फसलें वो जो लगी हुई थी वो बिछ गई है। सो तीन दिन से चूंकि बारिश हुई है और तेज़ हवा चली है जिससे गन्ना और धान की जो फसल इसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था जो है वो काफ़ी ध्वस्त हुई है। 14 लाख से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं उनको परेशानी हुई है। सो तीन दिन से जो जारी है आंधी बारिश ने देवीपाटन मंडल की जो बिजली व्यवस्था है इसको बेपटरी सा कर दिया है। शहर से लेके गांव तक बिजली आपूर्ति बाधित होने से पानी जो पीने वाला है उसके लिए भी लोग तरस गए हैं। लोगों में जो है लगी पानी की जो टंकियां थी वो खाली हो गई है। मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं हो सके हैं। और अगर हम बात करें परसों रात की, यानी शुक्रवार की रात से ही जो है वो कई इलाकों में बिजली कई जगह से नहीं है। कंज्यूमर्स का ये भी कहना है कि विद्युत उपकेंद्रों और अधिकारियों के फ़ोन भी नहीं उठ रहे हैं। फिलहाल विद्युत विभाग की अगर माने तो देवीपाटन जोन के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती ज़िले में आंधी बारिश बिजली के ढांचे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। 2000 से ज़्यादा बिजली के खंभे टूटने और 200 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने का अनुमान भी। ऐसे मंडल के 14 लाख से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। सो विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए विभाग की टीम लगातार काम कर रही है। और कल सुबह तेज़ आंधी के दौरान देवीपाटन जोन के जो मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर हैं इसमें 3 पेड़ उखड़ कर गिर गए। गनीमत ये रही कि उस वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था। पेड़ गिरने से कार्यालय की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और बाउंड्री वॉल भी क्षतिग्रस्त हो गई। सो देर शाम तक पेड़ों को हटाकर की बिजली आपूर्ति बहाल करने का जो कोशिश है वो जारी रही। और बिजली ठप होने से पूरे दिन कार्यालय का कामकाज भी जो है वो प्रभावित रहा है। सो आपको एक जगह बता देते हैं कि हाई टेंशन लाइन भी टूटी है जो कि जिससे रोडवेज बस बच गई। सो पोर्टरगंज में जेल रोड पर गोनार्ड, नॉर्थ फीडर और SCPM समेत ग्रामीण एरिया है जाने वाली HT लाइन कल सैटरडे दोपहर 1:30 बजे टूट करके सड़क पर गिर गई। इस दौरान करीब 50 यात्रियों को लेकर के जो रोडवेज बस गुजर रही थी, वक्त रहते चालक ने स्थिति को संभाल लिया और हादसा जो है वो टल गया है। सो फिलहाल इसके अलावा आपको बता दें कि चारों ज़िलों में जो विद्युत ढांचा है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। सो देवीपाटन जोन के जो मुख्य अभियंता हैं उन्होंने बताया कि आंधी बारिश से गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती में विद्युत ढांचे को काफ़ी नुकसान हुआ है। 2000 से ज़्यादा खंभे और 200 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो क्षतिग्रस्त होने का एक अनुमान है। पेड़ों की डालियां हटाने और बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए टीमें भी लगाई गई और करनैलगंज क्षेत्र में निरीक्षण करके टीमों को जो है ज़रूरी निर्देश भी दिए गए हैं। सो ये तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम वाली बात बताई गई। एंड इसके अलावा आपको हम बता दें कि तेज़ हवा बारिश की ही वजह से गोंडा बहराइच रेलखंड पर बनगाई गंगाधाम स्टेशन के बीच में ट्रैक पर पेड़ गिर गया। इससे 1/51/32 एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा और 75/111 को सवारी गाड़ी को भी रद्द होने की जो है वो सूचना दी गई। सो मोतीगंज, बरुआचक, गौरटिनिच, मनकापुर, टिकरी, टिकरी, कटरा के बीच में भी ट्रैक का पेड़ गिरने की सूचना मिली और रेलकर्मियों ने पेड़ काट करके ट्रैक को साफ किया है। सो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हुई है। ऑफकोर्स जो तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी इसने काफ़ी लॉस किया है और कहीं ना कहीं इसी लॉस की वजह से काफ़ी देर भी हो गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा है। इसके अलावा आप चलते हैं आगे, ऑफकोर्स
इसी गोंडा अपडेट में। सो आपको बता दें कि लिफ्ट देकर के एक युवक से जो है वो 1,30,000 रुपये लूटे गए हैं। जी हाँ, सो बलरामपुर के सादुल्लाह नगर क्षेत्र के जो हसनापुर निवासी हैं राहुल को लिफ्ट देने का झांसा देकर दो लोगों ने 1,30,000 रुपये का बैग लूट लिया। बंदे ने बताया है कि भाई 19 सितंबर की सुबह वो आम्रपाली एक्सप्रेस से जालंधर से मनकापुर पहुंचे थे। स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पर दो युवकों ने सादुल्लाह नगर जाने की बात कहकर उन्हें अपनी बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में एक दुकान पर रुक करके तीनों ने चाय सिगरेट पी। इसके बाद मछली बाजार सादुल्लाह नगर रास्ते पर मद्दो भट्ठा के पास दोनों ने राहुल को बाइक से उतार दिया और उसका बैग लूट कर भाग गए। सो बैग में 1,30,000 रुपये मोबाइल था। घटना के बाद में राहुल की हालत ऐसी थी जैसे घर पहुंचने की भी सुध नहीं रही। सो जब ये नॉर्मल हुए सो बैंक स्टेटमेंट निकालने पर क्रेडिट कार्ड और UPI से लेन देन की भी जानकारी मिली। CEO ने बताया है कि मनकापुर कोतवाली में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। बैंकिंग लेन देन और बाकी सबूतों के आधार पर जाँच की जा रही है। इसके अलावा चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो कहीं ना कहीं आज के इवेंट से जुड़ी हुई भी आ रही है। सो सुबह 7 बजे जो है वो धर्मशाला में योग शिविर का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा फातिहा का जो कार्यक्रम है सर्कुलर रोड में मौजूद मिनाइया में उर्स में आज सुबह 10 बजे से फातिहा कार्यक्रम होने वाला है। एंड जन आरोग्य मेला भी सुबह 10 बजे से ज़िले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन आरोग्य मेला भी लगाया जाना है। इसके अलावा आपको बता दें कि फिलहाल नदी में छोड़ा गया है 2.49 लाख क्यूसिक पानी। सो सरयू का जलस्तर जो है कल सैटरडे सुबह एल्गिन ब्रिज पर 105.400 मीटर पहुंच गया। खतरे का जो निशान 106.070 मीटर है। नदी में कुल डिस्चार्ज बढ़ करके 2,49,481 क्यूसेक पहुंच गया है। बाढ़ का जो कार्यखंड के सहायक हैं अभियंता पंकज आर्या ने बताया कि बारिश के से तटबंध पर रेन कट हुए हैं और जल स्तर जो है उसका बढ़ रहा है। बचाव कार्य प्रभावित ज़रूर है लेकिन तटबंध पर फिलहाल किसी तरह का खतरा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें 15 लाख से बनेगा स्कूल का जो नया भवन है वो। जी हाँ, सो अभी तक जो है अतिरिक्त कक्षा कक्ष में पढ़ाई कर रहे प्राथमिक विद्यालय परेड सरकार के बच्चों को अब फिलहाल उनके लिए मूल भवन का नए सिरे से 15 लाख रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। सो कल सैटरडे को BSA अमित कुमार ने बताया कि भूमि का जन करके पुनर्निर्माण का काम शिलान्यास किया गया है। इन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ उन्हें बेहतर शैक्षिक माहौल देना होगा। एंड जिला समन्वय समेकेतिक शिक्षा राजेश सिंह ने बताया कि विद्यालय का जो मूल भवन है जर्जर अवस्था में पहुंच गया था। ऐसे में बच्चों की जो सुरक्षा है विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के लिए भवन का पूरा निर्माण जरूरी था। सो नए भवन के बनने से बच्चों को सुरक्षित माहौल के साथ उनको सुविधा देने की बात भी बताई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि PM श्री स्कूल में 5 लाख से बनेगा मैथ साइंस गार्डन। जी हाँ, सो ज़िले के एक परिषदीय PM श्री विद्यालय से 5 लाख रुपए की लागत से मैथ साइंस गार्डन डेवलप किया जाएगा। इसमें जो मैथ्स है और साइंस से जुड़े मॉडल लगाए जाएंगे। सो इनके ज़रिए स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स की जो अवधारणाएं हैं उनका प्रयोग एक्टिविटी के ज़रिए समझाया जाएगी। सो फिलहाल महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने BSA को चयनित PM श्री विद्यालय में मैथ साइंस गार्डन डेवलप करने के निर्देश दिए हैं। सो गार्डन में ड्रोन, सोलर सिस्टम, मॉडल ट्रैफिक टावर ट्री, डायरेक्शन टावर ट्री, डिस्टेंस मीटर मॉडल और SLV और AR सोलर सिस्टम चार्ट समेत कई मॉडल्स लगाए जाएंगे। यस ऑफ कोर्स। और बताया गया कि कक्षा में पढ़ाए जाने के साथ ही सभी सब्जेक्ट्स को मॉडल और प्रयोगों से जोड़ने से स्टूडेंट्स को अवधारणाओं को आसानी से समझने का मौका भी मिलेगा। सो गार्डन का इस्तेमाल आसपास के जो विद्यालय हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी किया जाएगा। सो ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि लगातार चूंकि बारिश जो हुई है उससे 300 करोड़ का जो बिजनेस है वो भी फिलहाल अफेक्टेड रहा है। सो 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से फिलहाल कारोबार की रफ्तार थामी हुई है। और अगर व्यवसायियों का माने यानी व्यापारियों का, तो बारिश के चलते ज़िले में तकरीबन
300 करोड़ रुपए का जो बिज़नेस है वो अफेक्टेड रहा। और शनिवार को यानी कल चौक बाज़ार की करीब 80% दुकानें भी बंद रही। सो आम दिनों में जो ग्राहकों से गुलजार रहने वाले बाज़ार थे वहाँ दिन भर सन्नाटा पसरा रहा और सड़क किनारे लगने वाले सब्ज़ी फल फास्ट फूड रोज़मर्रा के सामान के ज़्यादातर ठेले भी नहीं लगे हैं। सो चौक बाज़ार में कल यानी सैटरडे को बारिश का असर साफ दिखाई दिया है। ज़्यादातर दुकानों के शटर जो हैं वह गिरे रहे और सड़कों पर आवाजाही जो है काफ़ी कम रही और जो दुकानें खुली वहाँ पे कस्टमर्स भी नदारद रहे। लगातार सूखी बारिश की वजह से लोगों को ज़रूरी काम से ही घरों से निकले और इसका सीधा असर ख़रीदारी और कारोबारों पर पड़ा है। सो सबसे ज़्यादा परेशानी रेहड़ी पटरी वालों को हुई है। महिला हॉस्पिटल के पास पे ठेला लगाने से बताया कि भाई 2 दिन से काम ठप है और बारिश की वजह से ठेला लेकर पहुँचे हैं लेकिन तेज़ हवा चलने की वजह से ठेला लगाना भी फ़िलहाल मुश्किल साफ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से बारिश हुई है उससे लगातार जनजीवन जो है ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ है। सो ये जो ऑफकोर्स अपडेट्स थी वो आपके गोंडा की ही थी और आपको काफ़ी अपडेट्स हमने बताया। आई होप कि भाई आपको कहीं ना कहीं ये सारी अपडेट्स पहुंच गई है और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होने वाला है। सो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं यस आगे की तरफ यानी कि अब आपको सुनाने वाले हैं एक खूबसूरत सा सॉन्ग। उसके बाद वापस से आने वाले हैं और आने के बाद आज बहुत सारी बातें हैं क्योंकि आज है संडे स्पेशल और यस 10 बजे से कॉल इन प्रोग्राम भी होने वाला है। तो ये सब कुछ होगा आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9860 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: सो फिलहाल एक ऐसी वेब सीरीज़ जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, चलिए उसके बारे में बता दें। फिलहाल हम कुछ बातें बता चुके हैं हुंकार के बारे में, लेकिन अब चूंकि रिलीज़ हो गई है और उस पर अब लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं, एक्सपर्ट्स की राय आ रही है, तो आखिर इस जो वेब सीरीज़ की बात हम कर रहे हैं हुंकार की, इसको किस तरह से देखा जा रहा है और आखिर देखे जाने के बाद लोगों के मिले जुले क्या क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं जो इस वेब सीरीज़ को लेकर के है। अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कि भैया कौन कौन से रिस्पॉन्सेज हैं जो इसको लेकर के आ रहे हैं, एंड फिलहाल इसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय क्या है ये भी आप तक हम ज़रूर पहुंचा देते हैं आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota. With your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो आपको फिलहाल बता दे रहे हैं कि ओटीटी पर ढोंगी बाबाओं और उनके साम्राज्य की कहानियाँ अब जो है फिलहाल नई नहीं, क्योंकि इससे पहले आश्रम सिर्फ एक बंदा ही काफ़ी है और महाराज जैसी कई कहानियों के बाद जब कोई नई सीरीज़ आती है तो उससे सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी की उम्मीद नहीं रहती है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि इस सब्जेक्ट में नया क्या जोड़ता है। सो हुंकार की उसी कसौटी पर 17 साल की मीनू रावत यानी अनीत पड्डा, प्रभावशाली धर्मगुरु बाबजी यानी रघुवीर यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाती हैं। मामला साधारण नहीं है, इसीलिए शिकायत की जांच एसीपी जसलीन सिंह सोनी यानी फातिमा सना शेख को मिलती है। इसके बाद शुरू होती है पुलिस, अदालत, मीडिया और उस बाबा के हजारों समर्थकों के बीच लड़ाई। सो मीनू के आरोप

एक भी जसलीन के किरदार में संयमित नजर आती हैं, वहीं रघुवीर यादव को पंचायत में इतना मासूम किरदार करते देखने के बाद यहाँ बाबजी के रूप में देखना बेहद दिलचस्प है। सो इस किरदार को चीखने चिल्लाने वाला एक पारंपरिक खलनायक नहीं बनाते बल्कि उनका शांत व्यवहारिक किरदार को सहज बनाता है, असहज बना देता है। सो मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब वकील की भूमिका में कोर्ट रूम वाले हिस्से को मजबूती देते हैं। राम कपूर के साथ में उनके अच्छे कुछ सीन्स हैं। अर्जुन माथुर के पत्रकार वाला ट्रैक कहानी में मीडिया की भूमिका को जोड़ता है। निर्देशन की बात करें तो करण डी कपाड़िया के निर्देशन में बनी सीरीज के पास कहने के लिए कई बातें हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ साधने की कोशिश में कहानी कई बार बिखर जाती है। सो नतीजा ये होता है कि कुछ दिलचस्प सवाल अधूरे रह जाते हैं। दूसरी जो एक प्रॉब्लम सामने आई कि शुरुआत से कुछ वक्त तक कहानी आश्रम की छाया में लगती है और आगे जाकर इसमें कुछ टेक आता है, फिर भी हुंकार पूरी तरह जो है वो मायूस नहीं करती है। कोर्टरूम के जो सीन्स है कहानी में दोबारा से जान डाल देते हैं। सो एक अच्छी जो है सीरीज़ की तरह माना जा रहा है हुंकार को, यानी अभिनय जो है इसका शानदार है, बस कहानी में कुछ नयापन खास एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसमें नहीं है। अब खैर ये आप अपनी भी राय देने वाले हैं जो इसको देखने वाले हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर। सो OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिलहाल हुनकार आ गई है, रिलीज़ हो चुकी है। अब आप भी देख करके अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हुनकार आपको कैसी लग रही है और क्या कहना है आपको हुनकार के बारे में। फिलहाल आइए चलते हैं अपने अगले सॉन्ग की तरफ, और अगला जो सॉन्ग आ रहा है वो आपके मॉर्निंग शो में अनजाना अनजानी मूवी से आ रहा है। सो यस, स्टे ट्यून ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाँ जी, सो गजब का है ये दिन, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिलहाल एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गुंडा में। और आज है संडे स्पेशल बातचीत, यानी गायक गुंडा विद आरजे अदनान। फिलहाल पहले तो सुनेगा गुंडा, क्योंकि जो हालात हुए हैं और ऐसा लगता है बहुत लंबे वक्त बाद या इस तरह के हालात हुए, या कई लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ऐसे हालात हुए हैं। सो चलिए भाई, क्या चल रहा है और आपने कल किस तरह से खाना खाया? अभी आपकी बस मुझे सीधे सीधे बताइए कि भाई आप लोगों के फ़ोन की बैटरी कितनी है। मैं सीधा सवाल ये पूछता हूँ आपसे, और मुझे यही जानने की चाह भी है, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा कि भाई आखिर आपके फ़ोन की कितनी बैटरी बची हुई है। चलिए फिलहाल चलते हैं पहले कॉलर की तरफ। हाँ जी, हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: सृष्टि।
0: हाँ सृष्टि, कितनी बैटरी बची है आपके फोन में?
1: अभी तो फुल चार्ज है।
0: अभी फुल चार्ज है? कैसे फुल चार्ज किया? इन्वर्टर था क्या घर में बचा हुआ अभी भी?
1: नहीं, इन्वर्टर सामने चाची के यहाँ बचा था तो उनके यहाँ लगा दिए थे।
0: अच्छा, तो चाची के यहाँ के इन्वर्टर की चार्जिंग चल रही है ये?
1: और क्या।
0: ऑलराइट, कैसा महसूस हो रहा है? क्या है, अभी लाइट आई कि नहीं?
1: बिल्कुल नहीं, कल से तो आई नहीं है, ना पानी है ना लाइट है।
0: हाँ, पानी लाइट कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, बात सही है। तो क्या लगता है कब तक लाइट आ सकती है? कब तक लाइट आने की संभावना है, कुछ अंदाजा?
1: शाम तक हो सकता है।
0: शाम तक हो सकता है, चलिए हम आपके लिए काम नहीं कर सकते हैं कि शाम तक आ जाए। थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू।
1: सर पता है?
0: नहीं बताइए।
1: कल मम्मी काम पे जा रही थी तो दुकरनाथ के पास इमली का पेड़ है, तो वो गिरने वाला था, मम्मी तुरंत भाग ली आगे, नहीं तो उनके ऊपर गिर जाता।
0: हाँ, बाद में गिर गया है, और ये लगभग बताया जा रहा है कि 300 साल के आसपास का पेड़ था।
1: बहुत पुराना था।
0: और इवन मुझे अच्छे से याद है, मैं हमेशा अभी पिछली गर्मी, अभी इस गर्मी तक भी जब ट्रैफिक लगता था तो मैं उसी के नीचे जाके खड़ा हो जाता था, या बारिश होने पर भी वो पेड़ बचा लिया करता था। बहुत ज्यादा अफसोस है।
1: सुबह से हाथ दर्द हो रहा है, इतना नल से, इतनी दूर नल से लेके आना पड़ रहा है पानी, बाल्टी बाल्टी।
0: वो कुएं वाला दौर याद आ गया, कुएं से बाल्टी डाल डाल के पानी निकालना,
1: जैसे सब लोग मतलब लाइन लगाते थे, वही वाला दौर आ गया है।
0: वही वाला दौर आ गया, राइट, एग्जैक्टली।
1: लाइन लगी आज, अरे हम बोल ले वही हो रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है, चार्जिंग आपकी यूं ही सलामत रहे, और आपको भगवान सद्बुद्धि दे कि आप रील्स ना स्क्रॉल करें, जिससे आपकी चार्जिंग बची रहे जब तक लाइट नहीं आती है। और साथ ही
1: एंड्रॉइड ही नहीं यूज करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जब तक आपको नल चलाने भर की शक्ति दे। थैंक यू सो मच सृष्टि कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए भाई, फटाफट से आप भी कॉल मिलाइए और अपना हालचाल बताइए कि इस वक्त आपके घर के हालात क्या हैं, आपके फ़ोन की बैटरी के क्या हालात हैं, यानी सब कुछ मुझे जानना है, क्योंकि ये जो आपदा आई है इसने क्या असर डाला है आप पर, ये ज़रूर आप बताएं। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो,
2: हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
0: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ, अपना नाम बता दिए हमारे श्रोताओं को।
2: जी सर, मेरा नाम रौशनी रावत, और अभी फिलहाल आपका प्रोग्राम जो है शो, तो हम चंडीगढ़ से सुन रहे हैं।
0: अच्छा, चंडीगढ़ से सुन रहे हैं, तब तो आप बचे हुए हैं जिस हम आपदा की बात कर रहे हैं।
2: जी सर, यही बताने के लिए किया था, मैंने सोचा एक बार बता ही दूं। अच्छा।
0: तो कैसा लग रहा है, अब आपसे ही पूछ लेते हैं।
2: जी सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक सेकंड।
0: अच्छा, तो मतलब आपकी तरफ ऐसा
2: बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे कि अगर देखा जाए तो ये बारिश बहुत ही नुकसानदेह है किसानों के लिए, क्योंकि जितनी फसल है तो सारी डूब चुकी है सर।
0: हाँ बिल्कुल, डूब चुकी हैं, और इतनी तेज हवा चलने से जो खड़ी फसलें थी वो गिर गई हैं खेत में।
2: जी सर,
0: तो वो बहुत बड़ा एक नुकसान तो हुआ ही है, जान माल का भी नुकसान हुआ है काफी, पूरे यूपी की बात, अभी फिलहाल आंकड़ों में 57 आई हैं मौतों की बात।
2: जी सर, और ये ना बारिश भी बहुत खतरनाक है, अभी हम एक हमारी लिसनर है, जो उनके जो पारिवारिक छात्र है वो भी एक्सपायर हो गए, वो सिर्फ बारिश में काम कर रहे थे इस वजह से।
0: ओह, बारिश में काम कर रहे थे तो क्या हो गया उन्हें?
2: वो बीमार होते फिर एक्सपायर हो गए, वहां से उनको मृत्यु कर दिया।
0: तो मतलब लगातार बारिश में वो काम कर लिए थे जिसकी वजह से बीमार हो करके वो उनकी डेथ हो गई। तो ये बारिश,
2: मैं तो सभी को यही सलाह दूंगी कि बारिश में घर पे ही रहे और पॉसिबल हो तो घर से ही काम करें, बाहर निकले ही ना।
0: बाहर निकले ना।
2: ऐसी बारिश हो रही तो सर निकलना ही नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सही आपने फरमाया कि अगर ऐसी बारिश
2: अगर निकलते तो, भी है सर, जरूरी काम है तो निकलना तो मजबूरी एक है, तो अगर निकल भी रहे तो अपना सारा कुछ व्यवस्थाएं करके ही निकले, छाता लेके जो भी रेनकोट है सबकी व्यवस्था करके तब निकले।
0: राइट,
2: भीगे तो बिल्कुल ही ना बारिश में।
0: बिल्कुल
2: ये बारिश नहीं, कहर की तरह पानी बरस रहा है,
0: कहर की तरह पानी बरस रहा है। बिल्कुल सही कहा, बारिश जिस तरह है ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और लगातार इसीलिए हम अवेयर करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, अनाउंस करते रहते हैं, क्योंकि ये चीजें रिमाइंडर की तरह हमारे जहन में रहना चाहिए।
2: हाँ जी सर।
0: फोन की बैटरी कितनी है?
2: मेरे में तो सर है बैटरी, मेरे में 77% है, और अभी मैं अपनी फ्रेंड जो अनु है उनको कॉल कर रही थी, उनका फोन ऑफ है।
0: अच्छा, हाँ, उनपे आपदा का कहर है।
2: उनके लिए तो यही है, और अगर सुन रही होंगी तो बाद में कॉल करके मुझे जरूर बताएं कि क्या हालात है उनके उधर के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है उनकी कॉल यहाँ भी आ जाए, तो आप जरूर सुनते रहिए, हो सकता है वो अपनी चीजों को बताएं जरूर। थैंक यू सो मच रोशनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। और चलिए भाई, हम लेके चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर कौन है और इनके फोन की बैटरी का स्टेटस क्या है। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? लीजिए भाई, अनु का जिक्र हो रहा था, अनु आ गई हैं। किसके फोन से किया है कॉल भैया?
3: अरे ये अंकल का फोन है, चोरी करके लाई हूँ।
0: अंकल का फोन चोरी? अरे ये आपदा में अवसर नहीं ढूंढना था, चोरी उरी काहे करने लग गए आप?
3: अरे क्या कर, चोरी नहीं किया, अंकल को देख रही हूँ मेरे गाँव में,
0: मतलब लाइट पहले से ही खराब थी ये आंधी बारिश आने से, और एक तो ये आ गया है तो इसलिए बहुत लंबा जाने वाली मतलब चली गई है। बाकी आपने कहा कि आप ठीक हैं,
3: आप किसी गांव में लाई हुई थी पहले से?
0: अच्छा, फिलहाल
3: अभी मेरे यहाँ धूप निकली है। लेकिन
0: आपके यहाँ धूप निकल गई? अरे ये तो बहुत बड़ी वाली बात है,
3: आज धूप आ गई है।
0: अभी मुझे लगता है पूरे राज्य की मीडिया आपके गाँव आ जाएगी कवर करने के लिए, ये कैसे हो गया?
3: आ रही है और जा
0: भी रही है। ऑलराइट, सो चलिए अच्छी बात है, आपने ये खबर दिया कि आप लोग सही सलामत है, और प्लीज जैसा कि गाइडलाइंस जारी है फिलहाल बिला वजह बाहर मत निकलिएगा जब तक बहुत जरूरी काम ना, और जरूरी काम से निकल रहे हैं तो सारी सेफ्टी मेजरमेंट्स का ध्यान रखते हुए निकलिएगा। एंड थैंक यू सो मच
3: जी। बैटरी वाली सेल के लिए बहुत परेशान हूँ, मार्केट पैसे सबको भेज रहे हो कि किसी को मिल जाए मुझको ला कर दे दे।
0: हाँ, ये अनइंटरप्टेड लिसनिंग होती रहे, मतलब रेडियो चलते रहना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए और अपने अपडेट देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। सो भाई, ये तो थी अनु हमारे साथ जिन्होंने बातचीत किया, और फिलहाल लगातार हम आपसे जुड़ते जा रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो आपदा आई हुई है आखिर इसने आप पर क्या असर डाला है, किस तरह के हालात घर पर है, खाना कैसे बन रहा है, पानी ख़त्म हो गया है तो उसको कहाँ से ला रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कल रात में मुझे भी फील आ रहा था कि मैं 15-20 साल पीछे चला गया हूँ, या जो पहले सुना करता था वैसे कुछ हालात हो गए। चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो,
4: हेलो,
0: हाय अंबर जी, कैसे हैं आप? सुप्रभात। आप भी प्रभात तो भी हो ही नहीं, हमें लग रहा है कि आज सूर्य निकलेगा ही नहीं।
4: धूप निकल रही है सर जी, धूप निकल रही है, बदली हो रही है, धूप निकल रही है।
0: अच्छा, नहीं इधर बिल्कुल नहीं है ये, अपने इधर
4: आप दूसरे गोले में रहते हैं, गोलापुर में रहते हैं,
0: ये गोला जो है बिखर गया है, बहुत तेज तेज हवा चली, चपट गया है। पहले सबसे पहले हालचाल से पहले सब लोग अपना बैटरी का वो बता दे, परसेंटेज कितना है।
4: हाल सुधरना ताल है, हाल बेहाल है।
0: नहीं बैटरी बैटरी की परसेंट बता दिए सबसे
4: पहले। बैटरी बैटरी तो फुल चार्ज है सर जी, मेरी भी, मेरे मोबाइल की भी।
0: अरे ये कैसे भैया, कहाँ मिल गया आपको चार्जिंग पॉइंट?
4: ये पॉसिबल ये है कि इन्वर्टर बचा बचा के काम कर रहे हैं, रात में लाइट बंद, पंखे बंद, दिन में लाइट बंद, सब पंखे बंद, इन्वर्टर बचा रखे हैं,
0: मतलब
4: अभी मोबाइल चार्ज करने के लिए।
0: इन्वर्टर अभी भी सांसें ले रहा है?
4: नहीं नहीं अभी है, वो सांस नहीं ले रहा है, वेंटिलेटर पे नहीं है, लेकिन अभी है, जीवित है।
0: अभी जीवित है, मतलब अभी फोन लगभग अगर मोहल्ले के 15-20 फोन आए तो चार्ज करके दे सकते हैं आप?
4: नहीं वो आते हैं लेकिन उनको नो एंट्री है, मना कर देते हैं।
0: फिलहाल यही सब क्या हाल है, सब यही बोल रहे हैं कि नहीं खत्म हो गया।
4: नहीं इन्वर्टर सर जी बचा के रखे हैं, परसों रात 11 बजे लाइट कटी थी 10:30 बजे।
0: सही बात है
4: हमारे यहाँ, और उसके बाद से अभी तक आई नहीं है, और आने के कुछ आसार भी नहीं लग रहे हैं, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, तार टूटे पड़े हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल वही वही कह रहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा देखा मैंने खुद इस तरह का, लगातार इतने टाइम तक बारिश और इतनी लंबी हवाएं इतनी देर तक चलती रहे।
4: अरे सर जी बच गए बताइए, कहीं हम भी उड़े रहते पतंग के जैसे कहीं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल
4: किसी के मोहल्ले में पड़े होते,
0: मोहल्ले में नहीं किसी के घर की अलगनी पे टंगे होते कपड़े की जगह।
4: ज्यादा समस्याएं नहीं है, बस पानी की समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं।
0: तो पानी की आपूर्ति कहाँ से हो रही है इस वक्त?
4: ये नल लगा हुआ है लेकिन नल भी कल रात में धोखा दे गया, वाल्व उसका खराब हो गया,
0: ले
4: अभी उसकी मशक्कत की है, मिस्त्री का सबका स्विच ऑफ, प्लम्बर का कोई मिला नहीं तो खुद ही ठीक करना पड़ा।
0: कर लिया आपने?
4: हाँ कर लिया, काम चलाने का हो गया मेरा।
0: अरे वाह चलिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पानी बड़ी इम्पोर्टेंट है भाई, हाथ धोना होते पानी।
4: खाने पीने की बात कर रहे हैं, खाना तो बन गया लेकिन बर्तन मंजे तो कैसे
0: मंजे,
4: पानी है नहीं टंकी में, और सुनिए नल है खराब। तो जानते हैं कल क्या किया है?
0: क्या किया?
4: पत्तल में खाया है।
0: अरे वाह क्या बात है, ये निकली नई बात।
4: जब पानी है नहीं तो धुलेगा कैसे बताइए।
0: तो पत्तल पहले से रखा था घर पे?
4: हाँ पत्तल रखी रहती है।
0: अच्छा मुझे लगा कि पत्तल भी सोचा कि लाओ इसको भी अब धोई दिया जाए, री
4: नहीं नहीं नहीं सर जी, पत्तल हमेशा हमारे यहाँ आपको मिल जाएगी स्टॉक में।
0: अरे वाह,
4: गिलास कटोरी चम्मच मतलब डिस्पोजल का सब सामान मिल जाएगा।
0: चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि फिलहाल पानी की आपूर्ति नहीं है, लेकिन आपने जुगाड़ फिलहाल कुछ कर लिया है, और खाने का भी कोई ऐसी दिक्कत हो नहीं पाए, और मोबाइल तो भाई फुल चार्ज है ही है, क्योंकि अभी आपने
4: मोबाइल तो दोनों फुल चार्ज है, कल भी दिन भर रेडियो सुने हैं, एक ऐसा ही ज्ञानस्थली चल रहा है, बाकी तो सब शट डाउन है।
0: शटडाउन तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने।
4: बड़ी बात सही है सर जी,
0: बात तो सही है,
4: ज्ञान स्त्री चल रहा है,
0: बात तो सही है,
4: कुछ समय के लिए बंद हुआ था 4 से 6,
0: सवा छह
4: बजे फिर चालू हो गया था।
0: बिल्कुल नहीं ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे सारे रेडियो स्टेशन सिस्टम शट डाउन चल रहे हैं उस वक्त रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM उसी तरह आप तक आ गया है वापस से।
4: हाँ सर जी, तो 3 दिन जो है बोरियत नहीं हुई।
0: हाँ ये बहुत अच्छा,
4: क्योंकि वाईफाई भी सर जी बोल गया था, इतने बरसात में वाईफाई भी नहीं चल रहा था।
0: हाँ बिल्कुल नहीं मिल पा रही होगी, राइट सही कहा,
4: तो रील वगैरह देख ही नहीं पाए, और रेडियो में होता है कि कम ही डेटा में काम चल जाता है, डेटा में।
0: सही बात है, तो मतलब इस तरह आपने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इन्वर्टर बचा लिया, कुछ पानी का इंतजाम कर लिया।
4: जी।
0: ये तो शेर
4: का इंतजाम तो ज्ञानस्थली है ही है।
0: ज्ञानस्थली ऑल टाइम है।
4: 3 दिन बोल नहीं होने दिया, सबसे बड़ी बात ये भी तो है।
0: क्या बात है। तो क्या बढ़िया बढ़िया, तो ये जो अभी आपदा आई है उसके लिए बस हम 2 लाइन कहेंगे, जाते जाते एक गाना गुनगुना दिए, जाने कहाँ गए वो दिन, बस इतना ही बोलना है गाते हुए।
4: गाना तो आता नहीं है।
0: नहीं इतना ही लाइन ही बोलना, जाने कहाँ गए,
4: ये तो आप बोली थी ना।
0: आपको गाना अभी है, वो दिन हमने नहीं बोला आगे गाते हुए।
4: क्या बोलना है? जाने कहाँ गए ये दिन?
0: वो दिन
4: अच्छा वो दिन।
0: हाँ
4: कौन से
0: गाते हुए? ये जो लाइट रहती थी प्रॉपर, सारी चीजें मिल जाया करती थी।
4: नहीं सर जी इसका आनंद तो हम बचपन में ले चुके हैं, हम वो मिलेनियल वाले हैं, 90s वाले हैं, कि तो ये सब आनंद पहले ले चुके हैं, तो मतलब एक एक हफ्ते लाइट ना आना।
0: वही कह रहे ना, अभी जो दो दिन पहले तक जो लाइट आ रही थी, जो फैसिलिटी मिल रही थी, उसकी हम बात कर रहे हैं, जाने कहाँ गए वो दिन। हाँ
4: जाने कहाँ गए वो दिन, इससे आगे नहीं आता है।
0: क्या बात है, लेकिन आपने चैलेंज कंप्लीट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू सर जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा, आज मेरा फोन उठ गया, 14 जून के बाद आज आपसे बात हो रही है।
0: ले ओ भैया,
4: शिकायत ये कर लेंगे हम।
0: अच्छा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जायज है, और आपको डेट भी याद है, अच्छी बात ये है।
4: नहीं, डेट तो याद रहेगी, आपसे बात करें डेट ना याद रहे।
0: वाह,
4: डेट तो आपको भी याद होगी, 14 जून।
0: हाँ,
4: तो उसी दिन बात हुई थी, उसके बाद आज आपसे बात। आज
0: हो बारी, वाह,
4: बात करके आपसे बहुत खुशी मिली।
0: मुझे भी बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी और पूरे परिवार के स्वास्थ्य की कामना और सेफ्टी के लिए जरूर कहूंगा कि आप लोग भी ख्याल प्लीज रखिएगा अपना।
4: जी बिल्कुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच अंबर जी। सो चलिए भाई, ये थे अंबर जी फ्रॉम गोंडा, जिन्होंने अपने घर के हालात बताए, और फिलहाल अंबर जी ने तो बर्तन का जुगाड़ कर लिया, ऑल्टरनेट निकाल लिया पत्तल। अब देखते हैं भैया बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हाँ जी, हेलो।
5: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग आशु जी फ्रॉम लखनऊ, स्वागत है आपका।
5: आपका भी स्वागत है सर जी।
0: सो राजधानी से आप बोल रही, राजधानी के क्या हाल है
5: सर? 3 दिन से बारिश हो रही है, आज हल्की सी धूप छांव हो रही है।
0: अच्छा, धूप छांव उधर भी हो रही है, चलिए अभी यहाँ शहर के अंदर
5: बारिश हो रही है सर।
0: अच्छा, बारिश हो रही है
5: बिल्कुल, और हल्की जैसे बारिश हो रही है, धूप भी हल्का सा निकल रहा है, छांव भी जा रहा है सर जी।
0: ओके ओके, अच्छा, और फिलहाल ये लाइट और उसकी बाकी चीजों के क्या हालात है? ठीक है,
5: नहीं सर, लाइट वाइट बहुत बढ़िया है, बस पड़ोस में ही लाइट नहीं आ रही है सर। मेरे यहाँ 3 फेस है, तो इसलिए 1 फेस आया करता सर जी।
0: अरे बाप, 1 नहीं 2 नहीं 3?
5: जी सर जी, लेकिन पड़ोस में नहीं आ रहा है, परसों से नहीं आ रहा है।
0: ओ, तो यही यही दिक्कत है, जैसे
5: पानी वानी अगर लेना हो, जरूरत हो तो बताइए।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसे वक्त में बहुत जरूरी हो जाता है पड़ोसियों की हेल्प करना।
5: कल मोबाइल भी उन्होंने उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो मोबाइल भी दिया था चार्ज होने के लिए सर।
0: बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और मुझे लगता है ना कि जैसे गोंडा जैसे एरिया में अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग के यहाँ सब जगह पे, जगह जगह पे नल मिल जाता है,
5: बिल्कुल।
0: लेकिन लखनऊ या किसी बड़े एरिया में, ऐसी सोसाइटीज में नल होते नहीं है, तो वहाँ ज्यादा मसला होता है पानी खत्म होने के बाद। तो ये बड़ा नेक काम है कि अगर आप पड़ोसियों के लिए कहते हैं कि भाई पानी और चार्जिंग के लिए वो हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत ही नेक काम है, और बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और खुशी हुई कि आपके मोबाइल की बैटरी भले ही कम हो, लेकिन अभी तुरंत चार्ज हो जाएगी, उसका मसला नहीं है। सो कुछ सुनाना चाहेंगी आप?
5: सर बिल्कुल।
0: अच्छा तो चलिए भाई सुन लेते हैं, क्योंकि संडे का टाइम है, और कॉलिंग प्रोग्राम में हम सुनने की कोशिश भी करते हैं जो लोग गाना सुनाते हैं।
5: जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिसको धुएं में उड़ाता चला गया। जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
0: वाओ क्या बात है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
5: मेरी बस यही तमन्ना है, यही ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा सबकी मदद करे सर।
0: बहुत बहुत प्यारी बात है, और जिस पोजीशन में आप हैं, यानी जहाँ पे आपके यहाँ लाइट आ रही, वहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल वही मुझे लग रहा है कि देखिए, डेली लाइफ में इंसान ने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन उसको नहीं होगी कि इस तरह की चीजें होंगी।
5: जी सर,
0: क्योंकि अगर किसी सिंगल किसी पर्सन पे आती है, तो चलिए उसके लिए जुगाड़ होता है कि भाई मिस्त्री आ जाएगा, चीजें सही करा लिया जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बट चूंकि सभी के लिए प्रॉब्लम है, तो ये एक साथ दिक्कत कर जाती है। लेकिन जो लोग इन चीजों से संपन्न हैं, वो जरूर हेल्प करें आसपास में, ताकि इस तरह के सभी का काम चल जाए। एंड बहुत प्यारा गाना आपने चूज कर लिया, और मुझे इतना पसंद है, चूंकि साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है ये गाना, और मोहम्मद रफी साहब की आवाज का है, लेकिन फिलहाल आज आपकी आवाज में बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू यू कॉल करने के लिए और सुनाने के लिए। तो भाई ये थी हमारी आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ, और देखिए किस तरह से वो लोगों की हेल्प भी करती जा रही हैं, और ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जैसे कल मेरे घर की बात है कि भाई हैंडपम्प लगा हुआ है बाहर, तो उसमें वैसे तो एक कील निकाल लिया जाता है कि भाई बच्चे खेलते हैं तो बिला वजह भी चलाया करते हैं तो ख़राब ना हो जाए, लेकिन कल से लगा करके छोड़ दिया गया क्योंकि कल से काफ़ी लोग आ चुके हैं और पानी भर रहे हैं, और लिटरली सभी को ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे लिए हो सकता है बहुत आसान है, मेरा नल लगा है भाई कभी भी पानी ले लेंगे, हमें इतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जिसके घर में नल जैसी चीज़ें नहीं है फैसिलिटी, या जिसके यहाँ ऊपर का पोर्शन है इस तरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए हाथ धोना है, उसके लिए खाने में डालना है, बर्तन धोना है, कुछ भी ऐसा है, तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इससे वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे के लिए सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं, ये बहुत बेहतर चीज़ है, और जितना हो सके हमको शायद हेल्प करते भी रहना चाहिए, क्योंकि ये आपदा जो है वो अचानक से आई है और इसको एक्सपेक्ट, सच बता रहे हैं, नहीं किया था, मतलब किसी ने इस तरह इस कदर नहीं किया था। फिलहाल इसी कड़ी में चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
6: हेलो संडे वाला गुड मॉर्निंग अर्जुन
0: सर। संडे वाला गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, कैसी हैं आप?
6: बहुत बढ़िया है, केम छो
0: केम छो। अरे तूफान मचे
6: तमे मजा मचे
0: नॉट मजा में तेज तेज हवा मचे आप बताए कितने परसेंट है बैटरी आपके फोन की बैटरी कितने परसेंट है?
6: जी सर,
0: फोन की बैटरी कितने परसेंट है?
6: सर मेरे फोन की बैटरी इस समय 20% है।
0: 20% है, और ये क्या रिचार्ज होने की उम्मीद है कि अब उम्मीद छोड़ दी जाए?
6: रिचार्ज, पावर बैंक डिस्चार्ज है, इन्वर्टर डिस्चार्ज है, जनरेटर से काम चलने की उम्मीद है बड़े पापा के यहाँ।
0: अच्छा उनके यहाँ है लगा हुआ है?
6: हाँ जनरेटर है, उम्मीद है कि आज फोन थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा, बाकी तो कल रात में कैंडल लाइट डिनर हुआ था।
0: कैंडल लाइट डिनर तो कल हम सब क्या हुआ था
6: कैंडल लाइट डिनर मतलब सारे कैंडल्स को जला लिया गया था, कम से कम 6-7 कैंडल, एक्चुअली हम कैंडल्स ना हमेशा रखे रहते हैं।
0: अरे वाह ये बढ़िया है।
6: तो वो उससे किचन में थोड़ा यूज हो गया, थोड़ा बाहर यूज हो गया, खाने के टाइम पे सुबह तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उजाला थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन शाम को थोड़ी सी दिक्कत होती है 5 बजे के बाद से।
0: बिल्कुल,
6: तो कैंडल लाइट डिनर हो गया।
0: कल
6: दिन ऐसा कर रहा है किताबों के साथ।
0: वाओ क्या बात है। अच्छा वैसे एक चीज है, मतलब कल का एक फील भी है, मेरी छोटी बहन ने भी कहा था कि पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा सा भी लगा, जैसे एक साथ सब लोग काम कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, पानी भर रहे थे, बैठ रहे थे, और वो अंधेरा था तो मोमबत्तियां जला रहे थे, कोई इधर से किसी की हेल्प कर रहा है, कोई इधर से, तो मतलब ये भी एक तरह से अच्छा होता है।
6: सर, वो जो गेम होता है चिड़िया उड़,
0: कल मैं अपने फ्रेंड से ही बोल रहा था कि वो व्यापार एक बीच में आता था खेलने वाला, मैंने कहा लूडो मैनुअल वाला लगाते हैं, फोन की बैटरी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कोई मैनुअल हो तो बताओ पास आसा लेकर के खेला जाए। तो
6: बिल्कुल यही हम लोगों ने भी परसों शाम को किया था, हम लोगों ने कैरम यूज किया था, कैरम खेलेंगे।
0: अच्छा
6: भैया थे बगल में तो वो भी बैठे थे, उनका खैर फोन चार्ज था, तो आए बोले कि तुम लोग की आवाज सुनी तो हम भी आ गए, चलो कुछ गेम खेलते हैं, पुराना दौर याद करते हैं।
0: वाह,
6: तो वो आए तो हम लोगों ने गेम खेला, बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें की।
0: क्या बात है, तो मतलब आपदा को अवसर में बदल दिया फिलहाल आपने।
6: बिल्कुल, वो पुराना दौर ना, पुराने गेम जो लूडो हुआ करते थे या कैरम हुआ करते थे या अंताक्षरी हुआ करते थे, यू नो अंताक्षरी तो ऐसा गेम है सर कि बिना चेहरा देखे भी खेल सकते हैं, बस आवाज सुनाई दे।
0: वाह सही बात है।
6: तो काफी मजा आया, और कुछ मतलब हमने ऐसी चीजें मतलब कल शाम को देखी, क्या हुआ था कि सब लोग खाली हुए थे, तो मम्मी की जो पुराना वाला छोटा सा बक्सा है उसमें बहुत सारे पापा के लेटर्स रखे हुए हैं अभी भी।
0: ओके,
6: तो हमने ना मम्मी से कहा मम्मी पुरानी चीजें बताओ ना अपने बारे में, वहाँ कोलकाता के या फिर नानू के यहाँ जब आप रहते थे, तो सारी चीजें उन्होंने बताई, और कुछ पुराने खत भी पापा के लेटर्स जो मम्मी को भेजते थे अलाहाबाद से वो भी दिखाए, पढ़ के सुनाए, बहुत अच्छा लगा। सारी चीजें छोटी छोटी हैंकी जो मम्मी ने रखी थी, जो छोटे छोटे बर्तन रखे हुए थे मम्मी ने हम लोग के लिए बचपन में लिए थे, सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी, शाम को बड़ा मजा आया।
0: बहुत बड़ी बात है आपने की कि वो लेटर्स का पढ़ना, वो साथ में बैठना, मतलब इसी बहाने।
6: हालांकि पापा की हैंडराइटिंग बहुत प्यारी थी लेकिन समझ में नहीं आती हम लोग को, तो मम्मी को समझ में आ जाती थी कि क्या लिखते थे, तो मम्मी ने पढ़ के बड़े प्यार से सुनाया।
0: वो जैसे वही होता ना कि कोई बढ़िया सा कर्सिव लिख दे तो कर्सिव राइटिंग हम लोग को समझ में नहीं आती, मतलब मैं तो खुद को जाहिली मानता हूँ।
6: मेरे पापा एक्चुअली बहुत कहना है बहुत अच्छे इंसान थे, और उससे भी ज्यादा वो बहुत, उनका जो माइंड था वो बहुत शार्प था, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग हिंदी की मुझे कम समझ में आती थी, तो मम्मी को समझ में आ जाती थी। तो बड़े अच्छे से मम्मी ने जो है सारी चीजें बताई उनके बारे में, और कि कैसे क्या लिखते थे, कितने प्यार से लिखते थे, कितनी सटीक बातें लिखते थे।
0: सही में याद आ जाती है ये सारी चीजें, और इसी बहाने हम लोग को बैठने का मौका मिल जाता है।
6: जी बिल्कुल, बैठने सर दो दिन तो मतलब बृहस्पतिवार और शुक्रवार तो खैर उतना नहीं पता चला, लेकिन शनिवार को कहीं ना कहीं, शुक्रवार शाम से थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि इन्वर्टर भी बैठने लगा था, लाइट की भी दिक्कत होने लगी थी शुक्रवार शाम से, तो बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। बाकी पानी वानी का वैसा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, और आज मौसम ठीक है, आज छत पे आने लायक ऐसा मौसम है।
0: तो छत पे ही है क्या अभी इस वक्त आप?
6: हाँ अभी तो हम छत पे ही हैं।
0: बहुत बढ़िया, और बहुत सारी सलामती की दुआ करते हैं आप लोग के लिए, और जो मोमेंट्स जिए हैं इस तरह की आदतें हमारी नॉर्मल लाइफ में भी कभी कभी बैठने की आ जाए, और ऐसी हम आशा करते हैं, हम सभी लोगों के लिए करते हैं, ताकि इस तरह हम लोग बीच बीच में चीजों को एंजॉय करते रहा करें, लेकिन आपदा आने पर नहीं, खुद से ही।
6: हाँ, क्योंकि फैमिली एक चीज बहुत अच्छी होती है कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना जाए, लेकिन जब फैमिली रहती है साथ में तो उनके साथ सर जो पल बीतते हैं फिर वो अच्छा लगता है, उनमें फिर वो दिक्कतें नहीं ज्यादा ध्यान में रहती है, वो मोमेंट्स ज्यादा ध्यान रहते हैं।
0: करेक्ट, सही बात है। So, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी आपने लर्निंग अपनी जो इनसाइट थी वो शेयर की है हमारे साथ पूर्णिमा, एंड ये फैमिली यूं ही हंसती खेलती रहे, आप भी खुश रहें और पूरा परिवार भी, ऐसी हमारी दुआ है।
6: जी सर, हम दो लाइन सुनाना चाहते हैं।
0: जी जी प्लीज।
6: मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसी पाली किस्मत ये जानिया रे, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसी पाली किस्मत ये जानिया। थैंक यू।
0: वाओ, थैंक यू सो मच टू यू, बहुत प्यारा सुनाया, और ये लिफाफा हमेशा संभाल के रखिएगा।
6: बिल्कुल,
0: थैंक यू सो मच पूर्णिमा फॉर कॉलिंग मी।
6: ओके सो बाय
0: बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। और भाई ये थे हमारे साथ में गोंडा से ही पूर्णिमा, जिन्होंने हमसे बातचीत किया और अपना हालचाल बताया, लेकिन साथ में जो इनके घर की फैमिली का जो क्वालिटी टाइम सुनने के बाद लगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि कल हम लोगों ने भी काफ़ी साथ मिल करके काम किया, और क्योंकि हमारे कुछ और कज़िन्स आ गए थे तो इसलिए मज़ा दोगुना हो गया, एक साथ हम लोगों ने भी कैंडल लाइट डिनर किया, न जाने कहाँ कहाँ मोबाइल फंसा फंसा के उसकी रोशनी को दिखाने की कोशिश की, पूरे खाना बनने के दौरान कोई इधर से टॉर्च लेके आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, मतलब लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार कह सकते हैं मोमेंट रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कई फैमिली में कल रात का ऐसा ही सिनारियो रहा होगा, और आज की तो खैर हम सभी लोगों ने उम्मीद लगा के रखी है कि शाम होने तक मे बी जो पेड़ गिरे हैं, जो लाइंस नहीं सही थी वो क्लियर हो जाए, एंड उसके अलावा कम से कम हमारी जो है वो बातचीत हो जाए प्रॉपर, और ये लाइट आने से जो मेन पीने के पानी की समस्या है, जो टंकियों में पानी खाली हो चुका है, उससे थोड़ा बच जाए। एंड मुझे सच बता रहा हूँ कि यही ख्याल आ रहा है कि भाई जैसे गोंडा जैसे जगहों पे जहाँ वाटर लेवल अच्छा रहता है वहाँ पर तो काम चल जाता है, लेकिन सोचिए जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम हो, सोसाइटीज़ हो, वहाँ पर क्या हाल होते होंगे। सो ये एक सोचनीय विषय है, फिलहाल सोचिए। जब तक मैं आपको एक सुपर्ब सा सॉन्ग सुनाता हूँ, वापस से आता हूँ, आने के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखने वाले हैं, क्योंकि आपसे फ़ोन पर बातचीत होती रहेगी। आज है संडे कॉल इन प्रोग्राम, और जब सब शट डाउन है तो ज्ञान स्थली चल रहा है अपनी ही रफ्तार में।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुभैया वापस से आ गए हैं और आने के बाद चलिए आपसे बातचीत का सिलसिला बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आज है संडे और संडे मॉर्निंग हम आपसे करते हैं 10 से 11 बातचीत कॉल इन प्रोग्राम गागा गुंडा विद आरजे अदनान में। तो फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ कौन है। जी हेलो,
2: हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अविनाश जी, कैसे हैं आप?
2: जी हम लोग तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आपकी तरफ का हालात को सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पुराना जमाना 1980 का जमाना लौट चुका है।
1: बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब जनहानि भी हुई है और बिजली के खंभे, तार, पेड़ ये सब बहुत ज्यादा दिक्कत की गई है। मतलब बहुत तेज हवाएं और बहुत टाइम तक चलता रहा, मतलब कई कई घंटे तक चली है।
2: जी जी जी बिल्कुल, और इसी कारण से देखिए कहीं हो सकता है कहीं पे कॉपी पेड़ और गिर गए होंगे और बिजली के खंभे में उखड़ गए, इसलिए तो बिजली का बहुत दिक्कत है। इसलिए अब मोबाइल भी सबका डिस्चार्ज हो चुका है, कहीं कहीं का होने वाला भी है।
1: बिल्कुल वही तो, मतलब कई फोन लोगों के डिस्चार्ज है। बट अभी रेखा कुशवाहा जी ने चैट बॉक्स पे आके बता दिया है कि उनकी जो फोन की बैटरी है वो 85% है। क्या लगता है कितना चल जाएगा अविनाश जी इनके फोन की बैटरी, कब तक चलेगी आप बताइए?
2: 85% है तो आराम से दो दिन तो चल जाएगा, अगर संभाल के चलाएंगे तो, और अगर संभाल के नहीं चलाएंगे तो 2-3 घंटे में ही खत्म हो जाएगा।
1: देखा, सुन लिया आपने चेतावनी रेखा जी हमारे अविनाश जी ने दे दी है, अगर संभाल के चलाएंगे तो 2 दिन और नहीं संभाला तो 2 घंटा।
2: वो तो अपने हाथ में होता है, लेकिन अगर इनके पास अगर जनरेटर की सुविधा हो या फिर पावर बैंक की सुविधा हो या फिर सोलर पैनल का भी सिस्टम हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए आराम से चल जाएगा, इनका इनके कोई दिक्कत नहीं होती है।
1: चलिए, अगर 3 तरह की सुविधा आपके पास है, सोलर पैनल की या पावर बैंक की, तो बताया है हमारे अविनाश जी ने कि भाई आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है।
2: जी जी, और देखिए इसमें क्या है, अगर अगर ऐसा स्थिति हम अगर पहले से आ सकते हैं अगर तो फिर बात दूसरी थी, लेकिन ये अचानक ऐसे आपका आता है तो हम सबके लिए संभालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है।
1: हाँ, तैयारी नहीं होती ना उसको लेकर के।
2: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कितने अच्छा सुनहरा मौसम चल रहा था लेकिन अचानक से आई और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है।
1: हाँ, काफी हद तक सही कह रहे हैं।
2: तो ऐसे मौके पे अगर मान लीजिए कि कभी एक बार मान लीजिए कभी ऐसा मौका है कि चलती ट्रेन की लाइट अगर बंद हो जाए और किसी को बोले कि ट्रेन का आगे लाल चलने का भागना है और इसके लिए आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो कोई इस नौकरी के लिए कौन तैयार होगा?
1: लगता है आपने वो वीडियो देखी हुई है। और मुझे लगता है दूसरा सवाल यही होने वाला है कि समुद्र से जो पानी बाहर आता है लहरों से उसको वाइपर लेकर के पीछे करना है।
2: मेरा दूसरा सवाल तो आपने खुद ही
1: ये मेरा ऑफर था जॉब का आपको लिए कि आप इसको कर सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल।
1: वाह।

0: लोग दिए के साथ साथ कैंडल भी जलाते हैं
1: बेशक। हाँ, तो वो मुझे लगता है जो घर की बची हुई रह जाएगी आधी आधी, उसको उठा उठा के रख लिया जाएगा आपदा के लिए।
0: लेकिन चलिए अब इससे निकलने के लिए अब हम सबको ही कोशिश एक दूसरे को मदद करना चाहिए, और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। बस एक दूसरे को मदद कीजिए तो ही अब इससे निकल सकते हैं हम सब।
1: बेशक सही फरमाया आपने, एंड थैंक यू सो मच अविनाश जी कि आपने कॉल किया और इतना कंसर्न हम लोगों को लेकर के शो किया।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद। सो भाई चलिए, ये तो हमारे साथ में हमारे अविनाश जी थे जिन्होंने हमको कॉल किया और हमसे बातचीत किया है। फिलहाल अब चल रहे हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। लेकिन उससे पहले हमारी रेखा जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग आरजू सर, हैप्पी संडे, गुड डे। हैप्पी संडे आपको भी, गुड डे। उदालक जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। फाइव ऑफ ट्रीज ऑल्सो फेल डाउन, आपने कहा 5 पेड़ भी गिर चुके हैं, बेशक सही बात है। और ये अफसोस तो सच में, स्पेशली मैंने जो सामने से जिस पेड़ को देखा, जिसकी छाया का इस्तेमाल किया या जिसके नीचे बारिश से बचने के लिए अक्सर खड़ा हो जाया करता था, धूप में बहुत राहत का काम देता था ये पेड़, बहुत ज़्यादा शीतल छाया थी, उसका गिरने का बहुत ज़्यादा अफसोस है सच में। फिलहाल चलते हैं अगली कॉलर की तरफ, देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो, हेलो
2: हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, कौन बात कर रहे हैं आप?
2: जी मानवर, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोधन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे हैं?
1: अरे बहुत बढ़िया, मथुरा से आप बात कर रहे हो, देखिए मथुरा की जो मिठास है वो आपकी बातों में झलक रही है। सबसे प्यारी बात लगता है कि सुबह सुबह ही आपने पेड़े का सेवन करके उसके बाद हमसे वार्तालाप का शुरुआत की। बहुत प्यारी लैंग्वेज है मथुरा की।
2: आगरे का पेठा और मथुरा वृंदावन का पेड़ा बहुत ही मशहूर है।
1: और रेडियो ज्ञान स्थली पे आप आगरा से।
2: जी, बिल्कुल।
1: तो वैसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो हम जिस आफत, जिस आपदा की बात कर रहे हैं, वो आपकी तरफ भी आई हुई है या ऐसी साइड है बस अभी?
2: हम तो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा जो मथुरा वृंदावन है यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि बरसात में भी हमें छाती की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: ओ, अच्छा।
2: तो मतलब... जी आपके तरफ है गोंडा में, बदायूं में, गोरखपुर, देवरिया, बनारस, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ये तो पानी से लबालब भरे हुए है। कितनी जन हानि हो रही है, कितनी कृषि की हानि हुई है, किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। और हमारी मथुरा वृंदावन तो सूर्य देवता अपने प्रखर किरणों के साथ में उपस्थित रहते हैं। हाँ, कल शाम को अवश्य हल्की हल्की फुहार पड़ी थी, बूंदाबांदी हुई थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से तापमान में काफी गिर गया है, लगभग 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम है और 20-23 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम।
1: अच्छा, तो मतलब मेन आपदा हम लोग झेल रहे हैं लेकिन यहाँ की ठंडी हवाएं आपको मिल रही है।
2: जी जी, मजे तो हमारे हैं।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सेफ रहना बहुत जरूरी है और ये हमारी कामना है कि आप और आपकी पूरी फैमिली जो है वो हमेशा सेफ रहे। तो कुछ सुनाना चाहेंगे नवीन जी हम लोगों को आज?
2: मतलब कि मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ और आपके नियम शर्तों के मैं थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ।
1: अच्छा,
2: क्या सुनाए, कैसे सुनाए, क्या चीज आप कहना चाहते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर बता दीजिए।
1: जी जी जी बिल्कुल। तो हर संडे को हम कॉल इन प्रोग्राम करते हैं 10 से 11, सिर्फ संडे एक घंटे के लिए, जिसमें अभी आपने कॉल किया है, और इसका जी नाम जी देते हैं गाएगा गुंडा विद आरजे अदनान, यानी मेरे साथ।
2: जी, तो चलिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज।
2: जो कि मेरी स्वयं की रचित हुई है और बहुत पुरानी कविता है ये।
1: अरे वाह, क्या बात है, स्वरचित कविता हम जरूर सुनना चाहेंगे।
2: जी, तो कविता कुछ इस प्रकार है कि न भटक ऐ दिल, न भटक ऐ दोस्त दुनिया के ख्वाबों में, न भटक ऐ दोस्त दुनिया के ख्वाबों में, न मिलेगा तुझे कुछ ख्वाबों के बागों में। भरे हैं पराग रस अधखिली इन कलियों में, भरे हैं पराग रस अधखिली इन कलियों में, देख कर इन्हें नज्जा इनकी गलियों में, समझता है जिन्हें तू, समझता है जिन्हें तू अपना अपनी निगाहों में, है ये

0: पराई न आएंगी तेरी बाहों में, न आना ऐ जिगर, न आना ऐ जिगर इनकी अदाओं में, वरना गिर जाएगा दुनिया की निगाहों में, टूटा हुआ फूल भी जो सूरज मिल जाए राहों में, टूटा हुआ फूल भी जो सूरज मिल जाए राहों में, बनाकर मीत भर ले अपनी बाहों में, बनाकर मीत सजा ले अपनी बाहों में।
1: वाओ, क्या बात है, मतलब क्या अंदाज है आपका, और लिखने की जो आपकी कविता की आयरनी थी उसको समझ करके बड़ा हैरानी हुई, कितना गहरा और कितनी बेहतरीन बातें आपने लिख दी है।
0: धन्यवाद धन्यवाद, आपको आशा और उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और जो श्रोता सुन रहा है उन्हें भी अच्छा लगेगा।
1: हाँ बिल्कुल, नहीं अच्छा लगा ही है, और नहीं लगेगा तो घर तक लगा के आएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे करीब में ही सब है।
0: स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है आपका।
1: लेकिन आप जब भी जुड़िए संडे संडे में, या आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर भी हमारे पास रोज, हम शो के खत्म होने से पहले 10:45 के आसपास लेते हैं कविताओं को, तो जब भी आपका मन हो तो आप भेज सकते हैं, या आपके कोई कॉन्टैक्ट में हो जो लिखते हो और चाहते हो कि भाई उनकी भी कविताओं को पढ़ा जाए, तो वो भी हमको भेज सकते हैं।
0: ओके सर, क्या है कि आपके प्रोग्राम के बारे में हमें अविनाश जी से जानकारी मिली थी, जो कि त्रिपुरा से हैं।
1: जी जी।
0: और अभी अभी उनकी भी कॉल लगी थी और मैंने उनको भी सुना, और मैंने प्रयास किया कि चलो आज रेडियो गोंडा में लगाया जाए, जागृति स्थली में, तो प्रयास किया करते करते लग गया और आपसे वार्तालाप हो रही, काफी अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभूति होती है जब भी इस तरह से वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी मथुरा की मीठी सी जो भाषा है वो आपने शो कर ही दिया है बातचीत करके, और रेडियो ज्ञानस्थली आपका बहुत
0: शुक्रगुजार। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मथुरा का मूल निवासी नहीं हूँ, बल्कि आपके क्षेत्र प्रयागराज का हूँ।
1: आप कहीं के भी हो, आपने जो मृदभाषी
0: हमारी जो भाषा है वो अवधी है।
1: अरे वाह, क्या बात,
0: हम घर में अवधी में वार्तालाप करते हैं,
1: तो जाते जाते हम चाहेंगे अवधि में ही आप बोल के जाइए। थोड़ा सा अवधि में जाते जाते आपको आज जुड़ करके कैसा लगा, इसका अनुभव आप अवधि में हमसे कहिए।
0: हमके बहुत बढ़िया लगे, इतना अच्छा लगा था कि क्या बताइए, कि हमका तो जनात कि हम आपसे ऐसे बातचीत कर रही है, और जब भी बातचीत हो तो अवधि में हो तो बड़ा अच्छा लगी।
1: अरे वाह, क्या बात है भैया, देखिए टैलेंट।
0: पहले तो लागत है अपन अभी भाषा जान गया, इतना मीठी और प्यारी भाषा है बोली कि क्या बताई, बस हम तो अपने भाषा से अपने क्षेत्र से बहुत प्यार है, लगा हुआ है, हम तो जहाँ मौका मिला था वहाँ बात कर ली थी अवधि से।
1: वाह वाह, हमें बहुत बढ़िया लगा है और बहुत ही मजा हुआ है। बाकी महेंद्र जी ने राजस्थान से लिख दिया है, वाह क्या लाइन है आपकी जो कविता थी, उसके लिए उन्होंने बहुत आपको साधुवाद दिया है।
0: महेंद्र जी को धन्यवाद करता हूँ,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका इंतजार रहेगा नवीन जी अगली बार के लिए।
0: नवीन, शारदा प्रसाद प्रजापति जी
1: माजरत चाहेंगे, क्योंकि आपके कॉल का जो नंबर नाम लिख के आ रहा था वो इसी नाम से आ रहा था।
0: हमारे बेटे का नाम है नवीन मोहन प्रजापति।
1: अच्छा अच्छा, तो शारदा जी अगले हफ्ते से भी हम इंतजार करेंगे हर संडे 10 से 11 के बीच में कॉल इन प्रोग्राम में।
0: ओके ओके, मैं प्रयास करूंगा आपसे वार्तालाप होती रहे।
1: बिल्कुल, नमस्ते,
0: धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और काफी सुखद अनुभूत हुई वार्तालाप करके, और आपको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिन मंगलमय हो, शारदा नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, बहुत शुक्रिया, और देखिए हमारे साथ में शारदा जी थे, और फिलहाल वो चूंकि मथुरा से हैं, ऑफकोर्स मथुरा की जो भाषा है, मुझे इससे पहले भी दो लोग जो हैं वो मथुरा के मिल चुके हैं, और सच बता रहे हैं ऐसा मन करता है जैसे कि सुनते ही जाओ यार, जो ब्रज भाषा है इतनी मीठी इतनी प्यारी है, और दोनों बार मेरे काम के सिलसिले में लोग मिले, लेकिन काम की बातें साइड में हुई, पहले ये बातें हुई कि भैया भाषा बड़ी अच्छी है आपकी लग रही है, और बहुत प्यार से आप बोल रहे हैं, इतना सॉफ्टनेस, इतना अच्छा लग रहा है, मैंने कहा वाह क्या बात है। सो ये भाषा सच में अपने आप में काफ़ी प्यारी है, और फिलहाल चूंकि अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, और उसके बाद चूंकि आपके लिए बहुत सारी कामनाएं, स्पेशली जो लोकल से सुन रहे हैं उनकी हम प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, घर में पानी नहीं है, इस तरह से बड़ी प्रॉब्लम है, और उम्मीद है कि भाई आज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सही हो पाएगा, वापस से आएगी, और आने के बाद जो है हम लोगों के लिए थोड़ा सा इजी वापस से हो पाएगा। एंड तब तक के लिए भाई अपना ख्याल ज़रूर रखिए, और आज का ये गुड मॉर्निंग गोंडा शो कैसा लगा है ये भी ज़रूर बता सकते हैं, और बहुत सारी दुआएं। और बाहर निकलिए तो प्लीज़ संभल कर, जैसा कि बताया कि भाई जहां स्पेशली पानी भरा है वहां थोड़ा सा ये चीज़ों का ध्यान ज़्यादा ही रखा जाना चाहिए। तो चलिए अब आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त है विदा लेने का, लेकिन शो कैसा लगा ये आप बता सकते हैं। फ़िलहाल मुझे तो बहुत मज़ा आया, और आज के दिन भी आप जुड़े इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत सारा प्यार आरजे अदनान की तरफ से आपको।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: तो भाई चलिए, फिलहाल हम वापस से आ गए हैं आपके हम्टी डम्टी वाले प्रोग्राम में गीता दीदी को लेकर के, क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा है रेडियो ज्ञानस्थली का संडे स्पेशल बच्चों के लिए। हालांकि अब जिसके मन में बच्चा है वो भी इसको प्रोग्राम को सुनता है और वैसा ही महसूस करता है, है ना दीदी?
2: देखिए भाई, मतलब दिल तो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग भले ही हो, लेकिन दिल हमेशा जो है बच्चा जैसा ही रहता है, बच्चों जैसा ही रहता है। ये हमने देखा, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो, तो कभी कभी हमने देखा वो चोरी से आइसक्रीम चाट रहे होते
1: और कहते हैं बताना चले,
2: और बच्चों को मना करेंगे और खुद जो है मचल जाता है उनका मन,
1: है ना? तो बिल्कुल सही बात आपने कहा। तो ये खास प्रोग्राम आप खास इंसानों के लिए, खास दिल की फीलिंग्स के लिए।
2: तो सबसे पहले तो जो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं वो जुड़ चुके होंगे,
1: परेशान लिसनर्स हमारे हम सभी परेशान हैं
2: तो सभी को ये बरसात भरी नमस्कार
1: बिल्कुल, बरसात भरी, आंधी भरी, तूफान भरी और लाइट से कटी, पानी से कटी ये जो सुबह है,
2: सच में कितना जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। हर एक व्यक्ति जो है सुखी, मतलब कोई दिखी नहीं रहा है, हर कोई परेशान है इस बारिश से और इस आंधी पानी तूफान से जो अनएक्सपेक्टेड था
1: नहीं, लेकिन सबसे अच्छी बात दीदी ये हुई कि आज का जो अलर्ट जारी था उस तरह अभी फिलहाल उतना जबरदस्त रहा नहीं, मतलब
2: साइक्लोन थोड़ा सा कमजोर मुझे लगा।
1: हाँ, और इसी वजह से अब चीजों को बेहतर किया जाने का वक्त मिल गया है।
2: तो यही है कि छोटी छोटी जो तैयारियां होती है ना, तो किसी इमरजेंसी में वही काम आती है। और हमारी आदत है, हम भारतीयों की आदत है कि कभी किसी तैयारी से नहीं, हमेशा काम एटेंडम करना है।
1: सही बात है। अब देखिए जैसे कल मोमबत्ती की मारा मारी होगी कहीं पूरे मार्केट में मोमबत्ती नहीं मिल रही है,
2: सच में,
1: है ना?
2: बिल्कुल।
1: तो कल हमें चराग की याद आ रही थी कि भाई चराग होता तो कम से कम वही जला लेते।
2: अलादीन को खोजा जा रहा होगा
1: नहीं वो वाला नहीं, खाली बस लौ जल जाती काम हो जाता सो दीदी स्टोरी क्या है आज? हमारे श्रोता जो जुड़े हैं वो आपको सुनना चाहते हैं और स्टोरी सुनना चाहते हैं।
2: स्टोरी तो हमारी हमेशा ही बढ़िया होती है, मस्त होती है, लेकिन आज जैसे कि हमने देखा निस्वार्थ भाव का जो प्रेम होता है ना, वो जो है लास्ट समय तक काम आता रहता है। तो स्वार्थी प्रेम नहीं करना चाहिए किसी से भी, प्रेम तो वास्तव में निस्वार्थ ही होता है।
1: बिल्कुल।
2: तो आज सुबह हम बहुत ही इंस्पायर हुए कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम का भाव है। तो आज मैंने ऐसी कहानी चूज करी है भाई, ये जो मुश्किल की घड़ी है सबको एक साथ मिलके बितानी चाहिए, काटनी चाहिए, है ना, तभी जिंदगी चलती है।
1: सही बात है।
2: तो सुबह से काफी लोग परेशान थे, किसी को पानी की परेशानी और लाइट की, तो क्योंकि हम जो है आदि हो चुके हैं इन चीजों की,
1: इन चीजों के आदि हो गए और हमने कोई बैकअप प्लान भी बना के नहीं रखा इनके अलावा,
2: तो क्राइसिस तो होनी थी।
1: हाँ, लेकिन एक बात है दीदी, मजा भी बहुत आया कैंडल लाइट डिनर हुआ
2: मालूम है सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जैसे नहीं कोरोना टाइम पे सब साथ
1: थे वही वाला वही मैं कह रहा
2: तो
1: था,
2: हम लोग भी सब साथ साथ थे और खूब मजे से जो पकवान बनने शुरू हुए हैं
1: कोई टार्च दिखा रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई बर्तन हल्का जल्दी से धो के आ रहा है,
2: बिल्कुल सब मिलजुल के काम कर रहे थे और फिर क्या पकौड़े और कॉफी का आनंद
1: लिया
2: चलता
1: गया।
2: रहा
1: क्या बात है
2: तो ये सब चीजें कल देखने को मिली, वरना किसी के पास वक्त कहाँ एक दूसरे के लिए।
1: सही बात है, ये बात तो सच्ची गई। सो आपने भी लगता है काफी एंजॉय किया।
2: हाँ, तो कभी कभी जो ईश्वर है वो भी मतलब कहते हैं मार्ग पे ले आता है लोगों को, कि अब ऐसे तो सारे लोग हैं अपने अपने कमरे में लगे हुए, अपने अपने मोबाइल में लगे हुए, किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं, लेकिन देखिए ईश्वर ने कैसी लीला रची है कि सब एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, जो किचन में झांकने नहीं जाता था वो भी किचन की ओर भागा दौड़ा चला गया।
1: सही
2: मैं
1: बात
2: तो
1: है।
2: यही देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि ऐसे पहले परिवार हुआ करते थे, ऐसे ही काम जो है बांट करके होता था।
1: सही बात है, बहुत प्यारी बात आपने कही। और कल इस बात का एहसास भी हुआ कि जैसे मैंने खुद बाहर जाके बर्तन धोए।
2: सच में
1: क्योंकि भाई बाहर ही हैंडपंप लगा हुआ है और घर के जस्ट बाहर ही, और वहीं से जल्दी जल्दी धो करके लाया, क्योंकि उस वक्त बरसात भी लगातार हो रही, पूरे में अंधेरा है और खाना खाने
2: पानी की सारी टंकियां खाली
1: हो चुकी है। मतलब बॉटल में पीने का पानी आ रहा है, भगोने में खिलाने जो खाना बनना है उसका अच्छा, पानी आ रहा है।
2: यही तो वक्त था पहले।
1: हाँ, यही
2: कोई दिखावा नहीं था, कोई कुछ नहीं था।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: आज तो हम दिखावे में बर्बाद हो गए हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कल का सबका लगभग टाइम ऐसा ही गया है। परेशानी के बीच में हमने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को महसूस किया कि परिवार क्या है, अपने क्या है और मिलकर करने की क्या फीलिंग होती है। वैसे दीदी अब हमारी चल रही हैं आज की स्टोरी की तरफ, और चलिए देखते हैं कि भाई आज दीदी कौन सी स्टोरी हम सबको सुनाने के लिए लेकर आई हैं।
2: तो आज कहानी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार कहानी है, और बेटियों को लोग थोड़ा सा नज़र से देखते हैं, ऐसा नहीं है, बेटियां बहुत समझदार होती हैं। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। बहुत समय पहले एक पंचनद देश में एक न्यायप्रिय और समृद्धशाली राजा का राज हुआ करता था, और उसके साथ साथ बेटियां थीं, जिनमें सबसे छोटी बेटी उसे सबसे ज्यादा अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि उसकी बेटियां उसके बारे में क्या सोचती हैं। राजा तो बेटियों के बारे में बहुत कुछ सोचा करता था और किया भी करता था, लेकिन उत्सुकता यह थी कि उनकी बेटियां उसके बारे में कैसे विचार रखती हैं। उसने सभी बेटियों को दरबार में बुलाया और एक एक करके पूछा, बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। दूसरे से पूछा, तुम मेरे बारे में बताओ। तो जो सबसे बड़ी बेटी थी वो बोली, पिताजी आप मुझे शहद से भी अधिक मीठे लगते हैं। दूसरी बेटी को बुलाया गया, दूसरी ने कहा, आप गुड़ जैसे मीठे हैं पिताजी। तीसरी बेटी ने कहा, आप मिश्री जैसे मीठे हैं। चौथी ने शक्कर, पांचवी ने मधु और छठी ने अमृत जैसा मीठा बताया। राजा उनकी बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ। अब सबसे छोटी बेटी की बारी आई। उसने विनम्रता से कहा, महाराज आप मुझे नमक की तरह स्वादिष्ट और आवश्यक लगते हैं, अब क्या था। ये सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे लगा कि छोटी बेटी ने उसका अपमान किया है। उसने कठोर स्वर में पूछा, तुमने मुझे नमक जैसा क्यों कहा। राजकुमारी ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, पिताजी मैंने वही कहा जो मेरे हृदय ने महसूस किया। भोजन में चाहे कितनी भी मिठास हो, यदि नमक ना हो तो उसका स्वाद अधूरा ही रहता है। मेरे लिए आपका स्थान बिल्कुल वैसा ही है जैसा खाने में नमक। लेकिन क्रोध में अंधे राजा ने उसकी बात नहीं समझी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नगर से किसी भी कोढ़ी व्यक्ति को लाकर छोटी राजकुमारी का विवाह उससे करा दिया जाए। रानी और मंत्रियों ने बहुत समझाया, रानी बहुत रोई, पर राजा ने किसी की एक बात ना सुनी। अंततः एक वृद्ध कोढ़ी को लाया गया और राजकुमारी का विवाह पूरे विधि विधान से उसके साथ कर दिया गया। राजकुमारी बिना किसी शिकायत के अपने पति के साथ महल छोड़कर चली गई। उसने अपनी एकमात्र सोने की अंगूठी बेचकर एक ठेला खरीदा। वह प्रतिदिन अपने पति को ठेले में बैठाकर नगर नगर में घूमती और भीख मांगकर दोनों का जीवन चलाती। उसके चेहरे पर कभी दुख या पछतावे के भाव आए ही नहीं थे। एक दिन वह अपने पति को एक तालाब के किनारे पेड़ की छाया में छोड़कर भोजन लेने बाजार गई। तभी कोढ़ी ने देखा कि कुछ कौवे तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो वे बहुत सुंदर हंस बन जाते हैं। यह अद्भुत नजारा और दृश्य देख करके उसके मन में आया कि यदि मैं भी इस तालाब में स्नान करूं तो शायद मेरा भी कोढ़ दूर हो जाए। वह मन ही मन विचार करने लगा और फिर बड़ी सावधानी से तालाब में उतरा। उसने अपनी एक उंगली पानी के बाहर रखी ताकि उसकी पत्नी बाद में उसे पहचान सके। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसका सारा कोर जो है समाप्त हो गया और वो एक सुंदर तेजस्वी युवक बनकर बाहर निकला। केवल उसकी छोटी उंगली पर कोर का एक छोटा सा निशान शेष रह गया था। अब राजकुमारी लौट कर आई तो उसने ठेले पर एक सुंदर युवक को बैठे देखा तो वो घबरा गई और क्रोध से बोली, सच सच बताओ मेरे पति कहाँ हैं? यदि तुमने उन्हें कोई हानि पहुंचाई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी, समझ में आया? युवक मुस्कुराकर बोला, डरो मत, मैं ही तुम्हारा पति हूं। राजकुमारी को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अचानक कटार निकाल ली और बोली, मैं प्रतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं किसी पराये पुरुष की बातों में नहीं आ सकती। तब युवक ने अपनी वही उंगली दिखाई जिस पर कोड़ का निशान अभी था। उसे देखते ही राजकुमारी अपने पति को पहचान गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। युवक ने बताया, मैं कश्मीर का राजकुमार हूँ, एक बार मुझसे भूलवश एक महान साधु का अपमान हो गया था, क्रोधित होकर उन्होंने मुझे कोढ़ी होने का शाप दे दिया था, तभी से मैं अपने राज्य को छोड़कर इधर उधर भटक रहा था, आज इस चमत्कारी तालाब के कारण मुझे शाप से मुक्ति मिल गई है। अब क्या था, दोनों पति पत्नी कश्मीर लौटे। राजकुमार को स्वस्थ देख करके उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन उन्हें राज की गद्दी सौंप दी गई और राजकुमारी रानी बन गई। उधर पंचनद के राजा को भी अपनी भूल का बहुत गहरा पश्चाताप हुआ। तब उसे समझ में आया कि उसकी बेटी ने उसे नमक इसलिए कहा था क्योंकि जैसे भोजन में नमक सबसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही पिता का स्थान जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कहानी कैसी लगी और क्या शिक्षा पाई आपने मिस्टर अदनान?
1: कि नमक जो है वो घर में हमेशा रहना चाहिए। अरे भाई, तब तो खाने का टेस्ट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें जो प्यार करते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, बहुत। कि अगर कोई तारीफ करेगा तो बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्द लेकर आएगा।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन कई बार वो हमको जेन्युइनली जो उनके मन के अंदर चीजें चल रही होती है वही कहते हैं, और हम उम्मीद लगाते हैं कुछ और चीज की, और जब वो मैच नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं।
2: तो बस इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम कभी रूप या परिस्थितियां नहीं देखता है, और क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसानदायी होता है,
1: पछतावे की वजह बनता है,
2: और जबकि धैर्य, विश्वास और सच्ची निष्ठा अंत में जीवन में सुख और सम्मान दिला ही देती है।
1: बिल्कुल। सो भाई, आप लोगों को कैसा लगा आप भी जरा कमेंट करके बताइए।
2: ये थी सच्चे प्रेम की कहानी
1: बेशक।
2: तो आप लोगों को कैसी लगी, या आप लोग आ करके चैट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
1: क्योंकि हमको आपके बताए जाने का इंतजार है।
2: बिल्कुल।
1: सो भाई, गीता दीदी भी जा रही हैं और वापस से लौटने वाली हैं, लेकिन आप सुनते रहिए अपना हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी प्रोग्राम।

0: पी तावे के
1: नानी माँ जो खीर बनाई है सरदा से खाए के
0: नानी माँ जो खीर बनाई है सरदा से खाए के
1: खीर खा के सब ही बोली वाह वाह वाह।

0: घर जाए के नानी के घर जाए के नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाए के।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ?

0: कनक के जादूगर नू ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ,

राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।

0: WXYZ. Now I know my ABCs.
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो न हमसे ओ गुड़ियों की रानी, रे मामा रे मामा रे। कैसे बैठे हो तुम लोग
1: दीदी? गुड मॉर्निंग दीदी।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज क्या हुआ, बड़ा शांत शांत से बैठे हुए हो सब लोग, लग रहा बारिश का असर दिमाग तक हो गया है।
1: दीदी दीदी
0: तो कैसी रही ये बारिश?
2: बहुत अच्छी दीदी।
0: बहुत अच्छी
1: जी दीदी।
0: जाओ बच्चों, कैसी बात कर रहे हो, बहुत अच्छी रही।
2: मौसम देखने में मजा आ रहा था।
0: खाना नहीं मिला है घर पे ठीक से। मम्मा ने कहा बस अब क्या करें हम, लाइट नहीं तो खाना किस में बनेगा।
2: जी दीदी।
0: तो कैसे बना तुम लोग के घर पे खाना?
2: मोमबत्ती जला के।
0: सत्यम
2: जी दीदी।
0: कैसे बना घर पे खाना?
2: राइट बोल रहे, मोमबत्ती जलाकर।
0: मोमबत्ती सबके घर में, ऐसा लग रहा था कि जैसे 1980 में सब जा नहीं रहे इस समय। हाँ, जिसको देखो
2: कहते आधे लौट आए।
0: तो 1980 वाला समय था कि किसी के घर में लाइट नहीं है तो लालटेन जल रही होती है, तो कैंडल जल रही होती है, तो कहीं वो अतुल तुम क्या बता रहे थे कि तुमने एक नई वो बनाई, ढेबरी बनाई। कैसे बनाई थी?
2: एक कांच का बोतल लिया था, उसी में मिट्टी का तेल डाला और एक गमछा लगा के फाड़ के उसको ढक्कन में छेद करके थोड़ा सा निकाल लिया, उसी में आग लगा दिया।
0: अच्छा, मजा भी बहुत आया।
2: जी दीदी।
0: मजा इसलिए आया ना कि देखो जब बरसात का मौसम होता है ना, अब किसी को कहीं बाहर तो जाना नहीं है।
1: जी दीदी।
0: और सबसे बड़ी बात ये थी कि सारे लोग इकट्ठे हो गए, और उससे बड़ी बात ये थी कि सबके मोबाइल डिस्चार्ज हो गए।
2: जी दीदी।
0: है ना, तो अब कोई अपने कमरे में नहीं बैठा, सब सारे लोग एक साथ होकर के बैठे और फिर बातें होती रही, और उसके बाद फिर कैंडल लाइट में डिनर हुआ, और उसके बाद कैंडल लाइट में खाना भी पका
2: जी।
0: और सबसे बड़ी बात ही पकौड़ी और कॉफी का मजा सबने मिल कर के लिया
2: जी।
0: कल मुझे वैसे दो दिन बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल्स भी बंद थे, छुट्टियां भी हो गई थी।
1: दी, दी।
0: सबसे बड़ी बात यह कि सारे लोग मिलजुल करके घर में काम कर रहे थे, और एक बार मैंने ऐसा तब महसूस किया था कि जब कोरोना काल था
2: जी, लॉकडाउन लगा था
0: तो सारे लोग मिलजुल करके काम करते थे और खूब इंजॉय किया लोगों ने, तो वैसा ही फील हो रहा था। तो ये बताओ अनन्या, कैसे आज आई हो तुम? बहुत जगह पानी भरा था ना
1: दीदी?
0: हाँ, और वो आराध्या
3: जी दीदी,
0: तुम कैसे आई हो?
3: साइकिल से दीदी, पानी भरा।
0: साइकिल से? अच्छा, सब लोग किसी ना किसी से। देखो ये प्रोग्राम ही ऐसा है कि किसी का मन घर पे नहीं लगता है, सारे बच्चे इतने प्रॉब्लम में होते हुए भी घर से निकल कर के आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चों ये आपका मंच है, और यहाँ पे सब एक दूसरे को मिस करते हैं, है ना अतुल?
2: जी दीदी।
0: तो आज अनन्या क्या सुनाएगी?
1: पोयम।
0: पोयम कौन सी?
1: चिड़िया वाली।
0: चिड़िया वाली, सुना दो पोयम।
1: चुचू करती आ चिड़िया, डाल के दाना लाए चिड़िया, चिड़िया दाल पकाएगी बेट में देकर खाएगी।
0: हाँ भाई, चिड़िया दाल पकाएगी और मजे से बैठ के खाएगी। तो मुझे तो लगता है कि चिड़िया दाल कैसे पकाएगी, पानी तो आ नहीं रहा है। तो भाई कल पानी की भी तो बड़ी परेशानी हो गई है ना अनन्या?
1: जी दीदी।
0: हाँ, सबके घर में पानी नहीं था, मेरे घर में खाली हैंड पंप का पानी था, मेरे घर से बहुत सारे लोग पानी भर भर के ले गए। तो चलो भाई अब हमारे साथ
3: मेरे घर पे तो इन्वर्टर भी था तुम।
0: आज तो किसी का इन्वर्टर खत्म, किसी का मोबाइल तो खैर पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल किसी का नहीं चल रहा था।
3: जी दीदी।
0: है ना
3: जी दीदी।
0: तो चलो आज अब सानिध्या तुम क्या लेके आई हो आज?
3: दीदी भजन।
0: भजन, तो चलो अब हम लोग सब लोग भजन करते हैं, क्योंकि ये जो समय है ये ईश्वर को याद करने का ही समय है, क्योंकि इतनी परेशानी आ गई लोगों के लाइफ में 2-3 दिन के अंदर, तो ऐसे में ईश्वर का ही स्मरण। एक और सुनाओगी पोयम? तो चलो जरा जल्दी से सुना दो।
1: रेलगाड़ी उसका ड्राइवर अनारी उसमें बैठी एक बंदरिया पहने लाल रंग की साली पहले टिकट लेकर आओ फिर दीदी से चक्कर भारी सामान ले जल्दी कोई कुली बुला।
0: ओ तो उसका ड्राइवर कौन था? मंकी ही था?
3: नहीं दीदी जो वो
0: कौन भाई उसका ड्राइवर था अनाड़ी अनाड़ी तो मेरे ख्याल से बंदर ही था उसकी ट्रेन चला रहा था कुछ ऐसा ही था ना?
3: जी दीदी बंदर ही था।
0: तो चलो भाई अब हम चलते हैं सानिध्या की ओर और सानिध्या बहुत प्यारा सा भजन सुनाएगी।
3: रब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती समझाने पहुंचे सप्तऋषि सप्तऋषि सप्तऋषि ताई जिद तर रही।

0: जाते शीश पे दंड
1: और गले में डाले फिर सांप।
0: इतने सीधे साधे हैं सब टहटे
1: भोलेनाथ
0: भोलेनाथ। जाते शीश पे डंडा और गले में डाले फिर सांप। हाँ जाते शीश पे डंडा
1: और गले में डाले फिर सांप।
0: इतने सीधे साधे हैं सब टहते
1: भोलेनाथ भोलेनाथ।
0: ना ठपरा ना छपरा ना भूसती धर हम लड़ैया।
2: हाँ।
0: ना ठावे तो धरो वहाँ बस ओवत रहत लड़ैया। ना ठपरा ना छपरा ना भूसती धर हम लड़ैया। ना ठावे तो धरो वहाँ बस रोवत रहत लड़ैया। फेस धरे अब ढूट तुमसे त्याते बिन्नू ढोड़ा दंडर ले धूमे वह बिनते तछुए नहीं हूँ वह बिनते तछुए नहीं आ।

0: काटे शीश पे चंदा और गले में डाले फिर सांप।
1: इतने सीधे साधे हैं सब
0: कहते भोलेनाथ भोलेनाथ।
1: जटा लटाना टहू सवारे दी सत महाभयंतर मोर।

0: रामदेव ते मर्दनहारी, वह धर दृष्टि क्या जाने, वह धर दृष्टि क्या जाने, ताई जिद तर रही, ताई ठमर रही, ताई जिद तर रही,
1: काय को मर रही, ऐसे वरते लाने,
0: जाते शीश पे डंडा और दले में डाले फिर रह साप, इतने सीधे साधे है सब कहत भोलेनाथ भोलेनाथ।
1: वाह, तालियां बजा दो भाई बच्चों। देखो हम तो बस खाली एक लाइन ही सुनते आ रहे थे ना कि काय जिद कर रही सप्त ऋषि वाला वो था ना, लेकिन देखो सानिध्या ने पूरा भजन सुनाया है पूरा, ठीक है ना। तो सानिध्या के लिए भाई हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, इतना सुंदर ये बहुत इस समय ट्रेंड्स में है ये भजन, है ना
2: जी दीदी।
1: और एक पिक्चर भी आई है ना बच्चों
0: जी दीदी,
1: हनुमान अंश देखी आप लोगों ने
0: दीदी? मैंने देखी
3: जी दीदी।
1: हमने भी देखी है, है ना, वो करोरी बाबा जो है नीम करोरी बाबा जी की
2: जी।
1: पिक्चर है ये और उनके कितने सारे चमत्कार इसमें दिखाए गए हैं, है ना। तो चलो चलते हैं हम आराध्या की ओर। और आराध्या क्या सुनाओगी आज
0: दीदी? आज बारिश पे कविता।
1: बारिश पे कविता
0: जी दीदी।
1: तो चलो सुना दो आज बारिश पे कविता।
0: बारिश का मौसम आया, चेहरों पर मुस्कान लाया, हवा चल रही है मंद मंद, सब लेते इसका आनंद, चारों ओर फैली हरियाली, ये हर कोई बारिश का गुड़गाता, मौसम ये सब का मन भाता, तुम भी लो वर्षा की आनंद, कागज की नाव बच्चे चलाते, ऐसे नजरे दिल को बुलाते, आओ हम सब भी मिलकर झूमे नाचे खुशियाँ मनाएं, अंदर मन सबका खुद उठाएं।
1: अरे बाप रे भाई, ऐसा तो हो ही रहा है ना कि बारिश में तो वैसे तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन भाई सब बात आराध्या की ठीक है कि हरियाली भी है और चारों तरफ खुशहाली भी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा इस बारिश से परेशान हो गए हैं ना
0: जी,
2: तो किसान लोग
1: उनकी फसल जो है बिल्कुल नष्ट हो रही है ना, इस समय दाने पड़ गए थे धान में और कटाई का समय भी एकदम करीब ही आ रहा था, फसल सूखने वाली थी, लेकिन अचानक ये जो भगवान ने बारिश कर दी इस वजह से उनकी फसल फिर से बैठ गई है ना, बहुत तेज बारिश और बहुत तेज आंधी की वजह से फसल बिल्कुल बैठ गई है, साथ ही साथ गन्ने की फसल को भी नुकसान हुआ है, धान की फसल को नुकसान हुआ, बहुत सारी फसलों को नुकसान हुआ है, तो हमें तो सबका ख्याल करना चाहिए ना
0: जी दे दे।
1: इस समय किसान बहुत परेशान है
0: कि
1: आगे क्या होने वाला है। तो कुछ लोग तो खुश हैं इस बारिश से क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं है, बस घर पे इंजॉय करना है, लेकिन जो अन्नदाता है, जो अनाज उपजा रहा है, किसान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। तो अब कौन क्या सुनाने वाला है
2: दीदी? आप एक कहानी
0: सुना दीजिए दीदी,
2: बहुत दिन हो गए नहीं सुने हैं।
1: मैं कहानी सुना दूं
0: जी दीदी?
3: ये दीदी,
1: अरे भाई कुछ और भी सुनाओ सब लोग भाई, कहानी मैं सुनाऊं या आप लोग सुनाएं, बात तो एक ही है।
0: नहीं दीदी आप सुना दीजिए।
1: तो
0: ये दीदी,
1: अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो हम सानिध्या से पूछेंगे कि सानिध्या बारिश का आनंद कैसे लिया, बता मम्मा ने क्या क्या बनाया घर पे? हंस रही है। क्या क्या बनाया बताओ, बारिश में क्या क्या मजेदार चीजें बनी घर पे?
0: पराठा और
1: साथ में
0: भिंडी।
1: वाह, पराठा और भिंडी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सबके घर में तरह तरीके की डिशेज बनी हुई हैं।
0: पकौड़ी और कॉफी।
1: पकौड़ी कॉफी तो मेरे घर बनी है, आप बताइए आपके घर क्या बना है
0: दीदी? यही
3: मैं कनौरे चाय।
1: ये क्या बोल रही है?
2: मैक्रोनी
1: बनी है। अच्छा मैक्रोनी और कॉफी, तो भाई मज़ेदार चीज़ें बनी है सबके घर पे। वो मुझे तो बहुत मज़ा आया कि जिससे पूछो आपके घर क्या बन रहा है, तो कोई कहता है कचौड़ियाँ बन रही हैं आलू की, कोई कहता है कि मेरे घर जो है पराठे बन रहे हैं, कोई कहता है मेरे घर तो खैर कॉफ़ी और पकौड़ी बनी है। और आज का मुझे अभी पता नहीं, अभी तो मैं आप लोग के साथ बैठी हूँ, अब जाके पता चलेगा कि घर पे क्या बना है। और बड़ी मस्ती आ रही है, सबको बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। तो चलिए भाई, अब आपकी फरमाइश है कि कहानी सुना दें दीदी, तो चलिए दीदी आपको कहानी सुनाने जा रही है। बहुत पुराने समय की बात है बच्चों
2: जी दीदी।
1: कंधारी नाम का एक छोटा सा गाँव घने जंगल के पास बसा हुआ था, और उस गांव के लोग जानते हो कैसे थे? बहुत ही सीधे, सच्चे, सरल, मेहनती और प्रकृति से प्रेम करने वाले थे, है ना? तो इस तरीके से उनके लिए जंगल केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं था, बल्कि देवता के समान पूजनीय था, है ना? हम लोग भी तो पूजा करते हैं, कभी पीपल में पानी चढ़ाते हैं, कभी तुलसी में पानी चढ़ाते हैं, इस तरीके से हम लोग भी पूजा तो करते हैं, लेकिन वो लोग हमसे ज़्यादा पूजा किया करते थे। वे जंगल से लकड़ी, फल और बहुत सारी जो ज़रूरी चीज़ें लेते थे, लेकिन उनकी रक्षा भी करना उनका अपना कर्तव्य था। तो एक दिन क्या होता है कि अचानक गांव के पास स्थित वन में आग लग जाती है
2: जी।
1: और देखते ही देखते आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, पूरा जंगल धू धू करके जलने लगा, चारों ओर धुआं फैल गया और पेड़ पौधे भी जलने लगे
2: जी।
1: किसी व्यक्ति ने राजा के दरबार में जाकर सूचना दी कि कंधारी गांव के पास के जंगल में बहुत ज्यादा आग लग गई है। अब क्या हुआ, समाचार सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ
2: जी दीदी।
1: उसने तुरंत आदेश दिया कि गांव की औरतें और बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को दरबार में हाजिर किया जाए
2: जी।
1: राजा के सैनिक गांव पहुंचे और सभी पुरुषों को अपने साथ लेकर महल की ओर चल पड़े। गांव में केवल एक ही बूढ़ा व्यक्ति था। जब उसने ये बात सुनी तो उसने सभी पुरुषों को रोककर समझाया, वन हमारे देवता हैं, उन्हें जलाना या किसी प्रकार की हानि पहुंचाना बहुत बड़ा अपराध होता है, भविष्य में ऐसी गलती कभी करना मत। आज राजा के सामने जो भी हो, सब एक बात पर अडिग रहना, तुम में से किसी को नहीं मालूम कि आग किसने लगाई
2: जी।
1: बताना मत राजा को। सभी पुरुषों ने वृद्ध की बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया और उसके अनुभव पर भरोसा करते हुए राजा के दरबार की ओर चल पड़ते हैं
2: जी।
1: अब जब दरबार में पहुंचते ही राजा ने गरज करके पूछा, बताओ वन में आग किसने लगाई, जल्दी बताओ। सभी ने एक साथ उत्तर दिया, महाराज हमें नहीं पता किसने लगाई। राजा ने फिर कठोर स्वर में कहा, यदि सच नहीं बताओगे तो सबको जेल में डाल दूंगा
2: जी।
1: अब गांव वालों ने डरते हुए फिर से कहा, अरे महाराज हमें सचमुच पता नहीं है, हम कैसे बता दे कि किसने आग लगाई है। अब राजा ने क्रोधित होकर एक आदेश पारित कर दिया, अच्छा ऐसा है तो सबको जेल में डाल दो। सभी पुरुषों को जेल में डाल दिया गया। राजा के आदेश से उनके लिए एक चारपाई, खाने का राशन, कुछ लकड़ियां और एक जलती हुई लालटेन रखवा दी गई। राजा ने कहा कि जो व्यक्ति चारपाई पे सोएगा वही इनका नेता माना जाएगा और वही अंत में सच को भी बताएगा। वृद्ध ने यह बात सुनकर सभी को समझाया कि चारपाई पर कोई पूरा नहीं सोएगा, कोई खाना नहीं पकाएगा और ना ही खाएगा, सभी लोग चारपाई की एक एक टांग पर अपना एक एक पैर रख लेना। राजा हमें डराना चाहता है, लेकिन हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना है। सभी ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान ली। अगली सुबह राजा ने अपने वजीर को कैदियों का हाल जानने के लिए वहां भेजा जेल के अंदर
2: जी।
1: अब जेल में पहुंचकर वजीर यह देखकर हैरान रह गया कि कोई भी चारपाई पे सोया नहीं था
2: जी।
1: सभी पुरुष चारपाई की अलग अलग टांगों पर एक एक पैर रखे खड़े हुए थे
2: जी।
1: वजीर ने पूछा, तुम लोगों ने चारपाई पे कोई तुम लोगों में से कोई चारपाई पे क्यों नहीं सोया? इसीलिए उनके आदर में हमने चारपाई की एक एक टांग पर अपना पैर रख दिया।
2: जी दीदी।
1: वजीर ने फिर पूछा, लकड़ी और राशन दिया था, फिर खाना क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? सबने उत्तर दिया, देवता जी आग ही नहीं थी, कैसे खाना पकाते। अब वजीर ने लालटेन की ओर इशारा करके कहा, ये लालटेन तो जल रही थी ना? गांव वालों ने भोलेपन से कहा, हुजूर इस लुपलुपी से आग कैसे जलती है, हमें पता ही नहीं था। वजीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराता हुआ राजा के पास पहुंचा और उसने सारी घटना सुनाई। राजा भी उनकी भोली बुद्धिमानी समझ गया। उसने कहा, ये तो भोले कंधारी हैं, छोड़ दो इन्हें, जाने दो इन्हें। राजा का आदेश मिलते ही सभी पुरुषों को जेल से छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। गांव लौटते समय सभी ने वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें समझ में आ गया था कि बुजुर्गों का अनुभव जीवन की अनमोल पूंजी होती है। उम्र के साथ मिला अनुभव मालूम है कई कठिन परिस्थितियों का रास्ता दिखा सकता है। तो क्या सीख मिली इससे? कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान
3: करना चाहिए
1: और उनके अनुभवों से हमको सीखना भी चाहिए।
2: जी जी दीदी।
1: चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और एकता में बल होता है संघे शक्ति, तो एक होकर रहना चाहिए और यही एकता जो है बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। इस एकता और बुद्धिमानी से ही काम लेना चाहिए तो कोई भी परिस्थितियां हो उसमें हम जीत सकते हैं। तो देखो भाई बच्चों, आज हम बात करने वाले थे थोड़ा सा पर्यावरण के ऊपर, है ना
2: जी।
1: तो अब इसीलिए मैंने ये कहानी तुम लोग को सुनाई कि सदैव जो है पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, है ना
0: जी दीदी।
1: तो कैसी लगी कहानी तो पहले ये बताओ।
0: बहुत अच्छी दीदी।
1: तो ताली क्यों नहीं बजाई यहाँ? ये थी कहानी, है ना
0: दीदी।
1: तो चलो ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर ढेर सारी बातें करते हैं, है ना
0: जी दीदी।
2: दीदी मैं इतना

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
3: तो भाई, ब्रेक के बाद हम फिर से एक बार हाजिर हैं। हमारे नन्हे मुन्ने सब हमारे साथ हैं और एक छोटा सा बच्चा अब हमारे साथ है, जिसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: फर्स्ट
3: में। अच्छा, तो क्या सुनाओगे सिद्धार्थ आज हमें?
4: चंदा सूरज
3: पोयम है। अच्छा, तो सुना दो जल्दी से।
4: चंदा सूरज वाला, जिसने यह आकाश बनाया है, जिसने रची हमारी धरती, तारों को चमकाया है, जिसने प्यारे फूल बनाए, तरह तरह के प्यारे फल, आग बनाई, हवा बनाई, नदी और सागर में जल, ऐसे बर्ड का ध्यान करे, सौ बार प्रणाम करे, रहे सुंदर धरती हम समय से काम करे।
3: अरे वाह भाई, सही बात है। और चंदा और सूरज अगर ना हो तो हमारा क्या हाल होगा? तो चंदा को तो और सूरज को 100-100 प्रणाम करने ही चाहिए, है ना सिद्धार्थ?
5: जी दीदी।
3: है ना जी। तो चलो चलते हैं आगे हम। और अब सानिध्या का तो मन कर रहा है कि जल्दी से दीदी कहें कि सानिध्या ये सुना। तो सानिध्या क्या सुनाने वाली है अब
6: दीदी? कविता।
3: कविता, कौन सी कविता है?
6: मोर वाली।
3: हाँ तो भाई, मोर की तो बात होनी चाहिए, क्योंकि इतनी प्यारी बारिश हो रही है, उसमें मोर तो
6: मोर लेकिन आया नहीं।
3: हाँ मोर आपके घर नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं तो मोर नाच रहा होगा ना, इतनी प्यारी प्यारे से मौसम को देख के, वो वर्षा को देख करके, वो अपने पंख फैला के कहीं ना कहीं नृत्य कर जरूर रहा होगा, मेरा ऐसा ख्याल है। तो चलो जल्दी से सुना दो, सारे बच्चे आपकी पोयम सुनने के लिए बेताब बैठे हैं।
6: नीले पंखों वाला मोर, लगता सब तो सुंदर मोर, भारत का है यह अभिमान, बढ़ाता अपनी देश की शान, बादल छाए नाचे झूम, खुशियों से भर जाए धूम, रंग बिरंगे पंख फैला, सबका मन हर्षा जाता, गर्व से सिर यह ऊंचा रखता, सुंदरता का संदेश कहता, वन उपवन और हरियाली, मोर तरे इनकी रथ वाली, पचती थी यह शान अनूठी, सब तो लगती प्यारी, इसकी बोली आओ इसका मान बढ़ाए, इसका जीवन सुरक्षित बनाए, हम सब मिलकर ये खाने, मोर हम हमारा हम इसे पहचाने, प्रसिद्धि तहार उपहार बचाएं, भारत किसान सदा बढ़ाएं।
3: तो भारत का भाई ये राष्ट्रीय पक्षी है मोर, है ना
2: जी दीदी।
3: और सब सारे पक्षियों में मोर सबसे प्यारा पक्षी है
2: जी।
3: कितना सुंदर लगता है कि जब वो बरसात की ऋतु में पैर और पंख फैला करके एकदम नृत्य करता है
2: जी।
3: तो किसको अच्छा नहीं लगेगा भाई, सभी को बहुत अच्छा लगता है। हमारे बचपन की बात बताती हूँ मैं तुम्हें। मेरी जो बुक्स होती थी बचपन की, क्या अभी कहीं मेरा बचपन चला थोड़ी ना गया है
2: जी, जी,
3: जी। अभी भी जो है मेरी कोई बहुत ही फेवरेट कविता होती है या कोई लेख होता है तो मैं वहाँ पे मोर की पंख लगा देती हूँ, तो वो बुकमार्क का काम करता है
2: जी।
3: तो आप लोग रखते थे कि नहीं मोर पंखी? कहते थे इससे विद्या बहुत आती है
2: जी, जी, जी।
3: है ना
2: जी।
3: तो रखते हो आप लोग अपने किताब में मोर पंखी?
6: जी दीदी।
3: हाँ तो रखना भी चाहिए, बहुत सुंदर उसका पंख होता है। और कहते हैं कि इसको अगर कहीं दीवार पे लगा दिया जाए तो उसे छिपकली नहीं आती है, ऐसा होता है क्या?
2: जी दीदी ऐसा कहा तो
3: है। हाँ तो मुझे तो मेरे दीवार पर एक पंख मैंने लगा भी दिया है और लगाया है, अच्छा लगता है ना देखने में। हाँ बहुत प्यारा होता है मोर का पंख। तो वही है कि ये हमारी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है और यह हमारे भारत की शान को हमेशा बढ़ाता रहेगा, है ना। तो इस पे हमको गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में इतना सुंदर पक्षी भी है। तो चलते हैं हम हमारे प्यारे से अतुल की ओर। और अतुल आज क्या सुनाने वाले?
6: मैं तो कविता सुना दूं।
3: हाँ अभी सुनते हैं प्लीज सानिध्य, थोड़ा अच्छा इंतजार कर लो ना, अब तुम्हारा भैया सुनाने वाला है ना। तो आज अतुल क्या सुनाने वाले?
2: कहानी किसान और पत्थर।
3: किसान और पत्थर
2: जी दीदी।
3: तो देखते हैं सुनते हैं ना कहानी सुनी जाए, अतुल भैया कहानी सुनाने वाला है।
2: एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर था। सालों से वो पुराना पत्थर उसकी खेती में रुकावट बन रहा था।
3: अच्छा।
2: हल उससे टकरा जाता, बैल थक जाते। किसान के बेटे कहते, बाबा इस पत्थर को हटवा दो, जेसीबी बुला लेते हैं। बूढ़ा किसान हर बार कहता, बहुत बड़ा है, बहुत पैसा लगेगा, रहने दो। एक दिन किसान का पोता जो 10 साल का था स्कूल से आया और बोला, दादाजी मैं कोशिश करूँ। सब हंसने लगे, अरे तू क्या हटाएगा,
3: छोटा था वो।
2: जी दीदी हमसे भी नहीं हटा। पोते ने छोटी सी कुदाल ली और पत्थर के चारों तरफ खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर में सब हैरान रह गए। पत्थर जमीन में सिर्फ 1 फीट ही धंसा था। ऊपर से बहुत बड़ा दिखाई था पर अंदर से छोटा था।
3: और सबको लगता था कि जमीन के अंदर बहुत ज्यादा घुसा हुआ है ये।
2: जी दीदी उसने सबको बुलाया और सबने मिलकर धक्का दिया और पत्थर निकल गया।
3: वाओ।
2: बूढ़ा किसान रो पड़ा और बोला, मैं 20 साल से इस पत्थर से डरता था, कभी कोशिश ही नहीं की। तो दीदी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, समस्या जितनी बड़ी दिखाई देती है
3: उतनी वास्तव में होती नहीं है।
2: हमारा
3: प्रयास करते, हाँ डर और प्रयास करो तो वही समस्या
2: जी
3: समाप्त भी हो जाती है। अब देखो उस बच्चे ने कैसे दिमाग लगाया, कोशिश तो करी
2: जी।
3: तो कोशिश करने वालों की
2: कभी हार नहीं होती। दीदी ऐसे पत्थर हमारे जिंदगी में भी आ जाते
3: बहुत हैं। हाँ रुकावटें तो आती रहती हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रुकावटों से डर करके बैठ जाए, उन्हें अपना डर बना ले। नहीं
2: जी।
3: कोशिश करेंगे तो वो रुकावटें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तो भाई अभी सानिध्या ने फिर एक कहा कि मैं कुछ सुनाने वाली हूँ दीदी, तो चलो सुन लेते हैं हमारी सानिध्या से। क्या सुना रही हो सानिध्या?
6: दीदी भजन।
3: भजन तो फिर से एक बार भजन सुना रही है सानिध्या।
6: आशुतोष शशान।

0: शंभराम नाथ नार शर हरो हर पापिशा प्रभिशाप तम महादेव महान भोले हे सदा शिव शिव संतरा जडटपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे सन चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा।
1: भाई वाह।

0: जपता रहे पंचाक्षरा।
1: ओम नमः शिवाय,
2: ओम नमः शिवाय।
1: तो देखिए ये शिव स्तुति थी, कितनी प्यारी और अपनी तोतली भाषा में कितना सुंदर हमारी सानिध्या इसको गाती है। और मैं तो कहूँगी ऐसे ही हमारी सानिध्या गाती रहे, इतने प्यारे प्यारे भजन और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर के आती है। तो चलते हैं अब अतुल की ओर। और अतुल तो सुना ही चुके हैं, मैं तो अतुल अतुल ही रट रही हूँ। मैं चलती हूँ अब सत्यम की ओर। सत्यम आज क्या सुनाने वाले हो हमें?
2: दीदी आज मैं भी कहानी सुनाने वाला हूँ।
1: ओह
3: दीदी आज बारिश का मौसम है तो सब लोग कहानी सुनाएंगे।
1: और मैं तो घर पे भी कहानी सुन रही थी, सारे लोग इकट्ठे थे ना
2: जी।
1: तो बहुत सारी कहानियाँ कल होती रही और मैं सुनती रही, उसमें से
3: सुनने में मजा भी आता।
1: हाँ उसमें से एक कहानी अभी मैंने आपको सुनाई ही, कल ये वाली कहानी चल रही थी।
2: दीदी कल हमारे घर पर अंधेरा था और मोमबत्ती केवल जल रही थी तो सब लोग लूडो खेल रहे थे।
1: अरे वाह
2: पूरा मतलब
1: तो सारा एंजॉयमेंट कल घर पे हो रहा था
2: जी। दीदी मॉम आलू भरे पराठे बना रही थी और हम सब लोग मिलकर लूडो खेल रहे थे।
1: तो चलिए शुरू करिए, आप क्या सुना रहे कहानी
2: जी?
1: तो चलो बच्चों सुनते हैं हम तुम्हारे सत्यम भैया से भी एक प्यारी सी कहानी।
2: तो कहानी का नाम है आखिरी चिट्ठी। गांव के उस छोटे से घर में आज बहुत सन्नाटा था। आंगन में वही पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर बैठकर माँ

0: माँ मुस्कुराई, चिट्ठी को सीने से लगाया और बोली, मेरे बेटा बहुत काम करता है, थक जाता होगा। पास बैठी पड़ोस की छोटी सी बच्ची ने पूछा, अम्मा आपका बेटा आपको लेने क्यों नहीं आता? माँ ने मुस्कुराकर कहा, आएगा बिटिया आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। दिन महीने में बदलते गए, माँ की आंखों की रोशनी कम होती लगी, घुटने ने साथ देना छोड़ दिया, लेकिन दरवाजे की तरफ उसने देखना अभी नहीं छोड़ा था। हर शाम वह चारपाई पर बैठ करती, आज आएगा मेरा बेटा। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, पड़ोसी डॉक्टर को बुलाने गए। माँ ने धीरे से कहा, डॉक्टर को मत बुलाओ, पहले मेरे बेटे को फ़ोन लगा दो। फ़ोन लगाया गया, बेटे ने जल्दी से कहा, माँ अभी मीटिंग में हूँ, दो दिन बाद बात करूँगा। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है बेटा, काम पहले है, और फ़ोन रख दिया। उस रात माँ ने अपनी पुरानी संदूक खोली, उसमें बेटे की बचपन की तस्वीर, स्कूल की पहली ड्रेस, टूटी हुई खिलौने की कार और उसकी लिखी हुई पहली चिट्ठी। माँ ने उस सबको एक एक करके देखा, फिर कागज़ निकाला और उसमें कुछ लिखने लगी। अगली सुबह जब पड़ोसी उसके घर पहुँचे तो माँ हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। उसके हाथ में वही कागज़ था। बेटा जब कई दिनों बाद गांव पहुँचा तो घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर उसके कदम रुक गए। वह अंदर गया, चारपाई खाली थी, दीवार पर माँ की तस्वीर रखी थी। बेटा फूट फूट कर रोने लगा, तभी पड़ोसी ने उसे माँ की आखिरी चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, बेटा मुझे पता है तू बहुत व्यस्त है, इसलिए मैंने तुझे आखिरी बार भी नहीं बुलाया, बस एक बात कहना है, जब तू छोटा था ना तब तू रात में डरकर मेरे पास आ जाता था, मैं अपनी नींद छोड़कर तुझे सीने से लगा लेती थी, आज मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, अब मुझे नींद आ रही है, इस बार तू मत आना, मैं खुद तेरे सपनों में आ जाऊँगी, बस अपना ख्याल रखना, और हाँ जब भी घर आना दरवाज़ा धीरे से खोलना, कहीं ऐसा ना लगे कि तू आया है।
1: भाई बहुत ही मार्मिक कहानी थी, दिल भर आया है
0: जी।
1: माँ की ममता का कोई अंत नहीं होता है
0: जी।
1: लेकिन हाँ बेटा,
0: और मैं फिर से उठकर दरवाजे तक ना आ जाऊँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बेटे के हाथ कांपने लगे, उसने माँ की तस्वीर को सीने से लगाया और बस इतना कहा, माँ इस बार छुट्टी मिल गई थी, लेकिन अब माँ इंतज़ार करने के लिए नहीं थी। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, कुछ रिश्तों को वक्त नहीं दिया जाता, और फिर एक दिन वक्त होता है लेकिन वे रिश्ते नहीं होते।
1: बहुत भाई, ताली तो बजा दो एक बार, इतनी प्यारी कहानी, और जो भी हमारे दर्शक सुन रहे होंगे उनको ये कहानी बहुत बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और कहानियाँ ऐसी ही होनी चाहिए कि जिनसे हमको मोटिवेशन मिल सके। हम कभी भी जो है अपनी माँ के साथ इस तरीके का बिहेव ना करें, माँ तो आखिर माँ ही होती है, है ना, उसकी ममता का कोई और छोर नहीं होता, तो कभी भी माँ को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। बेटे को भी क्या कहा जाए कि उसकी कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी
0: जी,
1: इस वजह से वो अपनी माँ तक समय रहते नहीं पहुंच पाया। तो कहानी बेहद ही भावुक थी, तो मुझे मेरा तो दिल भर आया है
0: जी दीदी।
1: इस तुमने इतनी प्यारी कहानी सुनाई है कि मैं तो सोचने पर विवश हो गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पिक्चर मेरी आंख के सामने घूम रही हो। और क्या भाई, बहुत अच्छी कहानी थी। तो चलिए भाई, कहानी तो ख़त्म हो गई है, और ढेर सारी भी हमें बातें करनी थी। हमने कहा था ना कि ये बारिश, ये हाँ फिर से लौट आते हैं अपने उस पे और अपने पर्यावरण पे। आज एक कहानी जो सुनाई तो मैंने उसमें पर्यावरण की बात थी
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो देखिए ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, अभी नेपाल की तबाही आपने देखी
0: जी।
1: बहुत बार क्या होता है कि हम जो हमको ईश्वर की तरफ से चीज़ें मिली हैं, नहीं कुछ चीज़ें ईश्वर ने हमको निशुल्क दी हुई हैं, उसका कोई शुल्क नहीं होता है। जैसे जल है
0: जी,
1: जैसे हवा है, जैसे ये नेचर है हमारे आसपास की, हमको निशुल्क मिला हुआ है
0: जी,
1: लेकिन हम क्या करते हैं कि इसका दुरुपयोग करने लगते हैं
0: जी।
1: और दुरुपयोग करते करते इतना ज़्यादा हम मतलब अपने लाभ

0: के बारे में सोचते हैं और हम प्रकृति के बारे में सोचना छोड़ देते हैं।
1: जी।
0: वहीं पर प्रकृति है, कभी ना कभी क्या करती है कि वो अपना बदला लेती है। ठीक है, इतनी छेड़छाड़ देखिए, वनों की कटान अंधाधुंध हो रही है, वर्षा क्या होती है अनियंत्रित हो जाती है। ठीक, कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा हुई तो किसी क्षेत्र में सूखा भी पड़ गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हम वनों अपने स्वार्थ के लिए लकड़ियाँ चाहिए हमको और जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, इसके लिए वनों का विनाश करते चले जाते हैं। हमारी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बन रही हुई, उसमें कितनी लकड़ी लग जाती है।
1: जी दीदी।
0: और हम एक पेड़ लगाना मुनासिब नहीं समझते हैं, बस काटना है काटना है, लकड़ियाँ जंगलों से मिल जाएंगी, वनों से मिल जाएंगी, इसी धुन में और हमारा लाभ अधिकतम होता चला जाएगा। इसी धुन में हम लगे रहते हैं, भूल जाते हैं कि ये जो हमको चीज़ें ईश्वर की तरफ से निःशुल्क मिली हुई हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए
1: जी,
0: इनको बचाना चाहिए, तभी तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।
1: दीदी, लकड़ियाँ भी मतलब लकड़ियाँ काटते हैं ठीक है, लेकिन उसे जलाते हैं जिससे वायु प्रदूषण भी बहुत होता है
0: भाई। चलिए ठीक है कि लकड़ियाँ जलाते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ पे सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ तो चलिए ठीक है कि लकड़ियाँ छोटी मोटी पड़ी होती जिनका कुछ यूज़ नहीं होता, उनको हम हाँ जला सकते हैं, काम में ला सकते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े तने काटे जाते हैं, बड़े बड़े वन काटे जाते हैं, तो उनसे क्या होता, हमारा पर्यावरण एकदम बेकार होने लगता है, प्रदूषित होना।
1: मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि हर एक मिनट में अमेज़न का इतना हिस्सा काट लिया जाता है जो एक बड़े फुटबॉल मैदान के बराबर
0: होता है। एक दिन बातें हुई थी हमारी इस पे, तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, है ना। आज हर आदमी क्यों परेशान है, केवल किसी को कई तरीके की बीमारियां लग जाती हैं, पूरा प्रदूषण हमारा जो है खराब है, वातावरण खराब है
1: जी।
0: अब देखिए थोड़े से लाभ के लिए हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, एक तो शारीरिक नुकसान हो रहा है, डॉक्टर दवाइयों में कितना पैसा हमारा व्यर्थ जा रहा है, जितना हमको प्रॉफिट नहीं होता उससे ज़्यादा कहीं हम लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है, कोई आदमी हमारा अपना हमसे बिछड़ जाए तो दोबारा तो हमको मिलने वाला नहीं है।
1: जी दीदी।
0: धन तो फिर हम कमा लेंगे, लेकिन जब अपना कोई बिछड़ जाता है छूट जाता है तो कितना दुख होता है।
1: जी।
0: तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके जगह पे कम से कम अपने परिवार के सदस्यों के नाम से तो पेड़ लगाएं, भले दो चार पेड़ हर व्यक्ति को लगाना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन हम भूल जाते हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि पेड़ लगाना कितना हमारे लिए लाभदायक है
1: जी।
0: उसका नुकसान देखिए अभी जो चल रहा है आपकी आंखों के सामने
1: जी,
0: तो कितना भयावह है।
1: ये तो खैर अभी चेतावनी है,
0: ये चेतावनी है, इससे भी बड़ी बड़ी जो है परिस्थितियाँ आ सकती हैं, हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं
1: जी।
0: तो थोड़ा सा हमें भी ध्यान देना चाहिए, हमें भी पूरी तैयारी से, अब देखिए प्रशासन है हमारा, कोई तैयारी नहीं थी और इतनी बड़ी आपदा आ गई, तो चलिए इससे बातों बातों में हमारा समय बीत गया है, और अगली बार फिर हम लोग जो है इसी, अभी और सुनाओगी सानिध्या? अच्छा भूल जाती हूँ मैं, मैंने तो सानिध्या की ओर देखा ही नहीं। चलो चलिए जल्दी से सानिध्या से सुन लेते हैं चलते चलते एक प्यारा सा गीत।
2: नहीं दीदी।
0: हाँ
2: दीदी, वर्ल्ड रेबीज डे पे।
0: ओ हो, वर्ल्ड रेबीज डे, आज कल वर्ल्ड रेबीज डे है और भूल गई थी मैं, चलिए जल्दी से बता दीजिए।
2: दोस्तों क्या आप जानते हैं 28 सितंबर तो हर साल विश्व रेबीज डे यानी वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोटो तो रेबीज बीमारी के बारे में जागरूक करना और इससे बचाव के उपायों की जानकारी देना है। रेबीज एक गंभीर बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने या उसकी लार के संपर्क से फैल सकती है। यह बीमारी कुत्तों, बिल्ली और कुछ दूसरे स्तनधारी जानवरों में हो सकती है। दोस्तों अगर किसी जानवर अंडे ताने या थरोचने से त्वचा पर चोट लगती है तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले घाव तो बहते पानी से
0: साफ करना चाहिए,
2: धोना चाहिए और तुरंत डॉक्टर या स्वस्थ स्वास्थ्य केंद्र की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर जरूरत के अनुसार रेबीज का टीका और अन्य उपचार बताते हैं। समय पर उपचार शुरू करना बहुत जरूरी है। रेबीज से बचाव का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि पालतू कुत्तों या बिल्ली तो समय पर रेबीज का टीका लगवाया जाए।
0: ये सबसे जरूरी पॉइंट है।
2: इस साल विश्व रेबीज डे पर हम सभी यही संदेश फैलाएं। रेबीज से डरना नहीं, रेबीज से बचाव करना है। जानवरों की सुरक्षा भी करनी है और इंसानों की जान भी बचानी है।
0: बिल्कुल। देखो बच्चों, कितनी अच्छी जानकारी दी है हमारी सानिध्या ने। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।
1: जी दीदी,
0: हमने भी बहुत सारे मतलब हम तो पेट्स लवर हैं ही, तो जैसे कुत्ते हैं हमारे आसपास।
1: हाँ, दीदी के घर पर भी है, मैंने उस दिन कहा था।
0: तो मुझे तो अच्छे लगते हैं, उनको बिस्किट खिलाती हूँ। जो सड़क के कुत्ते होते हैं, रोडीज कुत्ते होते हैं, उनको मैं
1: स्ट्रीट डॉग,
0: हाँ स्ट्रीट डॉग, उनको मैं जो है बिस्किट खिलाती हूँ, तो इतना क्लोज हो गए हैं। कभी कभी वो मेरे ऊपर तक खड़े हो जाते हैं, मुझे डिमांड करते कि मुझे दो बिस्किट। और उसी में कहीं ना कहीं जैसे हाँ बिल्कुल, वो इतना मतलब वो बहुत समझदार होते, वो मांगते हैं पर हम समझ नहीं पाते। कभी कभी पता चलता है हम डर जाते हैं और वो
2: इधर भागने लगे तो वो और
0: दौड़ाते हैं, उन्हें लगता कि ये कोई खेल चल रहा है। तो कभी कभी ऐसे ही अनदेखी में उनके नाखून हमको लग जाते हैं, हमने सोचा ऐसे ही लग गया है ना। तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि वो कहीं अगर नाखून लग गया है तो उस समय नहीं लेकिन बाद में भी वो दिक्कत कर सकता है। तो बेहतर होगा कि हमको जो है अगर कोई काट लेता है या चाट भी लेता है, कभी कभी होता है जैसे हमारे कोई कट लगा हुआ है, कुत्ता अगर चाट लेता है तो उसको भी अनदेखा नहीं करना चाहिए।
1: जी दीदी,
0: तो इसलिए जो है कि थोड़ा सावधानी हमको दिखानी चाहिए, है ना। ये घटनाएं घटित होती हैं और वो उसका जो रिजल्ट है आगे जा करके पता चलता है कितनी हमें परेशानी हो जाती है। तो कभी भी देखिए आप कोई कुत्ता है और उसकी लार अगर बह रही है तो उससे थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी लार में ही वो रेबीज होता है। और उनका प्यार से भी कहते हैं कि काटे चाटे स्वान के दो भात विपरीत। कुत्ता अगर प्यार से चाट ले या काट ले दोनों तरफ नुकसान ही है उसका।
1: जी, जी, जी।
0: क्योंकि उनके अंदर रेबीज होता है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, सभी जानवर में ज्यादातर रेबीज होता है,
1: जैसे तो कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़,
0: सभी में हाँ रेबीज होता है। तो सावधानी की जरूरत है। आजकल तो हमारे जो जिला चिकित्सालय है वहाँ पे इसकी बहुत व्यवस्था की गई है कि अगर आपको काट लेता है तो अब तो 14 वाला इंजेक्शन वाला शेड्यूल खत्म हो गया है। अब शायद 3-4 लगते हैं। और तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैक्टर थे उन पे बात हमने करी और समय हो गया है आपसे विदा लेने का। और हम फिर से आपसे एक बार वादा लेते हैं कि अगले संडे इसी दिन इसी समय आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक सुनते रहिए
1: रेडियो गान स्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: जी हाँ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं और रेडियो का नस्ल 89.6 FM, ये गोंडा ही नहीं अब बन चुका है हम सभी के दिलों की धड़कन। और बहुत ही तेज़ बारिश, आंधी और तूफान के थम जाने के पश्चात शुरू होता है ओपन माइक, अपना टैलेंट, अपना FM। जी हाँ, मैं हूँ आप सभी का दोस्त आरजे मनु, आप सभी के साथ। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी के फेवरेट वाले आरजे, यानी आरजे
1: अदनान। जी हाँ, सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं संडे स्पेशल शो ओपन माइक, अपना टैलेंट, अपना FM में। फिलहाल टैलेंट दिखाया है कुदरत ने 3 दिन जबरदस्त आंधी और पानी के साथ में, और उस टैलेंट को जो अभी हम हर रोड पे देख रहे हैं, गलियों में देख रहे हैं, और इस टैलेंट की मार हम सभी को मिली। मतलब कुदरत ने कहा कि भाई तुम लोग बहुत करते हो, अब जरा हमारा भी देखो।
0: कई सारे दरख्त उखड़ गए।
1: लेकिन दरअसल अफसोस तो होता है कि बारिश आई, आंधी आई, पेड़ गिर गया, लेकिन हम लोग उस पेड़ों का नहीं सोचते हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं, उनको काट के फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन किया जाता है। हज़ारों हज़ार पेड़ काटते हुए रोड के लिए हो, फ्लाईओवर्स के लिए हो, या घरों के लिए हो, या तालाब को पार्ट करके पूरी पूरी कॉलोनी बनाना हो, इस तरह कुदरत का कहराना तो लाजिम है।
0: और जापान में बताऊँ सर कि अगर आप सड़क बना रहे हैं और अगर पेड़ बीच में थोड़ा सा दिखाई पड़ गया बड़ा, तो वहाँ की सरकार कहती है यहाँ से आप फ्लाईओवर निकाल दीजिए, लेकिन पेड़
1: नहीं कटना चाहिए। अब ज़रा सोचिए कितनी बड़ी बात है।
0: तो मतलब कुछ चीज़ें हैं भाई जिनकी सुरक्षा हमको करनी नहीं पड़ेगी, नहीं तो ये दैवीय आपदाएँ जो डिजास्टर हैं, जो क्या कहते हैं नेचुरल फेनोमेना है, वो प्रभावित करता रहेगा।
1: बिल्कुल सही बात है। तो चलिए खैर, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज भीगी सी शुरुआत हो गई है। फिलहाल आज मौसम ने करवट बदली है और काफ़ी राहत है, बारिश उस तरह नहीं हुई है और मौसम भी वैसा नहीं है। ऐसा लगा जैसे आंधियों का समय पूरा हो चुका, अब जा चुकी हैं दूर कहीं। तो चलिए ओपन माइक की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहले शुरुआत संगीतमय होनी चाहिए, सो शानवी मौजूद हैं। हाय शानवी, कैसी हैं आप?
2: हेलो सर, ठीक हूँ।
1: बढ़िया। सो इतनी आपदा के बाद आप इतना नहा धो के रेडी होकर कैसे आ सकती? मतलब हम लोग की तो हालत वैसे ही है।
0: मतलब पानी था
2: था नहीं, इतना लेना हम लोग क्या।
0: अच्छा,
2: नल चला के।
0: अच्छा, बहुत दिनों के बाद नल चलाया होगा आपने।
2: जी
0: ना, कैसा लगा? नहीं,
2: मतलब चलाते रहते हैं, बीच-बीच में मोटर चलाना होता ना।
1: हाँ, वो पानी सिर्फ ऊपर करने के लिए थोड़ा सा।
0: लेकिन जब आपने नल चला के आज नहाया, मतलब कितने वर्षों के बाद नल चलाया?
2: नल वर्ष तो ज्यादा हो गया, मतलब क्योंकि मैंने नल चलाया
1: 10-12 साल हो गए होंगे आराम से।
2: भर गया बाल्टी में, बस बाल्टी से।
0: सर कहते हैं 10-12 साल हो गया होगा आपको नल चलाए।
2: पता नहीं।
1: नहीं भाई, अभी तो छोटी सी खुद ही है, कहाँ 3-2 साल की एज से नल चला रही
0: है। सही बात है। मतलब लेकिन मज़ा आया, मतलब कुदरत ने बताया कि देखो अगर इलेक्ट्रिक, अच्छा सर मैं ये सोचता हूँ
1: जी
0: कि जब ये विद्युत नहीं रही होगी तब लोगों का जीवन, आज तो लगता है जैसे बिजली नहीं है तो जिंदगी आधी खत्म है।
2: हम लोगों ने कल ही देखा है, मेरे पापा ने हम लोग को क्या किया कि हम लोग पूजा वाले रूम में बैठे हुए थे और लाइट नहीं थी, तो पापा ने गेट वेट सब बंद कर दिया, और इन्वर्टर है लेकिन हम लोग उस समय में लाइट नहीं जलाए कि पता नहीं कितने देर तक खड़ी रहे। तो पूजा हो रही थी, तो पूजा होने के बाद दिया विया जलाया जाता है, तो पूरे कमरे में अंधेरा था, वो एक दिया पूरे रूम को रोशन कर रहा था, और मेरा रूम छोटा नहीं मतलब बड़ा है। तो फिर उसमें मजा आया, और पंखा का तो पंखा भी बहुत कम चल रहा था क्योंकि बाहर हवा, इतनी हवा चल रही थी, तो पंखा चलने की जरूरत नहीं पड़ी।
0: वो दिया हमको भी आप दे दीजिए जो एक दिया सारे घर को रोशन कर दे।
1: वो तो कल जल चुका।
0: मतलब मिलेगा नहीं।
1: सो अपने घर के अंधेरे को हटाने के लिए खुद का दिया जलाना हो,
0: खुद का चिराग जलाओ। और कल तो एक गीत भी बजा कि चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, हम गए घर पर कोशिश की लेकिन।
2: मैंने सुना।
0: हाँ सुना है ना,
2: कल सुना था मैंने।
0: हाँ तो भाई चिराग दिल का जलाओ, हम कोशिश करते रह गए लेकिन दिल वाला चिराग जला नहीं। कोई टेक्निक बताइए, आप तो इस मामले में एक्सपर्ट।
1: हम तो एक्सपर्ट है लेकिन आपने काफी बर्बाद कर दिया।
0: हाँ, तेल वगैरह काफी बर्बाद कर दिया, बस एक चिंगारी नहीं मिल रही थी, नहीं तो जल जाता
1: बेशक। सो फिलहाल चलिए शुरुआत करते हैं, और कल का जो ये आपदा रही है उसमें क्या अवसर रहा है, किस तरह हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फैमिली टाइम स्पेंड किया, किस तरह हमारा कैंडल नाइट डिनर हुआ,
2: ये हुआ है,
1: किस तरह हमने पानी भर भर के बर्तन धुले। ठीक है, तो ये सब कुछ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले शानवी से। हाँ मैंने कल ही किया है बर्तन, बाहर ही जाके धुलाया घर के बाहर। मतलब नल से ही धुला था, क्या करें मजबूरी थी। तो लोगों ने पूछे भी ये क्या हो रहा, मैंने कहा दिख नहीं रहा बर्तन धुल रहा है।
0: यही अनुभव मेरे भी साथ था।
1: बिल्कुल, तो चलिए फिलहाल शानवी की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस से इन बातों को हम रिज्यूम करने वाले हैं। सो शानवी, क्या सुनाने वाली हैं हमारे श्रोताओं को आप?
2: एक प्यार का नगमा है।
1: अरे वाह, क्या बात है, मौसम बड़ा ही खूबसूरत है और ये नगमा उसमें कहीं ना कहीं जान डालता हुआ नजर आ रहा है।

0: क्या बात है, क्या बात है भाई शानवी, ऐसे मौसम में जब हम कह रहे कि भाई मौसम का इतना बेहतरीन फायदा उठाया जाए, उसमें शानवी ने इतनी बेहतरीन शुरुआत की,
1: शुरुआत की वास्तव में,
0: एंड इतने हाई नोट पे जाना उसको गाना, ये बहुत बड़ी बात है,
1: बड़ी बहुत बड़ा कला है,
0: और भी इस सीजन में जब हम लोग के गले में देखिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती है।
1: सही बात है, तो प्रॉब्लम होती है, और एकदम से शानवी बेटा जल्दी से जल्दी अब थोड़ा सा हम वो पिपरमिंट लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस,
1: बहुत
0: उम्दा गीत आपने प्रस्तुत किया, थैंक यू सो मच शानवी। एंड हमारे साथ छुटकी सी भी बैठी है एक, और भाई अपना नाम बताइए आप।
2: निमिषा।
0: निमिषा बैठी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी। सो निमिषा कैसी हैं आप?
2: ठीक।
0: ठीक हैं। कल आंधी में डर तो नहीं था कि आप कहीं उड़ जाओगे?
1: घर से बाहर ही
2: नहीं, बार थोड़ा
0: एक बार आया था दिल में।
1: अच्छा आप कह रहे अदनान सर एक बार चारपाई उड़ गई थी, बड़ा वायरल हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल।
1: मतलब हम ये सोचे थे चारपाई में कोई सोया तो नहीं था।
0: अभी जल्दी जब आंधी आई थी तो ये कोई वेस्ट का अमरोहा या कहाँ के आसपास की घटना, हाँ, अलीगढ़ में शायद वो आदमी पूरा उड़ गया था
1: चार पाई से।
0: हाँ सो निमिषा डर लगा था थोड़ा सा आंधी में,
1: तब क्या किया जब
2: नहीं लगा था उस बात का था कि तो खाली पैर उठा था अभी
0: पूरे ना उड़ जाए।
1: चलो पैर उड़ गया था आपका।
0: अरे
1: वाह वाह वाह वाह, तब आपने क्या किया?
0: पैर को नीचे रखा और क्या?
1: नीचे।
0: वाओ, सो प्यारी सी निमिषा हमारे साथ में मौजूद है। निमिषा कल आपको कैसा लगा था जब पूरा गोंडा अंधेरे में डूबा था, आंधी भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, कैसा लग रहा था आपको?
2: मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मेरे सब था।
0: आपको कोई फर्क नहीं पड़ा?
2: मजा आ रहा था।
0: अच्छा मजा
1: आ रहा था।
2: दो दिन की स्कूल की छुट्टी हो गई ना।
0: ओ दैट्स व्हाई। मतलब फ्राइडे
2: संडे को भी मिला दीजिए तो 3 दिन मुझे।
0: तो मतलब 3 दिन आपका हो गया ऑफ, चलो अच्छी बात है। सो इन 3 दिनों में मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या कुछ ऐसा खास किया जो आपको बहुत मजेदार लगा हो, आपने खुद से किया अपने लिए, या कोई खेला है, या कोई शरारत की, कुछ तो किया होगा, या कुछ पुराना किया होगा, है ना?
2: मुझे मजा आज आ रहा है।
0: अच्छा।
2: क्योंकि आज डॉटर्स डे।
0: आज डॉटर्स डे है, ओ वाओ क्या बात है भाई, आज डॉटर्स डे हैं और अपने फादर की दो दो प्यारी प्यारी डॉटर्स यहाँ बैठी हुई हैं अगल बगल में, क्या बात है।
1: मतलब क्या बात है, कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिला आपको डॉटर्स डे वाला?
2: नहीं नहीं मिला, पर बाद में
3: शाम तक मिल जाए,
0: शाम तक उम्मीद हो सकता है मिल जाए, और स्पेशली अगर पापा सुन रहे होंगे तो।
1: चलो क्या बात है भाई, आज तो बहुत अच्छी होता है, आपने की पुत्री दिवस है।
0: हाँ
1: ये बहुत ही शानदार है। चलो कभी कभी पुत्र दिवस भी हो सकता है मनाया जाए हिंदुस्तान में, कि मैं हम लोग तो लगता है कि बाढ़ में बहकर आ गए।
0: नहीं नहीं, हफ्ते में एक दिन तो होता है संडे।
1: संडे
0: बस यू वाला होता है, हम लोग ओ वाले हैं।
1: संडे तो अब हम लोग इसको SON मान लेते हैं।
0: हाँ SON मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है,
1: क्योंकि डॉटर्स डे आ चुका है, जब तक आएगा नहीं पुत्र दिवस तब तक हम लोग हर संडे को संडे ही कहेंगे।
0: वाओ बिल्कुल,
1: आज पुत्री दिवस है और हम लोग पुत्र हैं तो पुत्र दिवस भी है।
0: सो निमिषा आपने वो उड़ते उड़ते बादल देखे थे जो परसों तक बहुत तेजी से उड़ते हुए हवा में जा रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था उससे कॉटन के बादल पूरा ऐसे निकलते हुए जा रहे हैं, मन कर रहा उसे बैठ जाए सवार होके हम भी कहीं निकल जाए, देखा था आपने?
2: जब
3: घर से बाहर निकलेगी तब तो देखेगी।
0: अच्छा घर से आप बाहर नहीं निकली थी, आपने देखा ही नहीं था? अच्छा देख,
3: इतनी ठंडी लग रही थी,
2: मैं
3: हालत खराब थी मेरी, वैसी
2: मैं खेलने के लिए गई तो वैसे ही पापा ने अंदर बुला लिया, तो उसके बाद।
0: अच्छा पापा ने अंदर बुला लिया था क्योंकि सीजन जो है वो सही नहीं था, अलर्ट लगातार आ रहा है और इवन पुलिस
3: रेड अलर्ट भी आ गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अलर्ट भी किया गया पुलिस के जरिए, भी अनाउंसमेंट्स हुए कई जगह की।
3: आपने वो बात बता दी आपको, वो अर्नब साइक्लोन वाली?
0: बड़ा ही खतरनाक हुआ है, उसी की वजह से उसी का असर था ये। जो अर्नब साइक्लोन था उसी का असर ये 3 दिन।
3: मेरे क्लास में एक लड़का है ना, उसको हम लोग चिढ़ा रहे थे।
0: ओके चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और अर्नब को चिढ़ा रहे थे आप लोग?
3: जी।
0: अच्छा अच्छा,
1: मतलब हमने जनपति की जो तबाही होती है उनका नाम पुरुषों के नाम पे क्यों रख दिया जाता है? जब बरसात होती है, अब ये पानी में नदी मीठी होती है तो होती है, उसके बाद समुद्र में खोता है, मतलब जितनी मीठी चीज़ें हैं वो समर्पित हैं इधर, और हम लोग लगता है कि मतलब कुछ खास बचा ही नहीं।
0: अब खुद को देख लीजिए, एग्जांपल सामने है,
1: सामने एग्जांपल है एकदम हमारे सामने ही एग्जांपल नहीं, सामने तुम्हारी निमिषा प्यारी बिटिया बैठी हुई
0: है। बिल्कुल, तो निमिषा की तरफ भी चलते हैं। और भाई कुछ लेके आई हैं निमिषा, क्या लेके आई हैं बच्चे आप?
2: मैं एक पोयम लाई हूं।
1: अच्छा, वाह क्या बात,
0: छोटी सी
1: मतलब खुद लिखी
3: है? बहुत बड़ी।
0: अरे वाह क्या बात है, छोटी सी निमिषा बड़ी सी पोयम, ये तो कॉम्बिनेशन बड़ा।
3: मुझे लग रहा है ये जो पोयम अभी गाने वाली है ना, वो उसके ऊपर डेडिकेटेड है। जब ये कल हवा में जब उड़ने वाली थी तो जिन्होंने अपने आप को जो कोशिश करी, अपने आप को जो किया है ना
0: अच्छा
3: कंट्रोल में अपने, उसी के ऊपर हो सकता।
1: तो कैसा नहीं कि आपने लिखा हो, इनसे कहा हो तुम गा देना? अच्छा अच्छा, तो आपने ही लिखी?
2: मैंने खुद ही कहा था, मैंने लिखी, मैं लिखती नहीं हूँ।
1: अच्छा, लिखती नहीं है आप?
0: लिखती नहीं, उसके पेंसिल खत्म हो चुकी है इस वक्त। तो वो
2: अरे लिखने में हाथ दर्द करने लगता है, जैसे मैंने कहा कि लिख दीजिए
1: तो पैर से लिखा करो, नहीं दर्द होगा तो बहुत अच्छा है। और क्या, अभी नहीं आता है पैर से लिखने?
2: जब मैं छोटी थी तब तो मुझे चलना भी नहीं आता था पैर से।
1: ओहो, और इतनी बड़ी हो गई तो पैर से लिखना नहीं आता?
0: मतलब वो कह रही कि आप इतने बड़े हो गए आपको ही नहीं पता है, तो छोटी सी उसको पता है।
1: नहीं नहीं, हम आपको भी पैर से लिख कर दिखाते हैं, बहुत बढ़िया लिख जाता है और थकान भी नहीं होगी।
3: लेकिन सरस्वती होगा पैर में लगाना अच्छी बात थोड़ी ना।
1: हाँ ये बात, ये भी बात सही, तो ऊपर पट्टी बांध लेंगे। अब
0: कुल मिला के इनको पाठ मिलेगा,
3: पट्टी भी तो उसी के उसमें आई।
1: हाँ मतलब उसको टच में ना रहे एकदम से पैर से। हाँ मतलब क्या, देखिए
3: आप सोचिए, मैं राइट हैंड से लिख पाती हूँ, लेफ्ट हैंड से मेरे से ढंग से पेंसिल पकड़ी भी नहीं जाती, वो एस क्या बन जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता।
1: वो रा जो होता होगा वो सा बन जाता
3: है। मेरी दीदी है एक, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से लिखती है और दोनों से उनकी सेम हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी।
0: प्रैक्टिस से होता है ना, स्टार्टिंग से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके,
3: अब वो अधिकतर लेफ्ट हैंड से ही लिखती है।
1: थ्री इडियट्स में जो वायरस था वो दोनों हाथ से लिख लेता था, याद है आपको? माइंड को
3: तो वही हम कहते हैं कि आपको तो दो दो होमवर्क अलग अलग टाइम में कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, एक ही मतलब देख लो, अच्छा ये होमवर्क है लिखते रहो दोनों हाथ से।
1: तो उनसे आप सीखिए। फिलहाल चलते हैं निमिषा जी की प्यारी सी कविता की तरफ। जी
2: मैं एक बोल आई हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: अच्छा
0: वाओ,
1: ठीक है बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: लहरों से डर कर नौका पर नहीं होती
1: पार नहीं होती, क्या बात है।
2: कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रुखू में सांस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: क्या बात है।
2: डुबकियां सिंधु में
3: गोताखोर
2: लगाती हैं, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाती हैं, जा जाकर खाली हाथ लौट आती हैं। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में,
3: बढ़ता दुगना
2: उससे इस हैरानी से।
3: मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती।
2: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: बिल्कुल क्या बात है, और ये वास्तव में बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग पोएम है, कविता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप अपने क्लास में कभी फर्स्ट आई?
3: आने वाली थी।
1: अच्छा,
3: लेकिन फिर हम लोग स्कूल छोड़ के आ गए।
1: मतलब आप यहाँ पढ़ती हैं, किस क्लास में हैं?
3: सेवेंथ।
1: अभी तो आपका दो एग्जाम बाकी होगा ना, हाफ ईयरली नारायणा में?
3: हो गया।
1: अच्छा चलिए, नारायणा तो मतलब इसका मतलब आप फर्स्ट आई होंगी
3: अभी।
1: हाँ रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट आएंगी आप।
3: अभी तो वो सबसे लास्ट में आता है ना।
1: तो पिछले साल फर्स्ट आई होंगी।
0: मुझे लगता है रैंक कोई ऐसी चीज नहीं होती है,
1: लेकिन कोशिश करने वाले, हम लोगों ने कोशिश ही नहीं की, हमने तो बेसिकली कोशिश नहीं, मैं अपने से जोड़ रहा था,
3: इस साल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी रैंक आए।
1: अच्छा कोशिश नहीं, मैं अपने से जोड़ रहा था,
3: इस साल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी रैंक आए।
1: अच्छा
3: और जहाँ तक मैं कर रही हूँ,
1: हम तो कोशिश नहीं की, हमने कहा क्या कोशिश करना, आना ही नहीं, फर्स्ट इतने काबिल काबिल लड़के बैठे हैं, लेकिन आपकी ये हिम्मत मुझे अच्छी लगी
0: बिल्कुल। और मुझे बस ये निमिषा से जानना है कि ये जो पोएम आपने अभी रिसाइट की है उसको लिखा किसने, आपको बताया?
2: नहीं बताया
3: मुझे। अच्छा।
0: चलिए शानवी से पूछते हैं, कौन है इसको लिखने वाले कवि?
3: हरिवंश राय बच्चन
1: जी।
0: और इनके फैमिली मेंबर में किसी और का नाम बताइए जिसको?
3: अमिताभ बच्चन।
0: एक और नाम बताइए।
3: जया बच्चन।
0: एक और नाम बताइए।
3: अभिषेक बच्चन।
0: एक और नाम बताइए।
3: ऐश्वर्या बच्चन।
0: तो देखा किस तरह इस बच्ची को पूरी फैमिली के मेंबर्स जो ऑफ कोर्स बॉलीवुड में है सबके नाम आपने बताए। तो एक जो थे वो हरिवंश राय बच्चन कवि, और उनके जो बेटे हैं वो अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक ऑफ कोर्स, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, देवी और सज्जनों सभी लोग जानते हैं।
1: सही है। और वास्तव में अमिताभ बच्चन जब छोटे थे तो उनका नाम दूसरा था, फिल्में उनकी फ्लॉप हुई तब, उनका नाम था इनकलाब श्रीवास्तव।
0: इनकलाब श्रीवास्तव
3: जी, ऐसा सकता है
1: जी, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सर्च कर लीजिएगा। अमिताभ बच्चन का पुराना नाम इनकलाब श्रीवास्तव था, तब उनके पिता के एक मित्र थे जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, तो उन्होंने उनका नाम चेंज किया था और इनकलाब से उनका नाम हुआ था अमिताभ बच्चन। और बच्चन भी सबसे पहले हरिवंश राय ने लगाया, क्योंकि हरिवंश राय के पिता का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव, और जब उनका बेटा हुआ हरिवंश राय, जब वो कवि की दुनिया में आए तो उन्होंने अपना तखल्लुस लगाया, श्रीवास्तव को हटाया और लिखा हरिवंश राय फिर बच्चन।
3: अच्छा।
1: हाँ, और उसके पश्चात जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा इनकलाब बच्चन। अब इनकलाब चले नहीं, उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई, बहुत सारी दिक्कतें आईं, तो फिर उसके पश्चात ये हुआ कि लाओ उस नाम को बदलते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत ने नाम दिया था अमिताभ, अमिताभ का मतलब होता है उगते हुए सूर्य की लालिमा।

0: और वास्तव में वो जो सूरज उगा 12 फिल्मों के बाद आहा।
1: अच्छा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ
0: जी,
1: आप अभी भी पढ़ते हैं? क्योंकि आपने अभी कहा कि हमने तो कोई कोशिश ही नहीं की।
0: हाँ हाँ,
1: तो
0: हाँ अभी पढ़ते हैं कि सर से पूछते हैं, ये हमसे पूछते रहते हैं ना क्वेश्चन, तुमको पढ़ना पड़ता है, पता नहीं कब क्या पूछ लें। हाँ सर है हमारे ये ना, तुमको पढ़ना पड़ता है, बच्चे भी पूछ सकते हैं।
1: तो हमसे भी पूछते हैं।
0: हाँ वही तो, ऐसे हमसे ही पूछते हैं बेटा क्या बताएं, अब वो सदनाम सर है वो सबसे पूछते हैं, तो हमको पढ़ना पड़ता है, काम देते हैं कि इतना पूरा कर लेकर आना।
2: बहुत मासूमियत से निमिषा ने बोला ऐसे तो हमसे ही पूछते हैं। चलिए भाई, तो एक सवाल हमें लगता है श्रोताओं से पूछेंगे हमारे आरजे मनु
0: जी।
2: क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप
0: जी? हम बात अमिताभ बच्चन की चुकी है तो जरूर ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने ये कसम खाई थी कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करेंगे, और उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की, और क्यों नहीं की, जैसा कारण व्याख्या इसकी बताइए, कैसा क्या हो गया था कि उस एक्टर ने सौगंध खा ली थी कि हम सबके साथ काम करेंगे लेकिन इनके साथ नहीं करेंगे, और आज तक फिल्म जगत में उनकी और अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म नहीं बनी।
2: वाह, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मुझे लगता है अब इसी के साथ एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक भी लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारे एक और श्रोता साथ में जुड़े हैं जो हमसे बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए भाई, फिलहाल एक छोटे से शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के लिए चलते हैं आपके ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम वाले शो से। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 11.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं आप ही के शो ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। और अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे साथी जिनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी आवाज़ आप सबने सुनी होगी, वो हमारे यहाँ फाउंडर्स डे में भी आते हैं, न्यू ईयर में भी आते हैं, और आज सौभाग्य है हम लोगों की इस बगिया में वो आए हैं ज्ञानस्थली की। तो सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं
1: जी।
0: तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे, व्हाट्स योर गुड नेम?
1: जी मोहम्मद सईद खान जी, महाराजगंज सिटी गोंडा
0: जी। ये सईद खान जी हैं जो महाराजगंज से हमको सुनते हैं, और बहुत ही प्यारे श्रोता है हमारे, और शायद ही कोई प्रोग्राम आपसे छूटता हो, बहुत ही प्यारा सुनते हैं भाई। 89.6 एफएम के बहुत प्यारे सदस्य हैं।
2: ये अकेले सुनते नहीं बल्कि कईयों को प्रोग्राम सुनाते भी हैं।
1: जी हाँ, जी बिल्कुल।
2: एक बड़ा सा स्पीकर आपने लगा रखा है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते हैं
1: जी।
2: एंड दूसरी बात ये है कि जितने लोग मिलते हैं आप उनको बताते जाते हैं 89.6 एफएम के इस चैनल के बारे में
1: जी,
2: कि जिस तरह आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है इस एफएम के साथ में, आपने न जाने कितनों को बताया, रिकमेंड किया है। सो आप हमारे एक वेल विशर भी हैं
0: जी।
1: जी
2: और आज आप इस खास प्रोग्राम में आए हैं ओपन माइक में, तो हम चाहेंगे कि कुछ तो आपके साथ ऐसा जो है लाए हैं आप, वो हमारे श्रोताओं को भी आज आप दीजिए।
1: जी बिल्कुल। ये एक लाइन हमें याद है, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। वो ये लाइन है, रूठ गई है सुबह बनारस, खो गई अवध की शाम।
2: रूठ गई है सुबह बनारस,
1: खो गई अवध की शाम।
0: क्या बात है
1: कि अब तक राम ना आए, मेरे घनश्याम ना आए।
2: वाह
1: जी। और एक छोटी सी एक गजल है बहादुर शाह जफर की, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ
2: जी।
1: जी, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किस

0: इतना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए
1: हाय हाय
0: दो।

0: घर में।
1: शुक्रिया।
2: क्या बात है भाई, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और आप जानते हैं मैं इस दशक का इनको तानसेन कह सकता हूँ। अब आप पूछिए क्यों, इन्होंने गजल गानी शुरू की और दो पंक्तियां गाई और फिर बारिश होने लगी। बाहर बारिश की बूंदें शुरू हो चुकी हैं। मतलब ये राग मल्हार था या नहीं है तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कुदरत झूम गई चुकी है, एक बार फिर बारिश आ चुकी है। क्या भाई, बहुत प्यारा सुनाया आपने वास्तव में।
1: मतलब एक तो इतनी बेहतरीन चॉइस, हाँ, और ऐसी अंडररेटेड चीजें लाते हैं जो बहुत ही या तो कम लोगों ने सुनी है और ज्यादातर लोगों ने तो खैर सुनी
2: नहीं सुनी है। हाँ।
1: तो ऐसे शेर, ऐसी गजल, ऐसे नगमे, और वो भी उसको तरन्नुम के साथ में गाना, इस एज में, उम्र के इस पड़ाव में, इसकी हिम्मत बांधना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
2: और अब आपकी बात सही साबित हो गई कि कोशिश करने वालों की
1: हार नहीं होती।
2: क्या बात है, आपने बोला और इधर जीत हो गई।
1: बिल्कुल।
2: क्या बात,
1: छोटी सी निमिषा ने ये जो बात कही थी अपनी कविता में, फिलहाल वो पूरी हुई थी, होती हुई सामने साफ नजर आई है।
2: आई है,
1: बहुत सही बात है।
2: और कुदरत भी झूम गई है और अब देखिए बारिश थमती है कि अभी नहीं थमती है।
1: बस अब हमारे सईद साहब थम गए हैं तो मुझे लगता है कुछ ही देर में बारिश भी थम ही जाएगी।
2: अब वो प्रश्न का उत्तर किसी श्रोता ने दिया कि नहीं, हमारे भाई अमिताभ बच्चन के साथ किस एक्टर ने कभी कोई काम नहीं किया।
1: हाँ, आपका सवाल जो प्रश्न था वो तो बड़ा ही लाजवाब था। मतलब सच में इस तरह के आंसर्स मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सो फिलहाल हमारे साथ में जो हैं वो अभी आंसर्स नहीं आ पाए शायद, क्योंकि नेटवर्क का इशू है इंटरनेट का। सो चैट बॉक्स पे भी उस तरह एक्सेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप ही बता दीजिए फिलहाल, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बड़ी बात की थी आपने। सो जाने से पहले आप जवाब तो इसका दे ही दीजिए।
2: जी बिल्कुल। प्रकाश मेहरा एक मूवी बना रहे थे और अमिताभ बच्चन की करीब 11 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी।
1: ओके।
2: और वो निकल रहे थे, अब सोच रहे थे क्योंकि वो न्यूज़ पढ़ने गए तो ये कहा गया कि आपकी आवाज़ बहुत मोटी है, तो उनको वहाँ से भी हताशा मिली। तो उनको लगा कि फिल्म जगत की दुनिया उनके लिए शायद नहीं बनी है। तो प्रकाश मेहरा मूवी बना रहे थे, उस मूवी में जो एक्टर थे उन्होंने कुछ ठंडा तेल लगा, जैसे नॉर्थन टाइप का तेल होता नहीं है, कुछ ऐसा ही तेल लगा रखा था। तो प्रकाश मेहरा गए उनके पास, उन्होंने कहा कि सर आप तेल ज़रा चेंज कर लीजिए क्योंकि मुझे सीन बार बार समझाने में दिक्कत होती है। तो उन्होंने अपनी आवाज में कहा, जानी तुम अपने फिल्म का हीरो चेंज कर लो, हम तेल नहीं बदलते। और इतना कहकर उन्होंने वो फिल्म छोड़ दी। अब उनको लगा था कि प्रकाश मेहरा आएंगे, उनको मनाएंगे। इत्तेफाक से ये जा रहे थे इलाहाबाद, इन दोनों की मुलाकात हो गई एयरपोर्ट पर। प्रकाश मेहरा ने पूछा अमिताभ बच्चन से कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, क्या करोगे? तो अमिताभ बच्चन, भाई अंधा क्या चाहे, दो आँखें। उन्होंने कहा चलो

0: ग्यारह फ्लॉप हो गई हैं, एक और देख लेते हैं। अब जब वो सेट पर लेकर गए तो जूही चावला, जो जूही भादुड़ी, जया भादुड़ी, जया भादुड़ी का कद बहुत छोटा, अमिताभ बच्चन बहुत लंबे। उस समय जया भादुड़ी टॉप फ्लोर की एक्ट्रेस हुआ करती थी। उन्होंने देखा तो कहा इस लंबू के साथ तो हम फिल्म करेंगे नहीं, ये कितना लंबा है, हम कितने छोटे, जमेगी ही नहीं, जोड़ी ही नहीं जमेगी। तो आप कोशिश करके देखिए, फिल्म बनी और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। और जैसे ही वो फिल्म हिट हुई, राजकुमार ने सौगंध खा ली थी कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी फिल्म नहीं बनाऊंगा। पूरे फिल्म जगत के इतिहास में अमिताभ बच्चन और राजकुमार की कोई भी फिल्म नहीं बनी है। जबकि राजकुमार ने सबके साथ फिल्म बनाई, इवन गोविंदा के साथ तक बना डाली, नाना पाटेकर के साथ बनाई, सबके साथ, लेकिन दिलीप कुमार के साथ बनाई, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कोई फिल्म नहीं है।
1: बिल्कुल। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स था अबाउट अमिताभ बच्चन। बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोगों ने ऐसे जिक्र कर ही दिया था, बच्चन फैमिली का जिक्र हुआ था। सो चलिए, फिलहाल वक्त विदा लेने का आ गया है, लेकिन एक गाना हम सभी लोग ने सुना है, रिमझिम गिरे सावन। गाना हम सभी लोग ने सुना है, रिमझिम गिरे सावन।
0: क्या बात है,
1: मुझे लगता है दो दो लाइन गुनगुनाते हुए इस ओपन माइक को विदा आप दे दिया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सो तैयार हैं शानवी आप भी? ऑलराइट।

0: आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गाना असली 89.6 एफएम।
1: ये है गोंडा शहर की धड़कन
0: और ये अब तो गोंडा शहर की धड़कन नहीं साहब, हमारे और आपके दिलों की धड़कन भी बन चुकी है। जी हाँ, आपसे मिलेंगे आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को ठीक
1: एक बजे।
2: जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हेलो हाय नमस्कार आदाब गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 2:04 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 99.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजे उन्नति और ये है आपका संडे का स्पेशल वाला प्रोग्राम एनटीआर टॉप 20, यानी कि आपके उंगलियों पर चलते हैं पूरे के पूरे 20 गाने बैक टू बैक बॉलीवुड की बहुत सारी गॉसिप और बहुत सारी न्यूज के साथ। तो फिलहाल लगाइए आप अपनी अपनी क्षेत्रों से अपने अपने जिले से चैट बॉक्स में अटेंडेंस और बताइए कि आप मुझे सुन कहां से रहे हैं, गोंडा से, बहराइच से, या फिर लखनऊ से, एमपी से, यूपी से, राजस्थान से, कहां कहां से हमारे लिसनर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और अभी आपके उधर का मौसम का क्या हाल है? क्या अभी भी आपका मौसम बेहाल है या हमारी तरह ही अभी भी आप अंधेरे के अंदर ही जी रहे हैं और बस यही चिल्ला रहे कि अंधेरा कायम रहे? फिलहाल मैं चाहती नहीं हूँ। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और ट्यून करते हैं सॉन्ग नंबर 20, यानी कि हमारे प्लेलिस्ट का पहला वाला गाना जो ऑफ कोर्स आपको काफी मिलने वाला है हाई एनर्जेटिक वॉइस में। श्रेया की आवाज है, बागी 2 से आपके लिए पेश करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, उंगलियों पर गिनते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के इस बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 20.

0: दो तीन करते हुए हम आपको बता दें कि हम कर रहे हैं आपका इंतजार। श्रेया घोषाल की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे बागी टू से एक दो तीन और गिनती गाते गाते। आपको ये भी बता दें कि भैया चार दिन हो चुके हैं और गोंडा वालों की बत्ती गुल हो चुकी है, यानी कि गोंडा से लाइट गायब हो चुकी है, पूरा गोंडा अंधेरे में डूब चुका है। हालांकि कुछ एरियाज में तो लाइट वापस आ गई है, लेकिन कुछ एरियाज में अभी तक नहीं आई है और बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं गोंडा के आसपास, बहुत सारी जगह, बहुत सारी सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो फिलहाल आप अपने घर पे रहिएगा, अपना ख्याल रखिए और कुछ बढ़िया सा बनाकर एंजॉय करते रहिए। संडे का बहुत ही स्पेशल वाला डे होता है आज। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। सॉन्ग नंबर 19 हमारी प्लेलिस्ट में कर रहा है आपका इंतजार। कभी खुशी कभी गम से आप एंजॉय करने जा रहे हैं यू आर माई सोनिया। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के एक और आई बीट गाना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 19।

0: हैं जी, और आप एंजॉय कर रहे थे ओम शांति ओम से धूम ताना। और इसी के साथ अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभ दोपहर आज मेहमान सभी को, शुभ दोपहर आपको भी। कैसे हैं आप? आई होप आपकी तबीयत पे आप कुछ सुधार होगा और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। आपकी एनर्जी मेरी जिम्मेदारी है और इसी एनर्जी को बनाए रखने के लिए क्यों ना भैया आज के मौसम में एक गर्म चाय की प्याली हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। मौसम ठंडा ठंडा हो रखा है, लाइट आए या ना आए, लेकिन इंडिया वालों को चाय मिलनी चाहिए। चाय नहीं मिलती तो मज़ा नहीं आता है बॉस। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम चाय नहीं पीते क्योंकि हम काले हो जाते हैं, तो भैया आप क्यों चाय नहीं पीते? पीजिए। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, हल्की सी बारिश हो रही है फिलहाल, क्योंकि 3 दिन से तो नॉनस्टॉप बारिश चल ही रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान जी ने ऊपर से नल खोल के उसको बंद करना ही भूल गए हैं। लगातार नीचे से कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट जा रही थी कि प्लीज़ बंद कर दीजिए, पानी की टंकी भर चुकी है। न जाने कितने मीम्स बन चुके थे, कितने लोगों ने प्रार्थना कर डाली, कितने लोगों ने बहुत दुख भी जताया। बहुत पुराने पुराने पेड़ किसी के टूट गए, किसी का बगीचा ख़राब हो गया, और इन सब के बीच में लाइट भी गुल हो गई है। और पिछले 2 दिन से लाइट का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। तो भाई जब ये सब कुछ चल रहा है, उसी के बीच में एक गर्म चाय की प्याली जो है ना वो आपको राहत देती है। सर का दर्द हो, अदरक वाली चाय। घर में मेहमान आए हैं, अदरक वाली चाय। घर से मेहमान गए हैं, अदरक वाली चाय। लाइट चली गई, अदरक वाली चाय। लाइट आ गई है, अदरक वाली चाय। और ये अदरक वाली चाय हम आई थिंक इंडिया वालों की हर एक चीज़ का एक ऐसा हिस्सेदार, ऐसा पार्टनर है जो आई थिंक उनकी हर दवा, हर दुख की दवा है। कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस एक गर्म चाय की प्याली हो जाए है, होता है ना। और जो लोग आजकल अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके चाय नहीं पी पा रहे हैं, उनका अलग ही दुख चल रहा है कि भैया 3 दिन से बारिश हो रही है, टपरी में बैठ के चाय नहीं पिए हैं। और ये कंप्लेन भी हमारे पास बहुत सारी आ चुकी है। तो फिलहाल आइए इन्जॉय करते हैं, क्योंकि चाय की इतनी बात हो गई है तो क्यों ना हम इन्जॉय कर ले एक गर्म चाय की प्याली हो। हाँ जी, आइए इन्जॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 17। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: और यहीं पर ये गाना थोड़ा सा बदल जाता है। ये गरम चाय की प्याली हो, उसको बनाने वाली हो, कप में निकाल के लाती हो, साथ में पकौड़े भी बनाती हो। अब ये गाना थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि नहीं, क्योंकि इस मौसम में अगर गरम गरम पकौड़े और उसके साथ मिल जाए चाय तो कॉम्बिनेशन हिट हो जाता है। वो अलग बात है कि भैया इसमें कैलोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जितने भी हमारे फिटनेस वाले लोग हैं वो इनसे थोड़ा दूर भागते हैं, बट जितने भी हमारे फूड लवर्स हैं जो ये कहते हैं कि आप खाइए एवोकाडो, वो वाला फल जिसके अंदर कोई स्वाद नहीं है, हम तो अपने पकौड़ों में खुश है जनाब। और कमाल की बात ये है कि कल जो अपने घर में बहुत सारा मटेरियल रखे हुए थे फ्रिज के अंदर, उन सब ने कल बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया है। क्यों? क्योंकि मटेरियल ख़राब हो रहा था और इसी चक्कर में घर वालों की पार्टी हो चुकी है। मौसम ख़राब है और घर में इतना सारा सामान बन चुका जितना डेली बनता भी नहीं है, और इसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। और इसलिए मेहरबान होकर उस इंसान ने किचन में खड़े होकर 2-3 घंटे लगातार काम किया है और वेराइटीज़ पेश कर दी गई, 56 भोग बना दिए गए हैं। ऐसा आपके घर में भी हुआ क्या? क्योंकि हमारे आसपास ऐसा हो रहा था। एंड मुस्तफ़ा जी हमारे साथ जुड़ गए फ्रॉम सऊदी, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। अरविंद जी का लिखना है कि हम ठीक है, हॉस्पिटल से फुर्सत मिल गई है, बहुत बढ़िया, घर पे रहिए, आराम कीजिए, आराम फरमाइए, कोकोनट वाटर पीते रहिए। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं, यानी आइडिया क्या हो सकता है? नहीं आइडिया, चलिए हम ही आपको देते हैं। सुबह होने ना दे, रात खोने ना दे। क्यों क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भैया बादल बहुत तेज़ हो रहे हैं और इस हिसाब से जिस हिसाब से मौसम बिगड़ा हुआ है, लग ही नहीं रहा है कब सुबह हो जाती है कब रात हो जाती है। आजकल 6 बजे ही रात दिख रही है मुझे। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं बढ़िया सा गाना और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए आप सुनते रहिए संडे का स्पेशल वाला शो इंडिया टॉप 20 विद राजीव उन्नति।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 16।

0: क्या बात है, दिल तो बच्चा है जी और बाकी सब तो बुड्ढा हो चुका है जी हाँ। क्योंकि अगर बात करें आपके जोड़ों की, आपके हाथ पैरों की, आपके सर की, तो ये सब तो बुढ़ापे की ओर जा रहा है ना दोस्तों। क्योंकि भैया आजकल आप 20 साल के होते हैं और आपकी कमर पे दर्द हो जाता है, आप 40 साल के होते हैं आपके घुटनों में दर्द हो जाता है, लेकिन दिल इकलौती ऐसी चीज़ है जो बच्चा था, बच्चा है, बच्चा रहेगा, क्योंकि ये नहीं मानता। इवन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, इसका बचपना और बढ़ता जाता है, हर एक बात पर जिद लेके बैठ जाता है कि हमको तो यही चाहिए। जैसे कि मेरी मम्मी की जिद होती है, मना है मीठा खाना, लेकिन जिद यही है कि मीठा ही खाएंगे, वो अलग बात है कि आप तुमसे छुपा कर खाएंगे क्योंकि तुम डांट दोगी। तो ये तो यूं ही चलता रहता है और मुझे लगता है कि जब तक आपके दिल का बचपना जिंदा रहता है तभी तक आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं और ज़िंदगी में असल मायने में जिंदा रहते हैं, जीते हैं, लगता है ना। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और रुति मैम, सुना है आप सबकी फरमाइश पूरी करती हैं, तो विद्या बालन जी को लेकर आओ। आज ही हम सबकी फरमाइश पूरी करते हैं, लेकिन वो फरमाइश हमारी पॉकेट के अंदर फिट होनी चाहिए। जैसे ही वो फिट हो जाती है हम आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, जैसे ही वो मेरे पॉकेट के अंदर फिट नहीं हो पाती है तो उस फरमाइश को हम दूर से टाटा टाटा चिल्ला देते हैं। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग बेहद ही खूबसूरत, प्लस आपका वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग होने वाला है, बिकॉज हाउसफुल से हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका क्या होगा जनाबे अली। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं द टॉप 20 विद राजी उन्नति।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 14।

0: भाई आपके झूमने को हम जरा ब्रेक लगाना चाहेंगे क्योंकि पुष्पा 3 को लेकर मेरे पास कुछ एक ऐसी जबरदस्त न्यूज है जिसको सुनने के बाद आप भी हिलने वाले हैं। फिलहाल ये न्यूज कंफर्म तो नहीं की गई है, लेकिन हाँ सुनने में यानी कि खबरों में ये चीज शामिल हो रही है, रूमर्स है, अफवाह है कि पुष्पा 3 में विजय कहीं ना कहीं नजर आने वाले हैं, वो भी किसके अपोजिट में, आपको पता है ना, अल्लू अर्जुन के अपोजिट में, एक विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं विजय। नहीं, विजय थालापति की बात नहीं हो रही है। अगर आप तैयार हैं उनको देखने के लिए, आपने देखा होगा ना कॉमरेड फिल्म के अंदर, फैमिली मैन के अंदर आपने उनको काफ़ी बार देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त हिट फिल्में उन्होंने रश्मिका के साथ दी हुई हैं ऑफकोर्स, और वो सुनने में आ रहा है कि पुष्पा 3 में वो अपोजिट होने वाले हैं अल्लू अर्जुन के, स्पेशली एज अ विलन के किरदार में। तो देखने के लिए तैयार रहिएगा। अगर ये बात सच है तो मुझे लगता है दो सुपरस्टार आमने सामने, काफ़ी हिट केमिस्ट्री होने वाली है और काफ़ी गर्मा गर्म रहने वाला है बीच का माहौल इनका। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। सॉन्ग अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, एंड एंजॉय कीजिए पंजाबी गाना 4 दिन कुलविंदर की आवाज में। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद राजीव नदी।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 11।

0: गाने में जिस कदर खूबसूरती के साथ एक प्यारी सी लव स्टोरी का एक्सप्लेन किया गया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। एंड हमारे साथ महेंद्र दीपन जुड़ गए हैं फ्रॉम राजस्थान। नमस्कार, गुड आफ्टरनून आज्योति मैम जी, कैसे हो आप? मेरा हाल बेहाल है, हमारे घर में बत्ती नहीं है और मेरा चेहरा इसीलिए लाल लाल है। फिलहाल मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। अरविंद चिरेड का है, एक बार मैं गया था कोटे ऊपर कबूतरी को दाना डालने, बट कबूतरी आ गई थी और उसकी मम्मी भी, तब से वो पिंजड़ा खाली ही रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम दोबारा कोशिश कीजिएगा, वो अलग बात है कि आप अगले जन्म में कीजिएगा। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। लुका छुपी फिल्म से आप इन्जॉय करने जा रहे हैं मेघा सिंह की आवाज़ में। पोस्टर लिखवा दो अखबार में और खबर भी छप चुकी है, दीवारों पर पोस्टर लग चुके हैं, लेकिन पोस्टर पर लिखा क्या है ये तो हमारे सिंगर से बताने वाले हैं। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 विद राजीव उन्नति।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 10।

0: आप सुन रहे थे मिका सिंह, सुनंदा शर्मा और निकिता गांधी की आवाज में लुका छुपी फिल्म से पोस्टर लगवा दो और सच में लगवा दो, लेकिन बारिश के नाम का लगवा दो। और हमारे महेंद्र जी ने सवाल पूछा है कि बारिश कम हुई गोंडा में या नहीं। बब मुशाई, सवाल बारिश का नहीं, ये सवाल तो बिजली का है जो पिछले 3 दिन से आ नहीं रही है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारे लोगों के फोन से बैटरी जा रही है, सिग्नल हिल चुके हैं और पानी की कमी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बस यही दुख है जो अभी तक घेरे हुए हैं लोगों को यहाँ पर। एंड मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। हाय हाय, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं हम इन द टॉप 20 में। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं, बिल्लू बार बार से एंजॉय कीजिए मर जानी, और उसके बाद हम चलेंगे अपने थोड़े 90s की तरफ रुख करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से बारिश ने हमें हमारे आदि मानव वाले जमाने में भेज दिया है जहां ना पानी था ना बिजली, तो सोच रहे हैं हम भी थोड़ा सा उठ करके 2026 से सीधे 90 के दशक में ट्रांसफर ले लें। क्या ख्याल है आपका? अगर अच्छा ख्याल है तो बैठिएगा, तब तक उससे पहले एंजॉय कीजिए बिल्लू बार बार का गाना, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gala 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 9.

और आप एंजॉय कर रहे थे बिल्लू बार्बर से मर जानी। और उसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगले गाने की तरफ। क्या ख्याल है आपके? अब ऐसे 90s की तरह आपको लेके जाने वाले हैं वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। और जिस तरह का मौसम है उस तरह पे अगर हमें SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ मिल जाए तो क्या ही कहने, चार चांद चार रातें एक साथ आ जाती हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ गए इट्स कुमार जी। हाय आरजे नोनी किन होनी भैया, हमने आपको बता दिया लेकिन हमको ये बताइए कि हमने सही लिखा था कि नहीं, क्योंकि हमको भोजपुरी और अवधि में थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन रहता है और हम नहीं बोल पाते, लेकिन कोशिश पूरी है अवधि सीखने की। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम थोड़ी सी भोजपुरी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम दोनों भाषाओं को एक साथ मिक्स कर देते हैं, फिर वो एकदम मिक्सचर हो जाता है। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। साजन फिल्म से आप इंजॉय करने जा रहे हैं SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में तुमसे मिलने की तमन्ना है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे थे टॉप 20 विद राजीव नती और ये है आपका अपना रेडियो 89.6 FM।

0: हाँ जी, और ये था हमारे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में सलमान खान पर फिल्माया गया गाना तुमसे मिलने की तमन्ना है, साजन फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे। और चेयरबॉक्स में मोहब्बत के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दें कि अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? और इसके बाद अरविंद जी का लिखना है कि मत आना मिलने, बारिश का मौसम है, स्लिप करके गिर जाओगी, खामा खां चोट लग जाएगी आपको, आप मेरी प्रिय हो, क्या बात है। एक मोहब्बत की नगमे ये देखिए, और अब दूसरा एक नज़ारा और देखिए। आप तुम्हें कूटने का इरादा है, कब मिलोगे जन्म, प्लीज मिल लो ना, बिना कूटे तुम्हें नींद नहीं आती। एक मोहब्बत का तरीका ये भी होता है। फिलहाल आपका वाला कौन सा है ये आप बताइएगा। और आइए चलते हमारे बढ़ते अगले गाने की तरफ। और ये वो गाना है जिसने अरिजीत सिंह को बहुत नेम, फेम, पॉपुलैरिटी दी थी, जहां से अरिजीत सिंह का करियर बदल गया था। गाने का नाम है तुम ही हो, फ्रॉम आशिकी 2, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। और इस मौसम का बेहतरीन नगमा आपके लिए पेश करते हैं, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Gana 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 7.

बेहद ही रोमांटिक, बेहद ही सूथिंग आवाज आप एंजॉय कर रहे थे। अरिजीत सिंह की आवाज थी आशिकी टू से, मेरी आशिकी तुम ही हो। एंड इस गाने के लिए काफ़ी तारीफें आ चुकी है हमारे चैट बॉक्स में, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या गाना है, अब तुम ही हो, अकेले तन्हा जिया ना जाए, ये सॉन्ग हो जाए तो मज़ा आ जाए भैया। अब ये सॉन्ग तो आपकी फरमाइश हो गई, फरमाइश तो हम कॉलर ट्यून में ही प्ले करते हैं। एंड तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, ये आपकी पसंदीदा लाइन है आई थिंक इट्स कुमार जी। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं, प्यार मांगा है तुम ही से ना इनकार करो। बहुत ही प्यारा सा नगमा है और एंजॉय करेंगे आप ऑफ कोर्स आपकी अपने फेवरेट पसंदीदा अरमान मलिक की आवाज में। हालांकि पहले इसको किशोर दा ने गाया था, लेकिन हम आपको एक नया वर्जन सुनाने वाले हैं, तो एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं टॉप 20 गोंडा की अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: Radio Gara 79.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 5.

0: दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए।
1: क्या बात है भाई, किशोर दा ने किस खूबसूरती के साथ बयां किया है कि दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। फिर वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और चाहते भी हैं रोकना, लेकिन मोहब्बत कहाँ मानती है। और इसी रोमांटिक नगमे के बाद आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। बाहर का मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा कातिलाना, तो आइए इंजॉय करते हैं, मौसम है बड़ा कातिल। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: Radio Gala 99.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 4.

0: कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे ये आईने, जो तुम्हें कम पसंद करते हैं उन्हें पता है कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। कितना प्यारा सॉन्ग है, नाइस प्लेलिस्ट आरजे, थैंक यू सो मच अमित जी। एंड धर्मेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैम नमस्ते, आज लेट हो गया, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, आपका स्वागत करते हैं जो टॉप 20 में। एंड इसके बाद आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस थे, अब नहीं सुनूंगा शो, नहीं तो आप कहीं खो ना जाऊं। तो भैया खोने के डर से अगर आप बेहतरीन लम्हे छोड़ देते हैं तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। फिलहाल अब चाहूंगी आपसे इजाजत और हम आपके लिए पेश करते हैं बैक टू बैक दो गाने। पहला सॉन्ग जो होने वाला है वो है अल्तमश फरीदी की आवाज में और दूसरा अरमान मलिक की आवाज में, वजह तुम हो दिल में छुपा लूंगा। दोनों ही बेहद रोमांटिक गाना है, एंजॉय करते रहिएगा और मुझे दीजिए इजाजत, वक्त है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन पर। अब तक आपके साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे। आज का शो आपको कैसा लगा, आज की प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी और आपका पसंदीदा नगमा कौन सा था, चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 2।

0: गुड इवनिंग और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आशुनती मौजूद हैं आप सभी के साथ लेकर के संडे का हेल्थ का स्पेशल शो क्लिनिक ज्ञान असली, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की एक बहुत ही खूबसूरत पहल जिसमें बात है आपकी सेहत की, क्योंकि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। बचपन से आपने ये लाइन सुनी है और हम इस बात को मानते भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त हमारे हेल्थ एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी, जिनका मैं स्वागत करती हूं। कैसे हैं सर आप?
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम बिल्कुल अच्छे हैं। आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे।
0: जी, और क्योंकि बारिश हो रही है, मॉनसून का सीजन आ चुका है आई थिंक।
1: जी मुझे भी लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं दस्तखत तो दे ही दी है मॉनसून ने, और धीरे धीरे अभी जितना चाहिए उतना पानी तो नहीं बरस रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एंट्री तो उसने कर ही दी है।
0: और कल रात तो काफ़ी ज़्यादा पानी बरस भी रहा था और उसकी वजह से रात भर में घर पे लाइट भी नहीं आई।
1: जी हाँ, ये बरसात आने के साथ साथ जो बारिश की जो समस्याएं होती हैं, लाइट का ना रहना, पानी का भर जाना, कीचड़ होना, ये सारी समस्याएं भी आ चुकी होंगी
0: और इनके साथ जुड़ती हैं बीमारियां। अब आप सोच रहे होंगे लाइट ना आने से कौन सी बीमारी होती है? लाइट ना आने से मच्छर बहुत ज़्यादा काटना शुरू कर देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं, और जो और दूसरे इंतजाम होते हैं हमारे घरों में, ऑल आउट और ये सारी चीज़ें भी नहीं काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है।
0: और इस वक्त आपको बहुत सारे इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे, बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलेंगी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा, न जाने ऐसी कौन कौन सी बीमारियों के नाम आप सुनेंगे जो हर मानसून के सीजन में सुनते हो। चाय पकौड़ों का नाम तो सुनते ही सुनते हो, और उसके बाद जो होता है उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं।
1: जी बिल्कुल, और इन बीमारियों का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है ऐसे सीजन में, तो बिल्कुल उनके बचाव के बारे में, उनसे सुरक्षित रहने के तौर तरीकों के बारे में और ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में अवेयर करने के लिए हम आते हैं हर संडे, और इस बार फिर आ गए हैं। जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके या हमें डायरेक्ट कॉल करके भी आप अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं।
0: हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429। आई रिपीट, 6393316429। और चैट बॉक्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, जो आपको मिलेगी प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। फिलहाल क्योंकि मॉनसून आ चुका है, बारिश हो रही है और हर जगह पर नमी बनी हुई है, आसपास चावल के खेत भी तैयार हो चुके हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीज लगा दिया गया है, वो जो पेड़ लगाए जाते हैं लगा दिए गए हैं, और अब वहाँ से कुछ जापानी बुखार जैसे मच्छर भी निकल के सामने आने वाले हैं, बस कुछ दिनों का इंतज़ार है।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ और भी तमाम बीमारियां, मच्छरों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, कई बार जो है फंगल इन्फेक्शन जैसी भी चीज़ें बढ़ती हैं, स्किन के दूसरे इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं ऐसे सीजन में देखने को मिलता है।
0: और हमने हाल फिलहाल में एक और इन्फेक्शन या फिर कहीं एक और बीमारी के बारे में सुना है जिसके लिए वार्निंग जारी कर दी गई है, स्पेशली इन मुंबई।
1: जी बिल्कुल, ऐसी नई नई बीमारियां भी आती रहती हैं जिनके लिए हमारे सरकार को और दूसरी संस्थाओं को अवेयरनेस के लिए और चीज़ों को जागरूकता के लिए नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है,
0: और उस बीमारी का नाम है लैप्टोपोरोसिस। आपने नाम सुना होगा आई थिंक।
1: जी बिल्कुल, लैक्टोपोरोसिस ये एक नई बीमारी, खैर मतलब इतनी भी नई नहीं है, लेकिन अब चूंकि कई बार उनके स्प्रेड होने के और उनकी महामारी फैलने के बाद उन बीमारियों, जैसे अब हमारा जो कोविड था ये भी इतना नया नहीं था हमारे लिए, ये इसके पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, बट उसके बाद जब ये समस्याएं आती हैं कि कोई मतलब महामारी स्प्रेड हो जाती है और कोई बड़ा पैंडेमिक क्रिएट होता है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है,
0: तब जाकर हम सोचते हैं कि अरे इस बीमारी से बचना भी तो है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो ऐसी ही बीमारी फिलहाल मानसून में आ गई है। इस बीमारी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आजकल जो पानी भर रहा है सड़कों पर और इससे लोग गुजर रहे हैं, इन पानी में कहीं पैर डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बच्चे कूदते रहते हैं, क्या इनसे भी किसी तरह की कोई बीमारी फैल सकती है या फैल रही है?
1: जी देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पानी का जमाव होता है जिनमें बच्चे आते जाते हैं या खेलते कूदते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पानी का जो जमाव होता है उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया और दूसरी गंदगियां, टॉक्सिसिटीज़ रहती हैं, कूड़ा कचरा। देखिए जो पानी बरसता है वो मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसमें बीमारियाँ हैं, लेकिन वो पानी ज़मीन पर गिरने के बाद ज़मीन पर उपस्थित जो प्रदूषण है, कूड़ा कचरा है, इनसे मिलता है और इसके बाद हमारे लिए ये घातक बनता है।
0: जी, और हम आपको बता दें, कई लोगों को दिक्कत होती है कि वो गंदे पानी में जाते हैं तो उनके पैरों में कहीं ना कहीं, वो कहते हैं कि पैर पक गया है, बहुत खुजली हो रही है, बहुत पेन हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी सामने आती हैं। इसमें फंगल इन्फेक्शन भी होता है, और इसी पानी के दौरान आपको अब लेप्टोपोरोसिस नाम की बीमारी के भी दर्शन हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो।
1: जी बिल्कुल।
0: तो पहले हम आपसे जान लेते हैं कि ये क्या है, उसे फ्लड फीवर क्यों कहते हैं।
1: देखिए ये जो समस्या है जिसको लैक्टोस्पायरोसिस या लैक्टोपोरोसिस ऐसे वर्ड से प्रोनाउंसिएट करते हैं, ये स्पेशली एक तरह का बैक्टीरिया होता है लैक्टोस्पायरा, और इस बैक्टीरिया के वजह से ये बीमारी होती है। अब समस्या ये है कि जो फ्लड डिसीज मतलब बारिश वगैरह के मौसम में, क्यों, तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये यूजुअली कम रहते हैं, लेकिन जब पानी, बाढ़ और ऐसी कंडीशन बनती है, जल भराव जैसी कंडीशन बनती है, तो इनका स्प्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में पानी से इनका कंटामिनेशन, जैसे अब जब जल भराव होने लगता है और वो जल जमाव भी हो जाता है, तो कई बार जो हमारे पानी के पीने के जो स्रोत होते हैं, जैसे जो भी हम नल लगा करके रखते हैं अपने घरों में, या मोटर लगा हुआ होता है वो टंकी में पानी भरता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो फिल्टर में आता है। फिल्टर में भी कई बार, देखिए फिल्टर क्या होता है, उसमें बेशक रिवर्स ऑस्मोसिस और जो ब्लू लाइट ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसके बाद भी वो 100% बैक्टीरिया फ्री सेफ नहीं हो पाता है। और भी कंटामिनेशन की चीज़ें होती हैं, बर्तन जैसे जिस पानी से हम धुलते हैं, अब फिल्टर के पानी से तो हम बर्तन धुल नहीं सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो कंटामिनेशन के चांसेस बारिश के मौसम में, स्पेशली जब भारी जल भराव या जल जमाव जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो इन बैक्टीरियाज का ज़्यादा होता है, और इसलिए ये मतलब फ्लड डिसीज या ऐसी नामों से जाना जाता है।
0: अच्छा सर, ये कहते हैं कि जो ये बीमारी है स्पेशली जानवरों के, या फिर जो संक्रमित जानवर होते हैं उनके मलमूत्र में पाई जाती है,
1: जी
0: कहाँ जहाँ पर वो रहते हैं, और इस वक्त क्योंकि स्पेशली गांव में मवेशी, चूहे और ये सारी चीज़ें हैं पाली जाती हैं जानवर्स, और स्पेशली उस एरिया में जब पानी भरता है तो कहीं ना कहीं ये बीमारी और भी तेज़ी से स्प्रेड होती नज़र आती है, आई थिंक।
1: बिल्कुल। अब जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पानी का अरेंजमेंट है, वाटर अरेंजमेंट सिस्टम है, वो कुछ ऐसा होता है कि सभी घरों में नल लगे होते हैं, यूजुअली उन नलों से लोग पानी पीते हैं। जैसे शहरों में अगर ऐसी भारी बारिश जैसी समस्या बनती है, तो थोड़ा सा उसके लिए और भी लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। गाँव में चूंकि उतनी सुविधाएं उपलब्ध हो नहीं पाती हैं, तो वहाँ पे मवेशी भी होते हैं, उनके मलमूत्र भी होते हैं, और उसमें जो पाए जाने वाले तमाम बैक्टीरियाज हैं, उनका स्प्रेड बारिश के मौसम में स्पेशली पानी के थ्रू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो वहाँ पर आपको ये समस्या शहरों की अपेक्षा हो सकता है ज़्यादा देखने को मिले।
0: बिल्कुल, और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो पानी के भराव में लोग निकल रहे हैं वो निकलते ही सबसे पहले क्या करें, क्योंकि एक तो होता है कि हम सादे पानी से पैर धो लेते हैं ये सोचकर कि चलो सफाई हो गई, गंदगी से निकल के आए थे,
1: जी
0: बट मुझे नहीं लगता कि इससे जो हमारे बैक्टीरिया, जो वायरस हम लेकर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ट्रीट हुए होंगे।
1: जी
0: वो सादे पानी से 1-2% भले ही हिल गए हो अपनी जगह से, लेकिन क्योंकि वो छोटे होते हैं, दिखते नहीं है, सेल्स के अंदर भी जा सकते हैं,
1: जी
0: कट लगा है तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली जाएंगे ही जाएंगे,
1: जी जी
0: तो इसके लिए कोई भी इंसान क्या करे। अब हर वक्त जूते पहन के भी उसमें जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग जूते निकाल के जाते हैं, पानी भरा हुआ है जूते कौन
1: जी
0: पहनेगा, चप्पल पहन के जा रहे हैं, सिर्फ नल के पानी से पैर धो लेते हैं और भूल जाते हैं कि मुझे पैर दोबारा ढंग से साफ भी करना है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि अगर पानी का भराव है और आप उसमें से गुजर रहे हैं और आपके पैरों से वो पानी टच हो रहा है, तो उस वक्त उसको निकलने के बाद क्या कुछ करना चाहिए।
1: ज़रूर बताना चाहेंगे। और देखिए चूंकि जैसे मान लीजिए हम शहरों में ही ले लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब भारी बारिश होती है तो गलियों में पानी भर जाता है। अब गलियों में चूंकि सड़कें तो होती हैं, सड़कों के साथ साथ नालियां भी होती हैं,
0: जी
1: और अगर वो पानी भरता है तो कहीं ना कहीं नालियों में भी वो पानी पहुंचता है, और नाली के पानी में वो मिक्स होता है, क्योंकि अब नाली का जो पानी होता है उसमें तमाम घरों के, सभी घरों के जो लेटरिन का टॉयलेट सिस्टम होता है उसका भी पानी जाता है, जो लोग कंज्यूम करते हैं उसका भी पानी जाता है, मतलब तरह तरह के घरों से और तरह तरह के इन्फेक्शंस और बैक्टीरियाज जो है उसमें आते हैं। जब वो पानी सड़कों पे भरे पानी के साथ मिल जाता है, तो वो उसको भी कंटामिनेट करता है। जब आप ऐसी किसी जगहों से, अगर आपको मान लीजिए उन पानी में से होके आना ही पड़ रहा है, तो तो एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, पहले तो वो आप कपड़े चेंज करें जिन कपड़ों को आप पहन करके आए हैं। इसके अलावा अपने पैरों को, हाथों को अच्छी तरीके से और किसी साबुन से या हैंड वॉश से, इन सभी चीज़ों से साफ़ करें, और पैरों को भी मतलब साबुन या हैंड वॉश से जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे साफ़ करें। अगर इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उस पे जो बैक्टीरिया, अच्छा एक एक समस्या और समझिए, जैसे हम जब भी कभी आते हैं तो चूंकि जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो इतने समझदार होते हैं कि उन्होंने पैर धो लिया और पैर धो करके सोफे पे या कुर्सी पे कहीं पर भी वो बैठ गए, पैर ऊपर करके भी, जब थोड़ी देर में पैर सूख गया तो पैर ऊपर करके भी बैठ गए, वो वहाँ पर हाथ नहीं रखते, या हाथ रखते हैं तो वो हाथ अपने मुंह पे नहीं लगाते। बट
0: जी
1: जो घर में छोटे बच्चे होते हैं, ये क्या होता है कि उस सोफे पर अपने हाथ से भी रखते हैं, खाने की चीज़ें सोफे पर रखते हैं, फिर सोफे से उठा करके खा भी लेते हैं। अच्छा, इसीलिए बच्चों में ये मतलब केसेस, जो डायरिया है, पेट दर्द है, वॉमिटिंग फीवर और ऐसे तमाम तरह की चीज़ें बच्चों में ज़्यादा इसीलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि वो कंटामिनेशन एडल्ट्स बाहर से लेकर के आते हैं। लेकिन अब चूंकि एडल्ट होने के नाते, उनकी इम्यूनिटी भी मजबूत होने के नाते, और जो थोड़े मोटे वो प्रिकॉशंस लेते हैं उनके नाते, वो कंटामिनेशन उनको नहीं होता है, बट वो बच्चों को जो है डिलीवर कर देते हैं।
0: जी
1: तो आप अपने हाथों पैरों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें, यानी साबुन वगैरह से धोएं, या फिर उस पर कुछ भी सैनिटाइज़र वगैरह स्प्रे करें, उससे भी बैक्टीरिया वगैरह सब डिस्ट्रॉय होते हैं। तो इन चीज़ों का और जो पर्सनल हाइजीन है, इन चीज़ों का ख्याल रख करके आप थोड़े उसके चांसेस को कम कर सकते हैं।
0: ऑल राइट। और जैसे आपने बच्चों का नाम लिया स्पेशली इस वक्त, तो मुझे कुछ याद आया,
1: जी
0: क्योंकि जो जो बच्चे छोटे हैं, 6 महीने के हैं, या जिन्होंने घुटने पर चलना स्टार्ट कर दिया है, वो
1: जी
0: पूरे दिन कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं, उनको मम्मी पकड़ पकड़ के घसीटती हैं कि यहाँ आराम से बैठ जाओ, और उनसे बैठा नहीं जाता।
1: जी
0: इस वक्त क्योंकि बारिश हो रही है, लोग अंदर से बाहर बाहर से अंदर करते रहते हैं, और वो हर वक्त एक चिप चिप चिप चिप बनी रहती है घर के अंदर।
1: जी
0: मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ इस मौसम में इसी चीज़ से,
1: जी
0: और स्पेशली बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है, बैक्टीरियाज अंदर आ रहे हैं, या फिर अगर चलो उन्होंने चप्पल बाहर भी निकाल दी है तो भी
1: जी
0: फर्श पर बहुत सारे बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम पोछे में फिनाइल डाल के लगा दें तो इससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, बट उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और मैंने देखा है जो बच्चे फर्श पे चलते हैं वो अपने अंगूठों को मुंह में डाल रहे हैं, इवन पैर के अंगूठे भी मुंह में ले जाते हैं।
1: जी
0: तो आपको क्या लगता है, ये फिनाइल से जो फर्श साफ हो रहा है, क्या ये उनके लिए सेफ है?
1: बिल्कुल। और मैं इस पर एक और नई चीज़ भी आपको आज बताने वाला हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि वो हमारे लिसनर्स को भी चीज़ें अच्छी लगें और समझ में आएँ। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जो फिनाइल हम लोग यूज़ करते हैं वो बच्चों के लिए तो सेफ़ नहीं होता है, और ऐसे तमाम जो ब्रांड्स होते हैं वो इसको प्रमोट भी करते हैं कि बच्चे खेलते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, और हमारा ब्रांड आप यूज़ करिए फर्श क्लीन करने के लिए, फ्लोर क्लीनर्स हैं, उससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, ये पूरी 100% तो ये बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती है, क्योंकि वो केमिकल्स से बने होते हैं, और केमिकल्स स्पेशली जो डिसइन्फेक्टेंट्स होते हैं एंड क्लीनर्स होते हैं, ये सेफ तो बिल्कुल नहीं हो सकते। जब कभी भी आप, अब चूंकि हमारे पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि वो हम हल्दी का लेप बना करके उसको फर्श पर लगाएं और वो फिर डिसइन्फेक्टेंट भी करे,
0: बिल्कुल, एक्चुअली
1: और
0: वो तो बहुत बेकार लगेगा एंड बहुत मैसी लगेगा।
1: जी बिल्कुल। तो ऐसा करने के लिए, जैसे आप जो भी यूज़ करते हैं, आप फिनाइल यूज़ करते हैं या आप दूसरा कोई फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं, डिसइन्फेक्टेंट यूज़ करते हैं, उसको क्लीनिंग करने के बाद आप जो है किसी दूसरे कपड़े से 1 से 2 बार और अच्छे से पानी से भिगो करके पोछा लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपका फर्श डिसइन्फेक्टेंट तो हो चुका है, बैक्टीरियाज वगैरह तो अभी आपने बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर दिया है, बट उसके बाद जब आप साफ पानी से और सादे पानी से 1-2 बार पोछा लगाते हैं तो आप उस केमिकल को और डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब उसका मैक्सिमम पार्ट हो सकता है आपके पोछे के साथ और पानी के साथ वहां से हट जाए। तो ये करने के साथ साथ आप थोड़ा सा अपने इस सेफ्टी को भी बढ़ा सकते हैं कि जो आपका केमिकल्स हैं फॉर डिसइन्फेक्शन वो बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्म ना करें।
0: ऑल राइट। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, कुछ फर्श पर लगी चीजों की वजह से ही बच्चों के अंदर कुछ बीमारियां डेवलप होती हैं,
1: बिल्कुल।
0: स्किन इन्फेक्शन हो जाता है।
1: और मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी तरह का बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हमारे बच्चे में आया है तो वो तो चलिए उसके सिम्टम्स आपको 2-4 दिन में आ जाते हैं,
0: जी
1: फीवर आएगा, वॉमिटिंग आएगी, पेट में दर्द होगा, मतलब जो तमाम तरह के सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे। बट ये जो केमिकल्स से होने वाले हार्म हैं, मतलब जो फिनाइल वगैरह इन सारी चीज़ों से होने वाले हार्म हैं, पहली बात तो ये बहुत मेजर नहीं होते, छोटे हार्म्स होते हैं, और ये धीरे धीरे मतलब स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं और हमारे बच्चों के बॉडी में, उनके डेवलपमेंट में तमाम तरह की डिफर्मिटीज क्रिएट करते हैं।
0: और इसी कारण आजकल कुछ ऐसे भी हेल्थ वाइज काम कर रहे हैं लोग, जो कहते हैं कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें भी देखो कि कौन सा कलर इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो एडिबल है या फिर ऐसे ही चल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ऐसी तमाम नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि मतलब यूजुअली एक एवरेज अगर फीमेल को देखा जाए तो वो जितने अपने कॉस्मेटिक और पर्सनल यूज़ के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती है उसमें लगभग 160 से 170 प्रकार के केमिकल्स वो अपने बॉडी पे अप्लाई करती है। और ये सारी चीज़ें मतलब उनके हार्मोन बैलेंस पे, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और उनके तमाम तरह के मतलब समस्याओं का वो कारण बन रही हैं। लेकिन ये अभी तक तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी पॉपुलर हो रही हैं लोगों में।
0: बिल्कुल, कॉस्मेटिक की ही बात नहीं, अगर आप बच्चों की चीज़ों की बात करें जो स्पेशली खाना पसंद करते हैं, जिसमें रंग बिरंगी टॉफीज आती हैं,
1: जी
0: इसमें भी केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और आजकल लोग इसको भी लेकर अवेयर कर रहे हैं कि आप खा तो रहे हो बट नोटिस करो आप खा क्या रहे हो।
1: बिल्कुल।
0: चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं लेप्टोपोरोसिस पर। अगर किसी के घर में आसपास बहुत चूहे रहते हैं तो उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चूहों से होने वाली बीमारी है।
1: जी बिल्कुल। मतलब जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन बैक्टीरियाज को स्प्रेड करने के, चूहे, गाय भैंस, दूसरे जानवर, कुत्ते बिल्लियाँ, तो क्या होता है कि जैसे कुत्ते बिल्लियाँ सबके घर में नहीं रहते हैं, गाय
0: जी
1: भैंस हमारे शहरों में आपको सबके घरों में देखने को नहीं मिलेंगे, बट चूहे एक ऐसा मतलब वो हैं, एक रोडेंट्स हैं, एक ऐसे जानवर हैं जो ऑलमोस्ट सभी घरों में आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं बाहर से आ जाते हैं और अपने साथ वो तमाम तरह के ऐसे बैक्टीरियाज और बीमारियां लेकर के आते हैं।
0: और क्योंकि चूहों से तो हर कोई परेशान है, क्या कोई मेडिकल में ऐसा सोल्यूशन है कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, चूहों को मारना भी नहीं चाह रहे हैं, जाल में वो फंस नहीं रहे हैं, और आपको भी पता होगा आजकल किचन में जो भी चीज़ रखी होती है उसको वो खा जाते हैं, भले
1: जी
0: आपने कितनी महंगी सामान क्यों ना मंगाया हो उसे काट देंगे। बड़े चूहे तो होते हैं वो तो खा ही जाते हैं, सब कुछ ख़त्म
1: बिल्कुल।
0: कर देते हैं।
1: इनफैक्ट हम हमारे डिपार्टमेंट में कई बार ऐसा होता है जब कुछ चूहे आ जाते हैं तो जो ड्रग स्टोर्स होते हैं उनमें वो दवाइयाँ तक काट डालते हैं और दवाइयाँ भी खा जाते हैं। तो कई बार हम लोग ये आपस में बात भी करते हैं कि क्या इनको खाने के बाद ये मरते नहीं हैं या फिर
0: उनका
1: जिस
0: डीएनए एक्चुअली मॉडिफाई हो जाता है
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इसीलिए मुझे लगता है उन्हें कुछ नहीं होता। और बाकी जब उन्हें लोग जहर वगैरह देते भी हैं खाने के लिए कि चलो
1: जी
0: चूहे मारने वाली दवा दे दो,
1: जी
0: मुझे लगता है उन दवाइयों की वजह से उन पे असर भी नहीं करता।
1: बिल्कुल। कहीं ना कहीं देखिए वो भी आज जैसे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, वायरस या जो सारे जीव हैं इस धरती पे वो म्यूटेट करते हैं अपने आप को, मतलब जो परिवर्तन होता है, जो भौतिक या सामाजिक रासायनिक परिवर्तन होता है संसार में, उसके हिसाब से वो खुद को जो है वो म्यूटेट करते हैं और उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे उन पीढ़ी दर पीढ़ी उनके हाव भाव, बिहेवियर, बॉडी की बनावट, इम्यूनिटी सिस्टम और ऐसी चीज़ों में भी परिवर्तन आता है।
0: तो मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि कोई मेडिकल में सोल्यूशन है, इन चूहों को घर से बाहर कैसे निकाला जाए।
1: देखिए वैसे तो मतलब जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे सभी को पता है, इसमें ऐसा कोई सॉल्यूशन नया नहीं है जो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट ही बता सके। जो रोडेंट कंट्रोल होता है, मतलब ऐसी दवाइयों का छिड़काव करना, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती हैं जिनका छिड़काव करने से चूहे वगैरह नहीं आते हैं, तो स्पेशली उन जगहों में जिन जगहों पे चूहे ज़्यादा जा कर के बैठते हों, उन जगहों पे जो कोने किनारे की जगह हों उन पे अगर आप छिड़काव करते हैं तो वो उससे बचते हैं। और दूसरे तमाम तरह की दवाइयाँ भी होती हैं और यही सारे आप जो है चीज़ें अपना सकते हैं। और इसके पीछे विज्ञान ने भी तमाम तरह की रिसर्चेस की कि ऐसा कुछ करके उनका प्रजनन ही कम किया जा सके, लेकिन ये बहुत एक बड़ा टास्क है। मुझे लगता है इंसानों का इलाज करने से कहीं ज़्यादा बड़ा टास्क है ये।
0: बिल्कुल, फिलहाल अब बात करते हैं लेप्टोपोरोसिस और डेंगू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका,
1: जी
0: क्योंकि दोनों बीमारियां आई थिंक वो बीमारी है जिनमें बुखार सबसे पहले ही आता होगा,
1: जी बिल्कुल।
0: कहीं ना कहीं आपको स्किन पे रैशेस दे सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस होंगे जो इन दोनों को अलग करता हो जिससे एक इंसान पहचान सके। और इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस वाली है वो कौन सी है जिससे आपकी जान की रिस्क होती है।
1: देखिए वैसे दोनों अपनी जगह रिस्की हैं क्योंकि लैक्टोस्पायरोसिस में भी मतलब ऐसा एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन बनता है जिसमें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, हेमरेजिक कंडीशन बन जाती है।
0: मतलब पानी में रहने से या फिर किसी से हम कंटेमिनेट हो जाते हैं तो हमारा अंदर के ऑर्गन फेल हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, चूंकि क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ऐसी होती हैं, और स्पेशली जो ऐसी स्प्रेड होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे ये COVID-19 में भी ऐसा देखने को मिला था कि बहुत से लोग ऑर्गन फेलियर के वजह से या हार्ट स्ट्रोक के वजह से मारे जा रहे थे। तो उसमें तमाम तरह की रिसर्चेस हुई, तो जिसमें पता चला कि हमारे बॉडी का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है।
0: जी
1: ये हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, तो बिल्कुल ये भी घातक बन जाता है। और कहीं ना कहीं जो डेंगू है वो भी एक तरह की घातक कंडीशन क्रिएट कर सकता है। बट हाँ, ये है कि ये लैक्टोस्पायरोसिस जो है, ये आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है 5-7 दिन या 10 दिन आपको एक्स्ट्रा दे सकता है कंपेरेटिवली डेंगू के। और डेंगू जो है वो थोड़ा सा आपको कम टाइम देता है। थोड़ा सा मैकेनिज्म में भी अंतर है, जैसे जो डेंगू में क्रॉनिक कंडीशन बनने पे जो डेथ होती है वो ब्लीडिंग के वजह से होती है, इंटरनल ब्लीडिंग के वजह से होती है। हमारा ब्लड अंदर ही अंदर ब्लीड कर जाता है, GI ब्लीड हो जाता है, प्लेटलेट्स बिल्कुल लो हो जाते हैं, लास्ट में स्ट्रोक हो जाता है। और जो इसमें लैक्टोस्पायरोसिस में जो कंडीशन बनती है वो ब्लीडिंग के वजह से नहीं, हैमरेज के वजह से, क्लॉट की वजह से ऐसी ऑर्गन फेलियर या हार्ट स्ट्रोक जैसी कंडीशन बनती है।
0: मतलब एक में खून का थक्का जम रहा है
1: और
0: और
1: एक में
0: दूसरे में खून बह रहा
1: बह रहा है,
0: है।
1: बहुत पतला हो गया है, तो ऐसा कंडीशन थोड़ा सा विरोधाभास आपको दोनों में कंडीशन में दिख सकता है। अब अगर बात करते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करें
0: बाय सिम्टम्स
1: बाय सिम्टम्स, तो देखिए इसका कुछ बेसिक चीज़ें समझिए। जैसे अगर आपको लैक्टोस्पायरोसिस का कोई कंटामिनेशन है, तो इसके कंटामिनेशन में आपको नौजिया वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है, फीवर तो आपको आएगा ही आएगा, GI डिस्टरबेंस जैसी कंडीशन बनेगी, पेट में दर्द भी हो सकता है। और डेंगू में यूजुअली ये सिम्टम्स नहीं आते हैं, डेंगू में बॉडी पेन और घुटनों के आसपास मसल्स में रिजिडिटी और पेन फील होता है। और इसी के साथ साथ जो है मतलब डेंगू में क्या होता है कि आपको का जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे वीकनेस की वजह से, और बहुत ज़्यादा बॉडी में ऐसा लगता है कि एकदम से दम ही नहीं लग रहा है, पेशेंट चलने में सक्षम नहीं होता है, चेहरे वगैरह पे हल्का सूजन और थोड़ी सी भवरन जैसी दिखती है। तो इन सभी मतलब सिम्टम से आप थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
0: लेप्टोपोरोसिस में आंखों में खुजली क्यों होने लग जाती है?
1: देखिए जितने भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बारिश या फिर फ्लड, बाढ़ और ऐसी चीज़ों से स्प्रेड होती हैं, ऐसी बीमारियों में हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत तेज़ी से ट्रिगर होता है। जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर होते हैं, जब हमारे WBCs बढ़ते हैं हमारे बॉडी में, तो आँख से पानी आना, आँख में मिचलाहट होना, नाक से पानी आना, ये सारे सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जिनको हम मतलब फ्लू और कोल्ड के सिम्टम्स कहते हैं।
0: और हमें लगता रहता है कि हमें सिर्फ जुकाम हुआ है
1: जी
0: और वो कहीं ना कहीं सीरियस बीमारी में
1: जी
0: कन्वर्ट हो
1: एक
0: जाता
1: गंभीर
0: है।
1: बीमारी होती है, जबकि हमें जो मतलब इनिशियल सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, चूंकि हमारे जो नाक और मुंह का जो एक मैकेनिज्म है, मतलब कभी भी देखिए जब भी ऐसा मौसम चेंज होता है या जो भी होता है, गले में खराश वगैरह होती है, हमको सर्दी होती है, खांसी होने वाली होती है, तो हमारे नाक से, आँख से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे बॉडी को ये पता होता है कि ये जो रूट होते हैं, स्पेशली नेजल रूट, ओरल रूट, इन्हीं रूट से ज़्यादातर बीमारियाँ एंटर करती हैं, हमारे बॉडी को ये चीज़ें पता होती हैं। तो जब कभी भी ऐसा होता है तो ये हमारे बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है और हमारे नाक से, आँख से पानी आना स्टार्ट करता है, ताकि मैक्सिमम बैक्टीरिया जो हैं वो यहीं पर ट्रैप हो सकें या फिर बॉडी से डिस्कार्ड हो सकें। ये एक मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का।
0: ओके, तो ये हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है आपने ये समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या लेप्टोपोरोसिस की मेडिसिन है और है तो कितने दिन का कोर्स है?
1: जी बिल्कुल, देखिए जो लैक्टोस्पायरोसिस होती है ये एक तरह का बैक्टीरियल डिसीज़ है, और इसके इलाज के लिए तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग डॉक्सीसाइक्लिन और पेनिसिलिन्स जो होती हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन या क्लेवम जैसी दवाइयों का नाम आपने सुना होगा, तमाम हमारे लिसनर्स ने भी। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की या पेनिसिलिन ग्रुप्स की हैं, इन एंटीबायोटिक्स से हम इनका इलाज करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट पीरियड होता है ये एक एटलीस्ट 15 से 21 दिनों का ये सबसे मिनिमम होता है। कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने पर, टीएलसी लेवल्स ज़्यादा हाई होने पर, अब चूंकि क्या होता है कि ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं उनका हम एक बार पहले कंडीशन देख करके इलाज स्टार्ट करते हैं, उनके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें इंक्लूडिंग उनका ब्लड काउंट, प्लेटलेट्स काउंट और ये सारी चीज़ें, तो उनको हम इलाज के दौरान भी बीच में उनके दरमियान चेक करके पेशेंट की कंडीशन को देखते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस वो कितना तेज़ रिकवर हो रहा है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कितना काम कर रहा है, या फिर उसकी जो दूसरी कंडीशंस हैं, मतलब वो शुगर का पेशेंट है, नहीं है बीपी, या फिर ऐसा कोई मरीज़ ना हो, तो ये डिपेंड करता है। इलाज लगभग आपका 15 से लेकर के 45 दिनों के बीच में रहता है।
0: ऑल राइट, और अब बात कर लेते हैं हमारे किसान भाइयों की, क्योंकि इस वक्त मौसम है धान उगाने का, चावल लगाने का, और इसमें हर कोई लगा हुआ है
1: जी।
0: और मॉनसून के सीजन में ही सबसे ज़्यादा बीमारियां भी फैलती हैं। जो खेत में काम करने जाते हैं वो चप्पल जूते हर एक चीज़ निकाल देते हैं, उनका पैर जो होता है वो ऑलमोस्ट मिट्टी में होता है
1: जी।
0: आप मतलब मैं जानना चाहूँगी कि किसानों में ज़्यादातर बीमारियाँ इस दौरान होती हैं वो कौन सी होती हैं? स्पेशली बच्चों में तो जापानी बुखार देखने को मिलता है
1: जी,
0: बिकॉज ऑफ सीज़न, और इस वक्त आपके धान के खेतों से कुछ मच्छर निकलते हैं जो उन्हें काटते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पूरी आस्तीन के कपड़े पहनो, गर्मी लग रही है इसके बाद भी पहनो
1: जी।
0: तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किसानों को जो लोग खेत में काम कर रहे हैं, पहले तो उन्हें कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में हो सकती हैं, और फिर उन पर बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, इसका बचाव क्या है।
1: जी ज़रूर, और कहीं ना कहीं मुझे वो याद आ रहा है कि मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, और ऐसे तमाम शोज़ जो रेडियो पे चलते हैं मैंने अपने बचपन में भी सुने हैं, और आज वो दिन भी आ गया कि मैं किसान भाइयों से चीज़ों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा अपने जो मेरा व्यक्तिगत इस चिकित्सा क्षेत्र का अनुभव है, मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे कुछ कॉमन समस्याएं जो किसान हर बार लेकर के आते हैं,
0: जिनमें कौन क्या है,
1: जैसे एक तो जो उनके फंगल फीट इन्फेक्शन होते हैं, मतलब पानी में रहने की वजह से और तरह के बैक्टीरियल भी इन्फेक्शंस लेकर के वो आते हैं, तो जो ये चमड़ी की और ये फंगल वगैरह बीमारियां होती हैं, ये यूजुअली किसान ऐसे मौसम में बहुत लेकर के आते हैं, जो कि साधारण इलाज करने से ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके वजह से उनको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो जाती है, बट ठीक हो जाते हैं वो। इसके अलावा जो डेंगू मलेरिया ऐसी बीमारियाँ तो होती ही हैं, इसके अलावा कई बार पैरासाइटिक इन्फेक्शन्स हो जाते हैं। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब जैसे जो एक हम लोग कैंपेन भी चला रहे हैं फाइलेरिया के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रचार भी हमारे रेडियो पे चल रहा था
0: जी।
1: ऐसी बीमारियां जो हमारे बॉडी में पैरासाइट्स की वजह से एंटर करती हैं और कॉम्प्लिकेट करती हैं, डेवलप होती हैं, जिनके वजह से हमारे लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है, मतलब जो फाइलेरिया जैसी कंडीशन है वैसी कंडीशन बनती है, वो तरह की बीमारियां हो गई। और इसके अलावा मतलब जो ये ऐसी भी गंभीर बीमारियां हैं जिन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, लैक्टोस्पायरोसिस, इसके अलावा और दूसरी कंटामिनेशन जिनके वजह से डायरिया और टाइफॉइड ऐसी बीमारियां होती हैं, तो देखिए जो ऐसे कंटामिनेशंस हैं जो बॉडी के अंदर जा कर के और डायरिया फीवर ऐसी चीज़ें पैदा करते हैं, उनका तो चलिए और भी तरह के बचाव हैं और भी उपाय हैं, बट जो हमारे पैरों के, जब जैसे पैरों में कट लगे हैं तो उनको कवर करना होता है क्योंकि वहाँ से वो इन्फेक्शन एंटर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं अपने किसान भाइयों से एक अनुरोध ये करूँगा कि जो भी किसान भाई खेतों में काम करते हैं, बराबर जाते हैं, वो अपने लिए वो एक विशेष प्रकार के जो ऊंचे जूते होते हैं, रबड़ के बूट्स जिनको कहते हैं, जो रबड़ के होते हैं और घुटनों तक लगभग होते हैं, तो उनको ज़रूर वो परचेज करें और इसका प्रचार भी करें और भी लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि खेतों में काम करने वाले एक 20-30% लोगों के नाखून में मैंने देखा है कि वो नाखून बहुत मोटा हो जाता है, मतलब एक जो फंगल नेल इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन, मतलब मुझे हर 10 में से 3-4 लोगों को दिख ही जाता है कि तुम्हें काम करने
0: थोड़ा सा
1: मोटा हो जाना, उसका येलोइश हो जाना, फिर वो धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाना, धीरे धीरे दूसरी तरह से बढ़ना, फिर वो पैरों में दर्द पैदा करना, फिर वो लंबे समय तक ऐसे ही रहता है, वो ठीक नहीं होता है, फंगल नेल इन्फेक्शन। तो इन सभी बीमारियों से कई बार ऐसे लोगों को देखा है जिनको पैपिलोमा वायरस के जो वार्ट्स होते हैं वो भी ऐसे पेशेंट्स में देखे हैं, तो इनसे बचाव करने के लिए मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि खेतों में काम करते वक्त वो जो बूट्स होते हैं, जूते जो कि मुझे लगता है 500-700 रुपए तक आ जाने चाहिए, तो उनका ज़रूर प्रयोग करें। और उनका प्रयोग करने से वो पैरों में होने वाली बहुत तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। हाथों में जब वो खेतों से बाहर आए काम करके, तो अपने हाथों को पैरों को अच्छी तरीके से साबुन लगा करके या फिर हैंड वॉश लगा करके अच्छे से धोएं, और धोने के बाद ही फिर कुछ भी खाएं पिएं या ऐसी चीज़ें करें, खाने पीने की वस्तुओं को छुएं। और ऐसा करके मुझे लगता है कि वो भी ऐसे कंटामिनेशन से बच सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बस छोटी छोटी आदतों में बदलाव और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप अपने सेहत को सही रख सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप अपने आप के अलावा दूसरों को भी बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार जो बीमारियां हमें होती हैं वो हमसे दूसरों तक भी पहुंच जाती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, और हमको पता भी ये बात नहीं चलता है।
1: और सबसे ज़्यादा इसके प्रभावी बनते हैं हमारे घरों के बच्चे, क्योंकि हम वही कंटामिनेशन ले जाकर बैठते हैं, चीज़ों को छूते हैं, बच्चों को भी उठाते हैं, बच्चों को हाथ में गोद में लेते हैं, तो वो कंटामिनेशन कहीं ना कहीं हमसे ही बच्चों तक जाता है।
0: चलिए, हमारे एक लिसनर हैं जो चैट बॉक्स में आपसे सवाल कर रहे हैं, धर्मेंद्र मोहन जी हमें सुनते हैं आवाज़ विकास से, और उन्होंने लिखा है, उन्नति नमस्ते डॉक्टर साहब जी, नमस्ते।
1: जी
0: नमस्ते।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: एंड पैर की उंगली की जो स्किन होती है वो उजड़ रही है मेरी भाभी का, इसके लिए कौन सा मलहम है, क्या कोई क्रीम है तो बता दीजिए।
1: जी बिल्कुल, ये एक वैसे नॉर्मल फिनोमेना है, ऐसे जो सीज़न होते हैं इसमें होता है। नॉर्मल जो क्रीम्स बेटनोवेट सी वगैरह आपको आती हैं, एंटीफंगल क्रीम्स, वो आप लगाएंगे और इससे वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी। जब इससे अगर नहीं रिकवर होता है बेटनोवेट सी से, तो आप हमें दोबारा संपर्क करेंगे और हम कुछ आपको और भी बेहतर बता देंगे।
0: आई थिंक ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें अगर पेन नहीं होता है तो
1: जी,
0: ये
1: पेन पेन, इचिंग, रेडनेस और रैशेज अगर नहीं होते हैं, सिर्फ स्किन ही शेड हो रही है, तो ये एक नेचुरल फेनोमेना होता है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से बाल शेड होते हैं उस तरह से स्किन भी शेड होती है, और हर दिन होती है, बस अलग बात है कि कभी कभी कम मात्रा में होती है और किसी
1: जी
0: सीजन में वो ज्यादा दिखती है।
1: जी
0: तो भाई, ये तो हमने बात कर ली आपसे इस बीमारी के बारे में, और अब हम बात करेंगे कि मानसून में आपकी डाइट क्या होनी चाहिए।
1: जी
0: मैं हर मौसम इस बात को रखती हूँ कि यार डाइट क्या होगी, डाइट क्या होगी, क्योंकि मानसून आ रहा है, चिपचिप का मौसम है, हम पानी पी रहे हैं, पानी भी पी लेते हैं कई बार बाहर से और बीमार पड़ जाते हैं,
1: जी
0: कुछ भी खा लेते हैं, और स्पेशली जब बाहर हम लोग होते हैं तो कहा जाता है कि बाहर का ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इस
1: जी
0: वक्त, क्योंकि बाहर का खाओगे पता नहीं कैसा पानी है, कौन कौन से बैक्टीरियाज उड़ रहे हैं, कहाँ से क्या आकर आपको नुकसान कर जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही की थी।
1: जी
0: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मानसून के वक्त में हमारे डाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक इंसान, एक कॉमन इंसान जो दिन में कहीं ना कहीं एक्टिव भी रह रहा है या फिर जो ऑफिस में है ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, दोनों की डाइट में क्या डिफरेंस रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि मॉनसून के सीज़न में हम जो भी खा रहे होते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करके, स्पेशली जो मतलब हम अनप्रोसेस्ड खाते हैं, सैलड वगैरह, उनको गर्म पानी वगैरह से धो करके जो हम डिसइनफेक्टेंट करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह से उनका बचाव करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ बारिश जैसे मौसम में वैसे लोगों का मन तो पकौड़े और चाय ऐसी चीज़ों खाने का मन करता है, बट ऐसी चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए।
0: क्या बात है, और आपने किसी की पसंदीदा चीज़ को रोक

0: पड़ता है, जो ज़रा सा भी बारिश में सर्दी जुकाम छींके आना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उन लोगों को स्पेशली जो फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, इन फलों का सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो काढ़ा वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका, उनसे अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा, तुलसी, ये सारी चीज़ें डाल करके उनको काढ़ा वगैरह बना करके पीना चाहिए। हल्का भोजन लेना चाहिए और थोड़े थोड़े समय पर, मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा हेल्दी आहार लेते रहना चाहिए।
1: ऑल राइट। और हमारे साथ एक अविनाश शुक्ला हमारे कॉल लिसनर जुड़ गए हैं, चलिए करें गुड इवनिंग सर। सर, इस मौसम में बच्चों के शरीर में छोटे छोटे रेड कलर के दाने क्यों निकल आते हैं?
0: जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा एक पॉइंट हम लोगों से छूट रहा था, और हमारे बहुत ही शुभचिंतक इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं अविनाश शुक्ला जी का। इन्होंने प्रश्न भी बहुत अच्छा रखा है जो हम लोगों से छूट रहा था, कि इस कंडीशन में बच्चों को दाने और कुछ बच्चों को मतलब वो फोड़े टाइप के जिनमें से पस और मवाद भी आने लगता है, ऐसी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, पानी जो बरसता है या पानी जो भी लगता है वो हमारे शरीर के आउटर सरफेस पे ही लगता है, तो वहाँ से बैक्टीरियाज़ का आवागमन बढ़ जाता है। नमी बढ़ने की वजह से और काफ़ी देर तक, जैसे जो लोग भीग जाते हैं, काफ़ी देर तक भीगे हुए जो लोग होते हैं वो अगर इस बात को नोटिस करेंगे तो उनकी जो स्किन है वो थोड़ी सी फूली हुई लगेगी, मतलब लगेगा कि थोड़ी स्किन फूल गई है। ऐसे कंडीशन में बैक्टीरियाज़ के लिए और वायरसेस के लिए हमारे बॉडी के मतलब इनर डर्मा पोर्शन में, जो त्वचा की आंतरिक परत होती है इंडोडर्मिस, उसमें अप्रोच करना और उसमें पहुंचना उनके लिए सरल हो जाता है, और इसलिए वहां पहुंच के वो ऐसे छोटे छोटे दाने और फोड़े हमारे शरीरों पे ये उत्पन्न कर देते हैं।
1: जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। आई होप आपको हमारा शो पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बारिश में खास ख्याल रखिए अपनों का और आपका खुद का भी। अगर बाहर कहीं जाते हैं तो घर पर आकर हाथ पैर ज़रूर धुलें, खुद को साबुन से या हैंड वॉश से क्लीन करें। डिटॉल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। बच्चों के लिए स्पेशली हमने जो बात की वो आई थिंक आपको पसंद आई होगी, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं स्पेशली उन्हें। और इसी मैसेज के साथ अब लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनसली 89.6 FM की एक खास पेशकश जिसका नाम है क्लिनिक कैनसली। बाय बाय, टेक केयर।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठे जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now you're listening, 11:39.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज गोधूली प्रोग्राम में हमें गोंडा की ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को लेकर आते हैं, जिनसे जिनकी लाइफ से जिनके कार्यक्षेत्र के बारे में हमको काफी सारी जानकारी मिलती है, और सच बताएं तो जीवन में कहीं ना कहीं बढ़ने की प्रेरणा देकर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ स्ट्रगल से भरी होती है। हम देखते तो डायरेक्ट तौर पे हैं उसकी कामयाबी को, उसके आज को देखते हैं, लेकिन बीते हुए अगर कल की बात करें तो उसके पीछे एक पूरी यात्रा होती है, एक पूरा सफर होता है। हमारे जो भी मेहमान आते हैं वो अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कई ऐसी बातों को शेयर करते हैं जो कॉमनली लोग उनके बारे में नहीं जानते, लेकिन इस टॉक शो का उद्देश्य होता है कि उनके बारे में जाना जाए, और साथ ही साथ उनका जो कार्यक्षेत्र है उसके बारे में भी हमको जागरूकता मिलती है। आज इसी कड़ी में हमारे बीच हमारी खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव मैम, जो कि HOD है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज कोंडा से। सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपके अपने शो गोधूली प्रोग्राम में।
2: थैंक यू अदनान, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप मुझसे बात करने जा रहे हैं, और क्या पूछेंगे ये बड़ा बहुत एक्साइटमेंट है कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, और मैं तो बहुत शौकीन हूँ कि कोई मुझसे बात करे, मेरे बारे में पूछे, या जो पूछे मैं बताऊं, ये मेरा शौक भी है, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
1: क्या बात है, आपको अच्छा इस वजह से लग रहा है क्योंकि श्रोताओं हमने भी आपको बताया कि मैम जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि HOD हैं, उनका सब्जेक्ट भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और उनको तो अच्छा लगता है कि उनसे भी कोई कोई, क्योंकि वो तो सबसे क्वेश्चन कर करके उनकी पर्सनालिटीज को रीड करती हैं। आज मैं बहुत सारे उनसे क्वेश्चन करने वाला हूं ताकि जानूं कि उनकी यात्रा क्या रही, उनका एक सफरनामा शून्य से, जिसे कह सकते हैं कि शिखर तक का एक सफर होता है, वो कैसा रहा। तो सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप हमको ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी प्रारंभिक शिक्षा, आपकी माता, आपके पिता और आपके भाई बहनों के बारे में।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आप मुझे अपने बचपन की ओर ले आए हैं, और मैं बताऊं, मैं उन्नाव जिले से हूं, जो लखनऊ से आगे ये जिला पड़ता है, और कानपुर से पहले, तो कानपुर और लखनऊ के बीच ये उन्नाव जिला है, जो बहुत ही फेमस है, क्योंकि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी, निराला जी, इनकी धरती है ये, और इनके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र जो हिंदी साहित्य के, शिवमंगल सिंह सुमन, तो ये जो धरती है साहित्यकार और क्रांतिकारियों से भरी हुई धरती है, और मैं ये कहूंगी कि ये जरूर इसका असर कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पर पड़ता है, क्योंकि मैं मानती हूँ मेरा जो ये व्यक्तित्व है, जो इसके अंदर मैं समझती हूँ स्ट्रेंथ है हमारी, इन सब की जीवनी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद धरती जो ये क्रांतिकारी और साहित्यकारों की है, इसका प्रभाव मुझे अपने अंदर दिखाई देता है, क्योंकि आप देखें शहर में जितने भी पार्क, जितने भी ऑडिटोरियम या कह दे पक्षी विहार हैं, ये सब चंद्रशेखर आजाद पार्क मेरे घर के ठीक था, जितने निराला ऑडिटोरियम में मेरी जिंदगी भर मेरे स्कूल के डांस वगैरह जो है वहां जाते रहे, तो कोई भी प्रोग्राम होता था तो जैसे ड्राइंग कंपटीशन होते थे तो निराला पार्क में, तो ये सब क्या होता है, इन सब बड़े लोगों की जीवनी से अगर आप जुड़ते रहते हैं तो आपके अंदर भी कुछ न कुछ अच्छा करने की इच्छा होती रहती है।
1: बिल्कुल सही,
2: तो
1: आपने
2: मैं उस शहर से हूँ
1: जी। तो अब हमको ये बताइए कि आपने बताया कि भाई एक तो फैमिली का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके जीवन पे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन ये बात किसी ने सही कहा है कि आपका खुद का तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, जो कुछ मिलता है यूनिवर्स से मिलता है, समाज से मिलता है, एक दूसरे से मिलता है, और शहर का प्रभाव पड़ना, क्रांतिकारियों के नाम का होना, साहित्यकारों के नाम का होना, जाहिर सी बात है आप पर उनका असर बखूबी पड़ा है।
2: जी जी। और फैमिली का तो होना ही होना है।
1: बिल्कुल,
2: माता पिता का असर तो बच्चों में वही होता है जो संस्कार माता पिता देते हैं, माता पिता या भाई बहन जो भी है।
1: जी, तो पहले तो हमको आप ये बताइए कि आप कितने भाई बहन हैं और पिताजी क्या करते हैं और माताजी उनके बारे में।
2: हमारे पिताजी श्री जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव उनका नाम था, जो हाइडिल में जेई और बाद में एसडीओ की स्केल से वो रिटायर हुई। और मदर मेरी हाउसवाइफ थी, लेकिन वो बहुत पढ़ी तो वो 8th तक थी, लेकिन उनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी क्योंकि उन्होंने अपनी समय की एक जो बुक होती थी मैथ की, चक्रवर्ती करके, चक्रवर्ती ब्याज और इसमें वो सब होते थे, हर तरह के सवाल होते थे, तो उस समय उनका नाम था कि उन्होंने वो पूरी बुक सॉल्व की थी। तो उनकी मैथ बहुत अच्छी थी और उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी मेरी मदर की। और वो पूरे टाइम अपने घर में जो रीति रिवाज, आंगन में चौक बनना, दीवारों पे करवा चौथ और ये सब जो ड्राइंग बनती थी, बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदर थी कि मेरी बुआ लोग या पड़ोस के लोग सब देखने आते थे कि कितना अच्छा बनाया था मेरी मदर ने। तो हम लोगों ने बचपन से ये सब देखा। और मेरा ये मानना है कि मदर जैसी होती हैं लड़कियां तो खासकर उसका बहुत कॉपी करती हैं, इसीलिए बचपन से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हुई और मैथ्स भी मेरी ठीक ठाक रही।
1: क्या बात है, तो मम्मी की आपने एग्जांपल दिया कि भाई वो मैथ्स में तो बहुत अच्छी थी, साथ ही साथ ड्राइंग उनकी नंबर एक थी। हाँ।
2: और हम लोग 4 बहने हैं, एक बड़ा भाई, सबसे बड़े मेरे भाई हैं और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उसके बाद मैं हूँ, उस एक छोटी बहन है।
1: क्या करते हैं आपके सारे भाई बहन?
2: हमारे भाई बहनें सब हमारी हाउसवाइफ हैं। और मेरे भाई जो है वो पीवीसी पाइप कंट्रोल में थे और मोबाइल का भी उनका बिजनेस है, वो ये करते हैं, अभी उन्नाव में है। मदर फादर तो अब नहीं रहे और मेरे भाई उन्नाव में ही रहते हैं, और भतीजा भी है मेरा, वो पढ़ रहा है अभी।
1: जी, अब चूंकि आपने बताया फैमिली बैकग्राउंड के बारे में,
2: जी,
1: अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई और उसके बाद वो कैसी रही, उसके बारे में भी।
2: एक्चुअली जब मेरा जन्म हुआ हैदराबाद में, उन्नाव जिले में ही है, हैदराबाद एक गांव है, वहां पर हुआ था। उसके बाद उस समय पापा की पोस्टिंग हरदोई में थी और जब मैं वहां हरदोई गई तो ट्रांसफर हो चुका था उन्नाव के लिए ही। और हम लोग आ गए तो हम लोगों का पुराना घर है उन्नाव में, पापा के बाबा का, उस घर में हम लोग आ गए। फिर हम लोग, पापा तो ट्रांसफर होकर जाते थे, हम लोग उसी घर में रह गए और वहीं मेरी शिक्षा LKG, उस समय LKG, KG, AKG भी कहा जाता था, तो डॉक्टर जीनाथ जी दयाल जो स्कूल है उसी में हमारी एडमिशन हुआ और 12th तक वहीं मेरी पूरी पढ़ाई हुई है, पूरी पढ़ाई वहीं हुई इंटरमीडिएट तक। उसके बाद BA करने के लिए श्री नारायण गर्ल्स डिग्री कॉलेज उन्नाव में ही है, वहीं पर BA किया। BA में मेरे सब्जेक्ट हिंदी जरूर रहा क्योंकि हिंदी से मेरा लगाव बहुत ज्यादा था, हिंदी लेकर, हिंदी एजुकेशन और साइकोलॉजी लेकर BA किया। लास्ट में साइकोलॉजी 3rd ईयर तक था, फिर PG वहाँ नहीं था उन्नाव में क्योंकि एक कोएड कॉलेज था DSN और हमारा गर्ल्स डिग्री कॉलेज था, वहाँ साइकोलॉजी से MA नहीं था। और मेरी प्रिंसिपल ने खास कर कहा था कि मुझे करना है MA क्योंकि मैंने कॉलेज में BA में टॉप किया था, हाईएस्ट मार्क्स थे।
1: क्या बात है।
2: तो उसके बाद उन्होंने MA के लिए कहा, स्पेशली PPN कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है कानपुर का, वहाँ मेरा एडमिशन मेरी प्रिंसिपल ने कह के करवाया कि वहाँ जाइए उस कॉलेज में स्पेशली, और वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। तो पढ़ाई की लाइफ जो बीती है मेरी बहुत अच्छी, और इतना मुझे, जैसे कह ले मुझे गर्व होता है, बहुत प्राइज मिले हैं मुझे अपनी लाइफ में।
1: ओके, आपने बताया बहुत सारे प्राइज मिले हैं।
2: जी,
1: पहली बात तो प्राइज मिलने के पीछे कई सारी वजह होती है और उसमें मुझे लगता है कि कई लोगों की मेहनत होती है, क्योंकि अगर बच्चा कोई प्राइज पाता है तो उसमें उसकी फैमिली का भी हाथ होता है,
2: फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है। मेरी बहनें, पता नहीं क्या था उनको कि मुझे पढ़ने के लिए पूरा, तुम पढ़ो मैं चाय बना के देती हूँ, वो सब मुझे पढ़ने के लिए। मेरा भाई जो कुछ मुझे चाहिए, ज्योग्राफी में अगर फील्ड वर्क करना है तो मेरा भाई साथ में जाता था। पापा तो मेरे हमेशा कहते थे जो बुक्स चाहिए, जो कुछ चाहिए, जो करना हो साथ में, पढ़ाई के लिए हमेशा सब लोग सपोर्ट करते रहते थे। तो हाई स्कूल में इसीलिए जो है मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज भी आया, मैं हाई स्कूल में भी फर्स्ट आई, इंटरमीडिएट में भी मेरा फर्स्ट रहा, BA में मैंने कॉलेज टॉप किया और MA में भी मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया।
1: क्या बात है, लगातार इतने सारे अचीवमेंट्स, ये दर्शाते हैं कहीं ना कहीं आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है।
2: बहुत अच्छी लाइफ गुजरी है, एजुकेशनल लाइफ तो मेरी बहुत बढ़िया थी। तो और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ था KGA में, उस दिन मेरे स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था, बोरोलिन वालों ने उस समय करवाया था एडमिशन के समय ही, और मेरी ड्राइंग पहले से बहुत अच्छी थी, उसी दिन प्राइज मिल गया ड्राइंग में।
1: अच्छा, तो जिस दिन एडमिशन हुआ उसी दिन आपने पार्टिसिपेट
2: किया, और उसके बाद तो जितने भी निराला ऑडिटोरियम में या ये क्लब होते हैं उनमें हुआ करते थे, लायंस क्लब वगैरह के आर्ट कंपटीशन होते थे, तो उनमें सब में मैं जाती थी और प्राइज लेकर ही आती थी।
1: क्या बात है।
2: और एक बार मैं 9th में थी तब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ था ड्राइंग कंपटीशन, उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था, और एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ उसमें फर्स्ट प्राइज मिला ड्राइंग कंपटीशन में। यही कारण था 92 में मैंने एक बॉम्बे आर्ट होता है कोर्स होता है बॉम्बे आर्ट का
1: जी।
2: वो किया DAV कॉलेज लखनऊ से किया
1: जी।
2: वहां पर एग्जाम हुआ था मेरा, क्लासेस तो उसकी उन्नाव में हुई लेकिन उसका एग्जाम DAV कॉलेज लखनऊ में हुआ था, बॉम्बे आर्ट का कोर्स मैंने किया। और फिर जब MA तक मेरा पूरा हो गया पढ़ाई, उसके बाद मैंने जो है कंप्यूटर का एक कोर्स किया डिप्लोमा 1 ईयर का, और वहां भी मैंने जो है सेकंड हाईएस्ट आया, क्योंकि वहां पर एक कंप्यूटर की रिसेप्शनिस्ट थी वो भी एग्जाम में थी शामिल, वो उसको नॉलेज पहले से था तो काफी अच्छा, उसका फर्स्ट गया और मेरी सेकंड पोजीशन आई थी।
1: ओके।
2: और परसेंटेज तो वहां भी मेरा काफी हाई गया। तो ये जो अचीवमेंट्स रहे मेरे, मुझे लगता है कि शायद यही मुझे आगे बढ़ाते गए, और पढ़ो और पढ़ो।
1: क्या बात है। अच्छा, आपने पढ़ने पे दिलचस्पी के बारे में बताया, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पढ़ने में इतनी दिलचस्पी कैसे हो सकती है, जबकि एक अगर बच्चे को नॉर्मली देखा जाए तो बच्चे होते ही चंचल हैं और शायद बचपन ऐसे ही गुजरता है, खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं। आपने बात की पढ़ाई की, लगातार आपने टॉप किया, बहुत अच्छे मार्क्स रहे, इवन आपका पेंटिंग या ड्राइंग कंपटीशन में भी आप पार्टिसिपेट करती नहीं, उसमें भी आप प्राइजेस लेके आती नहीं, क्या वजह थी, पढ़ाई में इतना मन कैसे लगता था?
2: देखिए, अब इस उम्र पे आके मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतना ज्यादा पढ़ती थी और इधर उधर कहीं ध्यान नहीं, बस पढ़ाई करनी है, फैमिली में मौज मस्ती, क्योंकि मेरे पापा इस नेचर के थे कि बच्चों को साथ लेकर और हंसी मजाक और खाना पीना सब साथ में होता था, तो एक बहुत बढ़िया माहौल उन्होंने दिया और तारीफ बहुत करते थे। तो मेरे जितने रिश्तेदार थे, मेरे पड़ोसी, मेरे पापा मम्मी, मेरे भाई बहन, सब ने इतनी तारीफ की और अच्छे नंबर लाने पे प्राइज बहुत दिए। तो कहीं ना कहीं मैं साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट होते हैं, रीइंफोर्समेंट ये होते हैं कि आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो और पुश होते हैं आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज मुझे रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छे मिले, मेरी तारीफ होती गई, मुझे पुरस्कार मिलते गए और मैं आगे बढ़ती चली।
1: एक रीजन तो आपने बताया कि आपको अप्रिशिएट किया गया, यानी एप्रिसिएशन ने आपको बहुत आगे ले जाने की काम किया, इसके साथ ही कोई एक ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको पढ़ने के लिए बहुत इंस्पायर किया हो? अगर आप,
2: हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मेरी एक सीनियर थी दीवा दीदी उनका नाम, आज भी मुझे याद है, वो एक टीचर की लड़की थी, मुशीदा किदवई मैम थी, उनकी बेटी थी दीवा दीदी, तो मैं 6th में थी और वो 11th में थी उस समय, उनको जो है स्टेज पे स्कूल में प्राइज मिला हाईएस्ट नंबर लाने का, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो जब उनको प्राइज मिला तो पूरा जैसे उस समय असेंबली में तालियां इतनी बज रही थी, सारी टीचर्स स्टेज पे चढ़ गई सीढ़ियों से और उनको प्यार करने लगी, उनको टीचर्स ने अपनी तरफ से भी बहुत प्राइज दिए, कॉलेज ने तो उनको एक डिक्शनरी बड़ी सी दी थी और एक मोमेंटो दिया था, और उसके साथ टीचर्स ने किसी ने पेन दिया, किसी ने शॉल दिया, किसी ने चुन्नी दी, तो जैसे उनका हाथ भरा जा रहा था गिफ्ट से,
1: सेलिब्रिटी वाली फीलिंग।
2: और मैं खड़ी थी, 6th में थी तब मैं
1: आगे,
2: हाँ, उस समय मैं वहां खड़ी थी देख
1: जी।
2: तो वो घटना, और एक मेरे कजिन है, उनको जैसे ही वो लोग उन्नाव आए, पहले वो लोग बाहर थे बरेली में थे, बरेली से उन्नाव जब ट्रांसफर हुआ उनका, उनके बेटे तो मेरे कजिन हुए
1: जी,
2: उनको आते ही बेस्ट स्टूडेंट का प्राइज मिल गया। और ये दो घटना ऐसी थी मेरी लाइफ की जिन्होंने कहा कि और बढ़ो सीमा, पढ़ते रहो, और मैं दिन में सपने देखने लगी कि मैं भी स्टेज पे चढ़ रही हूँ और मुझे प्राइज मिल रहा है। कब मिलेगा। पढ़ाई करते करते मैं उसे रोक देती थी पढ़ाई, और सपना देखने लगती थी कैसे सीढ़ियां चढ़ूंगी, कैसे जब मुझे पुरस्कार मिलेगा तो मैं ऐसे झुकूंगी, मैं थैंक यू बोलूंगी ऐसे।
1: ओके, जैसे मूवीज में लोग देखते हैं और कहते हैं दिन के सपने।
2: हाँ, वो क्या होता था। तो ये घटना ऐसी थी जिसने कहा, और ये दिन मेरे जीवन में आ गया। जब मैं 11th में थी तो ऐसे असेंबली थी, रिजल्ट मिल रहा था, क्योंकि हाई स्कूल और 12th को मतलब रोक दिया जाता था बोर्ड को, 11th तक निकाला जाता था कौन हाईएस्ट लाया नंबर। तो स्कूल का ये था कि जैसे ही मैं वहां खड़ी थी, जब मेरे क्लास का प्राइज मिलने लगा तो मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो मुझे सुनाई नहीं दिया कि मेरा नाम आया हाईएस्ट में। तो पहले फर्स्ट का प्राइज मिला, तो मैं प्राइज लेने स्टेज पे चढ़ी और फर्स्ट लेकर उतर के फिर अपनी लाइन में मैं लग रही थी, और लाइन में लग रही हूँ तब तक हाईएस्ट कौन आया, टॉपर कौन है कॉलेज का अनाउंस हो रहा है, मुझे आवाज आई नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मेरी फ्रेंड्स धक्का मारी, फिर जाओ तुम ही हो टॉपर, जाओ लेकर आओ प्राइज। तो वो घटना ऐसी है जिसने मुझे बढ़ाया, और दीवा दीदी का सपना मैंने अपने अंदर जो सजोया था वो पा लिया।
1: क्या बात है, एक बिल्कुल जैसे मूवी का सीन होता है कि आपने किसी को देखा और बिल्कुल इंस्पायर हुए और आपने विजुलाइज किया, दिन में जागते जागते खुली आंखों से सपने देखे कि कभी मैं भी जब चढ़ूंगी तो ऐसे स्टेप्स पे चढ़ रही होंगी, ऐसे टीचर्स हमको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, ऐसे तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही होगी, और वो दिन आया,
2: वो दिन मैं ले आई,
1: लेके आप आई। ये बहुत
2: बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे उसके लिए,
1: उसके लिए शिद्दत चाहिए होती, जाहिर सी बात है। ये बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत अच्छा लगा। आज तक जो भी गेस्ट आए सबने अपनी स्टोरीज बताई, सबकी अपनी स्ट्रगल्स रही, लेकिन आज आपने जो विजुलाइज करने का एक तरीका बताया और आपके साथ वो हुआ, ये सच में किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। सुनने के बाद हमारे श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा मिलने वाली इस बात से। लेकिन इसी के साथ हम बता दें, चूंकि अभी हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, सो ब्रेक के आने के पार यानी उस पार भी हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव मैम से, जो कि HOD है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज से। आने के बाद हम जानेंगे कि भाई उनकी फैमिली का सपोर्ट इतना क्यों रहा, और अप्रिसिएशन आपकी जिंदगी में कितना जरूरी होता है, और इनकी जिंदगी में अप्रिसिएशन ने अब तक के कितने अचीवमेंट्स दिलाए, या क्या क्या उसकी वजह से इन पे प्रभाव पड़ा। बातचीत का दौर जारी रहेगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404 8840339584। 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गौधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी जो आज बातचीत हो रही है हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव मैम से, जो की HOD साइकोलॉजी है NGM कॉलेज। तो अभी हमने जाने से पहले आपको ये बोलते हुए सुना था कि अप्रिसिएशन बहुत जरूरी होता है, और हमारे श्रोताओं को भी आप बताइए क्योंकि आपको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, तो सबसे ज्यादा किसने अप्रिशिएट किया ये बताइए, और फिर अप्रिसिएशन क्यों जरूरी होता है इस पे भी कुछ संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहिए।
1: देखिए, मैंने अभी आपको बताया, साइकोलॉजी में बताते हैं कि मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले जब किसी की तारीफ अगर कर दी जाए तो वो रीइन्फोर्समेंट हो जाता है। रीइन्फोर्समेंट एक पुनर्बलन होता है जो व्यक्ति को वही अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है, और वो चीज मैं अपने को बहुत भाग्यवान मानूंगी कि मुझे बचपन से ही मिली। मेरे फादर ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा हम लोगों को आगे बढ़ाया। मेरी बहनें, मम्मी, मेरे भाई, सभी लोग इतनी तारीफ करते थे। मेरे रिश्तेदार, मुझे याद आता है, सब लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। सारे रिश्तेदार जैसे सब लोग बहुत प्यार करते थे मुझे, तो मुझे लगता है शायद उम्मीद उनकी थी और काम मैं करती चली गई। उसके बाद ऐसे होते होते जब मैंने हर जगह फर्स्ट निकाला और बहुत ज़्यादा प्राइज, हर फील्ड में मुझे प्राइज मिलते गए, गेम्स में और डांस में, पूरा मेरा एक पूरा बॉक्स था जो मेरे प्राइज से भरा है। सर्टिफिकेट तो मेरे इतने हैं, भरे पड़े हैं पूरे। और उसके बाद जब मैंने बीए किया तो मेरा मन साइकोलॉजी से क्यों जुड़ गया, क्योंकि स्पेशली मैं बताऊँ, जो मेरी प्रिंसिपल मैम थी बीए में SNG डिग्री कॉलेज की, डॉक्टर कमला सिंह, उनकी पर्सनालिटी बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी। कैसे मैं सबको जैसे लगता मैं दिखा दूं, 5 feet 10 inches लगभग उनकी हाइट, बहुत अच्छी हेल्थ, और जिधर से वो निकल जाएं, जैसे स्टैचू बोल दो तो लोग खड़े हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि उनकी डांट ऐसी थी शायद मार से भी ज्यादा तेज
0: असर करती थी।
1: और ये भी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को जिनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती वो एकदम सट से, तो जिधर से वो निकल जाती थी सब शांत थे। तो उनकी पर्सनालिटी, और वो साइकोलॉजी की क्लास लेती थी, हमारी साइकोलॉजी की टीचर वही थी, जैसे लगता था कि मैं उनसे इतना जुड़ गई कि मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद आने लगा। उस विषय जुड़ी नहीं, मैंने उस विषय को अपना लिया, वो पर्सनालिटी बन गई मेरी साइकोलॉजी। तो लोग पढ़ते हैं और मैं साइकोलॉजी में जीती हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि तुम्हें आगे पढ़ना है, और मैंने हाईएस्ट नंबर भी निकाले बीए में अपने, टॉप किया कॉलेज में। तो उन्होंने कहा तुम PPN कॉलेज जाओगी। और PPN कॉलेज की मैं पहचान बता दूं कि अगर कोई वहां बताता है कानपुर में कि मैं PPN की पढ़ी हूं, इसका मतलब ही हो जाता है कि वो कौन होगा, क्योंकि वहां एडमिशन ही नहीं होता, वहां फॉर्म ही नहीं मिलता अगर किसी का परसेंटेज 60 से नीचे है। 60 से ऊपर परसेंटेज जाता था उस जमाने में, 60% बहुत बड़ी चीज होती थी,
0: लाना भी बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात थी। तो जिसका फर्स्ट आता था वही वो वहां जाता था, वो क्रीम बच्चे ही लेते हैं। अपने आप में कानपुर में एक पहचान है PPN कॉलेज, तो वहां का पढ़े, जैसे मैं किसी को बता दूं मैं PPN की पढ़ी हूं, तो अपने आप में मेरी बन जाती है पहचान की मैं कौन हूं।
0: जी।
1: तो वहां जब मैंने अपना फॉर्म डाला और उसके बाद जब लिस्ट आउट हुई तो टॉप पर मेरा नाम था।
0: क्या बात है।
1: बल्कि वहां लोगों ने पूछा भी ये सीमा श्रीवास्तव है कौन, तो वो सब दिन जो ऐसे हैं शायद ये सब मुझे गर्व दिलाते हैं कि मुझे वो याद आते हैं कि कितना अच्छा लगता था। फिर PPN में भी मुझे पहले से नहीं लगता था कि मैं बहुत अच्छी पढ़ने में, बस मेहनत करती थी, और एक टाइम आया मैंने PPN में भी टॉप किया कॉलेज में।
0: क्या बात है। तो इतनी सारे टॉप्स आपने किए, इतने टॉपर आप रही हमेशा के लिए। अभी आपने चूंकि बात के दौरान एक और जिक्र किया था, क्योंकि मुझे पूछना था, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात की, बच्चों के लिए खेल बहुत ज्यादा जरूरी होता है या उनका रुचि होती है?
1: मेरा बहुत ज्यादा,
0: बस वही मैं जानना चाहूँ, क्योंकि आपने डांस का नाम लिया था और आपने गेम्स बोला था, उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, ड्राइंग तो मेरी बचपन से ही, मैंने बहुत आर्ट कंपटीशन किए, उसके अलावा कोई भी स्पोर्ट्स उस समय ऐसा नहीं था, मैं फील्ड में ही रहती थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, जैवलिन, कोई भी ऐसा गेम नहीं था जो मैं ना करती हूँ, और सब में मैं अच्छी निकल जाती थी। तो गेम्स टीचर चाहती थी मैं फील्ड में रहूं, और मेरी टीचर जो बायो की थी मुझे फील्ड से बुला ले जाती थी कि तुम अब गेम छोड़ो, तो अब जैवलिन शॉर्ट पुट तुम्हारा नहीं, अब तुम क्लास में रहो। वो क्योंकि उस समय गेम्स पीरियड में वो सोचती थी थोड़ा और बढ़ा दे, और बायो टीचर सोचती थी मेरी क्लास मिस ना हो, तो वो एक दिन मुझे ले गई और बोली अब पढ़ाई पर ध्यान दो। तो नाइन्थ तक तो मैंने स्पोर्ट्स में भी बहुत खो खो कबड्डी इन सब का था, मैं बहुत अच्छी थी।
0: क्या बात है, गेम्स में भी आप यानी अच्छा परफॉर्म करती थी, बहुत अच्छा।
1: जीजीआईसी हम लोगों के यहाँ रैली एक होती थी, उस टाइम पे हम लोग जीजीआई आते थे गेम्स के लिए, और वहाँ बहुत अच्छे से सर्टिफिकेट वगैरह भी मेरे पास स्पोर्ट्स के भी कई हैं। और उसके साथ डांस का तो हम लोगों के यहाँ ये था, एक टीम बन गई थी। उस समय एक्शन सॉन्ग बहुत होते थे, व्हाइट फ्रॉक फ्रिल वाली और बेल्ट रेड लगा कर, रेड रिबन हाथ में
0: जी,
1: और एक्शन सॉन्ग जो रहते थे, या फिर राधा कृष्ण के डांस, उस समय ऐसे ही प्रोग्राम होते थे। तो उन सब में कोई भी ऐसा, कोई ऐसा कल्चरल प्रोग्राम नहीं होता था जिसमें हम लोगों का डांस उसमें ना शामिल हो। इस तरह से हमेशा तैयारी रहती थी डांस की, फ्रॉक तैयार है, सारी पूरी चीजें तैयार हैं, कल डांस होना है, हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल।
0: तो एक चीज मुझे ये जानना है, जैसे बताया कि कुछ ऐसी फैमिलीज होती है जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिलाती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप गेम्स में भी टॉप करती थी, आप डांस में भी आगे रहती थी, और आप लोग के डांस को लिया भी जाता था, मतलब सीधा जाहिर साफ है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी। तो फैमिली क्या मतलब आपके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में पूरी तरह से सहायक है, क्योंकि पढ़ाई का भी आपने नाम लिया, उसमें आपने टॉप किया, आपने गेम्स का नाम लिया, आपने डांस का नाम लिया, क्या रहा मतलब फैमिली का अप्रोच क्या रहा ऑल ओवर?
1: फैमिली तो हमेशा सपोर्ट करती रही, मेरे फादर भी हर चीज में आगे थे, उन्होंने स्टेज पे भी बहुत जो प्ले होते वो सब भी किए थे, जोक्स करना, डांस करना, ये सब मेरे फादर में भी क्वालिटीज थी। तो वही चीज़ फैमिली का असर हम लोगों पे आता गया। और उसके पीजी के साथ साथ मैंने बॉम्बे आर्ट तो किया ही था, उसके बाद जब पीजी कंप्लीट हुआ तो बेनहर इंटर कॉलेज एक है, इंग्लिश मीडियम का था, अभी भी कहीं सर्च करिए आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वो ऐसा कॉलेज है जो मुझे नहीं लगता कि वैसा दूसरा कॉलेज अभी दिखाई दिया है, इंटर कॉलेज।
0: ऐसी क्या बात है?
1: है, बहुत अच्छा है, उसकी बिल्डिंग से लेकर वहाँ का जो मैनेजमेंट है, स्टाफ वहाँ 50 का, उस समय लेडीज का 50 का था, प्लस जेंट्स करीब 10 थे, इतना बड़ा स्टाफ था। और LKG से लेकर 12th तक वो भी था, वहाँ मैंने पढ़ाया। तो जो वैकेंसी थी, मैंने संस्कृत पढ़ाई और हिंदी, संस्कृत मैंने भी सेकेंड क्लास से पढ़ी थी, तो मेरी संस्कृत भी बहुत अच्छी थी। तो वहाँ मैंने इंग्लिश टू संस्कृत, ये सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश और ड्राइंग, ये पढ़ाया इंटर कॉलेज में।
0: ओके, तो आपने बताया कि आपने जो जहाँ पे जॉब किया था वो कहीं ना कहीं बहुत अलग सा इंटर कॉलेज है, और अपने मायनों में बहुत ज्यादा अलग है अंदाज उसका।
1: हसन सईद सर हैं वहाँ पर, और उनकी सोच भी आज से कितने 20-25 साल पहले मैंने पढ़ाया था, बहुत डिफरेंट सोच उनकी, जैसे हर जगह मुझे थोड़ा सा 10 साल आगे की सोच मिली। अपने फादर में मुझे जैसे लग रहा था जो जमाना चल रहा था उससे वो आगे थे, उसी तरह जहाँ मैं पढ़ाने गई वहाँ भी वो सर स्पेशल, वहाँ का स्कूल, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का स्टाइल, सब कुछ अलग था। तो उसका मुझे बहुत ज्यादा जैसे कुछ सीखने को मिला आगे निकल कर।
0: क्या बात है, मतलब आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिले। सबसे पहले आपकी वालिद की बात करें, वो खुद एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी थे, और आपने बताया कि वो खुद को आपको ही नहीं बल्कि मोहल्ले के और आसपास के बच्चों को भी अप्रिशिएट करते थे।
1: जितने मेरे रिश्तेदार की लड़कियां, सब मेरी बहनें
0: जी,
1: मामा के यहाँ की, चाचा के यहाँ की, सारे 20-25 से ज्यादा लोग होंगे जो मेरे घर रहकर पढ़े।
0: बताइए, तो यानी कहीं ना कहीं वो खुद एक ऐसी पर्सनालिटी थी, वो लोगों को बढ़ाना ही चाहते थे, और शायद ज्यादातर आपने फीमेल्स के नाम लिए, तो वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो नारियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और घर से अपने खुद से शुरुआत की।
1: ऐसा कुछ फीमेल नहीं, जितने मेरे चाचा के बेटे वगैरह भी थे, बच्चों किसी के बच्चे पढ़ाई में पीछे न रह जाए।
0: लेकिन मैं इसलिए नारियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं आपकी अगर बात किया जाए उस दौर की बात करें तो भी लोग इतना सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि लड़कियों का आज भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आज के दौर में भी है, जबकि बहुत हम आगे आ गए। तो आपके टाइम पे शायद और भी रही होगी समाज में बहुत ज्यादा,
1: लेकिन ऐसे हम कई लोगों ने ऐसा अपनी फैमिली में कुछ देखा ही नहीं।
0: आपने
1: जो
0: नहीं
1: जिसका
0: देखा।
1: मन किया, मेरी जिस बहन ने जो चाहा, हम लोगों ने ब्यूटीशियन का कोर्स, ड्राइंग का कोर्स, सिलाई कढ़ाई बुनाई, खाना बनाना, इतनी चीजें, ये कुकिंग बेकरी का जो कोर्स होता है सब किए मैंने।
0: क्या बात है, मतलब
1: कोई 2 महीने का कोर्स तो कोई, और उनमें होता था सीखती एक बहन थी, बनाते हम सब मिलकर थे। तो ब्यूटीशियन में मैंने ब्राइड भी कम से कम 10 मेकअप किए होंगे ब्राइड।
0: अरे
1: के तो कोई ऐसी
0: तो
1: चीज नहीं है जो
0: 36 के 36 गुण मिल गए होंगे।
1: बस ये था, हर चीज का शौक
0: शौक होता है। सही बात है, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं सही आपने कहा, फैमिली से आती है, जिस तरह का सपोर्ट मिलता है, एनवायरमेंट मिलता है, वैसा आप करते हैं। आपने भी 2 बार इस बात का जिक्र किया है, बॉम्बे आर्ट। पहले तो हमारे श्रोताओं को बताया कि ये बॉम्बे आर्ट होता क्या है और इसको करने के बाद स्कोप्स क्या क्या हैं।
1: ये बॉम्बे आर्ट एक कोर्स है, ड्राइंग का ही समझ लीजिए कोर्स होता है। तो पहले था कि अगर आपने 12th किया और बॉम्बे आर्ट किया तो गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती थी, यानी ड्राइंग टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। तो मैं भी जब गोंडा आई तो मुझे थोड़ा लगा कि जैसे बाहर निकलने, मैं कभी रुकी नहीं लाइफ में ना, पीजी किया तुरंत, कंप्यूटर किया तुरंत, मैं पढ़ाने लगी तो बिल्कुल घर में नहीं बैठी, तो मुझे लगता था कुछ करना है। यहाँ एक सरजू प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज करके है, वहाँ पे मैंने सुना कि वहाँ ड्राइंग टीचर नहीं, तो मैंने ड्राइंग टीचर के लिए अप्लाई कर दिया वहाँ। और यहाँ पता चला साइकोलॉजी आया है सब्जेक्ट नारी ज्ञान स्थली में, तो मुझे पढ़ाने का इतना शौक था, मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली कि मुझे पढ़ाना है, तो उन्होंने बड़े शौक से कहा जाइए, खुद लेकर आए। अरे वो उनका साथ तो समझिए, मैं जो करती हूँ उनके सपोर्ट के बिना नहीं, मेरी PhD से लेकर और मैं आज भी उन्हीं के सपोर्ट से चलती हूँ।
0: क्या बात है, मतलब आपने बताया कि फैमिली भी यहाँ पे भी जो आपकी खुद की फैमिली,
1: ये सब लक है मेरा,
0: लक है
1: कि अब स्टूडेंट जैसे मेरी कहती है मेरी तो शादी हो गई, तो मैं कहती हूँ तो और अच्छी बात है, अब तो एक ऐसे मिल गए हस्बैंड जो हर जगह आपके साथ चलेंगे,
0: साथ चलेंगे,
1: कोई चाहे रात हो चाहे दिन हो चाहे कहीं बाहर जाना है वो है साथ में।
0: नजरिया सही बात है, अप्रोच क्या है,
1: तो मुझे तो लगता है शादी हो जाना मतलब एक ऐसा आपका साथ मिल गया जो आपकी हर बात जो आपके हाँ में हाँ करेगा, लेकिन आपको उसके लिए पूरा समर्पित होना पड़ेगा, जितना आप उसके लिए करें ऐसा संबंध बनाए कि आप उनके लिए करें वो आपके लिए करें।
0: क्या तो बात है,
1: आगे बढ़ जाए,
0: क्योंकि ये जो एक ऐसा रिश्ता होता है ये बहुत ज्यादा अहम होता है, और अक्सर इस पे बहुत सारे जोक्स बनते हैं, लोग परेशान दिखाते हैं किस तरह से वाइफ हस्बैंड को परेशान करती हैं, ज्यादातर जो जोक्स होते हैं सामाजिक, और शायद ये कहीं ना कहीं एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है। लेकिन आपने जिस तरह आप इस चीज को पोर्ट्रेट किया कि नहीं, बहुत ही पवित्र रिश्ता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है, अगर इसका फायदा उठाया जाए सही में, तो आप हस्बैंड को सपोर्ट करके उनको न जाने कहां तक पहुंचा सकते हैं, और हस्बैंड आपकी जब हेल्प करने पे आता है तो शादी के बाद भी आप न जाने क्या क्या कर सकते हैं। आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, यानी कि आपने PhD की है, उसके बारे में बताइए।
1: देखिए नाम तो PhD मैंने की और डॉक्टर भी मेरे नाम के आगे लगा, लेकिन मुझे लगता है इसको करवाने में कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं भूल ही नहीं सकती। मुझे लगता है PhD मैंने नहीं, 3-4 लोगों ने मिलकर मुझे करवाया।
0: जैसे
1: पहला नाम तो मैं अपनी प्रिंसिपल मैम, जिनको मैं बड़ी मैम कहती थी, उस समय सब लोग बड़ी मैम ही कहते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है, और इस कॉलेज में जो मेरी पहचान है, मुझे लगता है उन्होंने एक अलग सा, जब मैं कह रही थी ना मुझे शुरू से प्यार बहुत मिला, तो वैसे ही यहाँ इतना प्यार मिला मुझे कि मैं यहाँ पर भी आगे बढ़ती चली गई। गोंडा शहर में अगर मैं पूछूँ उद्देश्यपूर्ण जीवन जो मिला मुझे, जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने ज्ञानस्थली ज्वाइन कर लिया और बड़ी मैम ने मुझे PhD कराने में पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा तुम इतना आगे बढ़ी हो और इतना कुछ कर रही हो तो तुम्हें PhD भी करना चाहिए, और उन्हीं की वजह से मैंने यहाँ PhD किया। उन्होंने कहा डॉक्टर UC दीक्षित LBS कॉलेज के हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे PhD करें आप किसके अंडर में, और UC दीक्षित सर को मैं थैंक्स बोलूंगी। उन्होंने डॉक्टर रामकल्प तिवारी सर जो मेरे गाइड सर हैं उनसे मिलवाया, उनका नाम सजेस्ट किया कि डॉक्टर रामकल्प तिवारी सर से UGC सर ने मिलवाया, और फिर उस समय रामकल्प तिवारी सर के घर में कई टीचर बैठे हुए थे और मेरा सारा रिकॉर्ड देखकर सब तैयार थे मुझे पीएचडी कराने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि वो बोले रामकलब तिवारी सर से कि दूसरे सर तुम ना कराओ तो मैं करा ले रहा हूँ अपने अंडर में, ऐसे। तो सभी लोग तैयार थे, तो मुझे गाइड उस समय भी 3-4 मिल रहे थे, लेकिन मेरे सर ने कहा ठीक है करना है। और रामकलब तिवारी सर ने जो मुझे पीएचडी करवाई, तो पहले तो शुरू में लगता था बहुत मेहनत करवा रहे हैं, मदद कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं ले, लेकिन जब कोई चीज आप सक्सेस हो जाते हैं, पूरी हो जाती है, तब आप जानते हैं कि पीछे था क्या। तब मैं कहती हूँ उन्होंने इसलिए मेहनत ज्यादा करवाई, कुछ नहीं बताया, ताकि मैं आज इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे अंडर में कोई आएगा तो मैं 10 पीएचडी अभी करा सकती हूँ अलग अलग टॉपिक पे।
0: क्या बात है, मतलब वो चीज आपने कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके सीखी।
1: और पहले मुझे लगता था गाइड सर है, कुछ बताते तो है नहीं, कुछ बताया
0: क्या है,
1: हाँ। और लेकिन वो अब मुझे लग रहा है, कहते ना कुम्हार ऊपर से चोट देता है और अंदर से सहारा लगाए रहता है।
0: सही बात,
1: ठीक वही हुआ।
0: क्या बात है,
1: सर ने मुझे बहुत मेहनत करवाई, बहुत ज्यादा काम करवाया, लेकिन सब कुछ मैंने अपने आप किया। और मेरी पीएचडी का जो थैंक्स है, एक मैं MSITM के सर हैं हसन सईद सर, उनको भी देना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरा सांख्यिकी का जितना भी पोर्शन मैंने खुद अपनी किया है फील्ड वर्क, और मेरी जो पीएचडी है वो जो है फील्ड वर्क है और एक्सपेरिमेंट बेस है, तो जो उसके रिजल्ट्स आए मैंने खुद निकाले हैं, उसकी उसकी पूरी सांख्यिकी गणना मैंने की। उसके लिए मुझे कंप्यूटर की जरूरत थी, तो कंप्यूटर मुझे MSITM में 4-4, 6-6 घंटे में बैठी रहती थी MSITM में, और पूरा वो कंप्यूटर मेरे नाम सहित सर कर देते थे कि जाइए आप करिए काम।
0: क्या बात है,
1: और वो वजह थी कृष्णा मैडम, क्योंकि वो कृष्णा मैडम को मानते थे इसलिए वो मुझे वो कंप्यूटर देते थे, और मैं पूरे 6-6 घंटे अपना जो है रिजल्ट खुद निकालती थी सांख्यिकी का।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात आपने की कि आपने अकेले पीएचडी नहीं की बल्कि 3-4 लोगों ने की है, और ये
1: और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत सहयोग,
0: जाहिर सी बात है अगर शादी के बाद
1: है तो। मेरे जो आंकड़े रहते थे मेरे हस्बैंड को पेज नंबर तक याद थे कि किस पेज नंबर पे मेरा कौन सा वहाँ पर डाटा लगा है, इतना ज्यादा वो इंटरेस्ट लेते थे मेरे काम में।
0: तो वो तो आप दोनों के बीच का रिश्ता था कि इतना ज्यादा अच्छा था, इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने पूरी तरह से तनबंधन से लग के कराया,
1: हमेशा फैजाबाद तक साथ रहे, जाना आना, शुरू में तो रोज साथ रहते थे, वहां तक जाते थे फैजाबाद रामकलब तिवारी सर के घर तक, उसके बाद मैं फिर अकेले फैजाबाद और गोंडा का रास्ता मैंने छोटा कर दिया चल चल के।
0: क्या बात ये भी एक फिलॉसफी है, बहुत अच्छी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रही ये स्टोरी आपकी जानने की कि आपने पीएचडी कैसे किया और आपने श्रेय भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और चूंकि अभी एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। लौटेंगे तो फिर हम बात करेंगे मैम के सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि आजकल की जो विकराल हो रही समस्याएं हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस्थली 99.6 एफएम गोड़ा शहर की धड़कन। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव मैम, जो कि एचओडी हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज। अभी चूंकि आपका हमने जिक्र किया था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है यानी मनोविज्ञान, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस कॉलेज में कब जुड़ी, क्योंकि आपने यहाँ पे इसी के लिए वैकेंसी थी मनोवैज्ञानिक।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसके लिए आप कब यहाँ से जुड़ी इस कॉलेज से?
1: जी 2004 में ही यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, ये सब्जेक्ट 2004 में आया और मैं कॉलेज में जब आई तो यहाँ पर वैकेंसी थी साइकोलॉजी टीचर की। एक टीचर यहाँ पर अपॉइंट हो चुकी थी लेकिन फिर उनकी कहीं जॉब लग गई थी, वो चली गई थी, फैजाबाद की थी प्रीति पांडे, और यहाँ पर वैकेंसी थी। तुरंत मेरे पास फोन आया, मैं यहाँ आ चुकी थी, मैम से मिल चुकी थी, तो मैम ने कहा रानी तुम रहती कहाँ हो? तो मैंने कहा पटेल नगर। बोली पटेल नगर में तो मैं भी रहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं यहीं पास में, और मेरी सिस्टर, मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी सगी बड़ी बहन यहीं पास में ही मेरे साथ रहती हैं, और बड़ी मैम और उनके यहाँ आना जाना रिश्ता भी है। तो जब उन्होंने मिलवाया मुझे बड़ी मैम से तो मैंने बताया पटेल नगर में ही रहती हूँ। फिर मैम का फोन आया और 2 अगस्त 2004 का दिन था जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और तभी से मैं यहाँ साइकोलॉजी टीचर। पहला बैच मैंने भी यहाँ पर पढ़ाया जो 101 स्टूडेंट, तो बहुत बड़ी चीज थी कि पहला बैच इतना बड़ा था, और धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया। साइकोलॉजी सब्जेक्ट का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ता चला गया, और बड़ी मैम ने भी जब देखा 85% बच्चों के मार्क्स आते गए, बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे, तो उन्होंने एज ए गिफ्ट मुझे यहाँ पर जो 15 नंबर कमरा नंबर 15 है वो मुझे एज ए गिफ्ट दिया बनाकर, कि ये साइकोलॉजी का लैब है जिसका फर्श भी टाइल्स, जिसके टेबल और चेयर भी उन्होंने माइका से लगाकर डैश मैचिंग, अलमारियां मैचिंग करके कहा ये तुम्हारा एक उपहार है।
0: क्या तो
1: यहाँ भी मुझे उपहार मिले।
0: वाओ।
1: मेरे गाइड सर जब रिटायर हो गए तो उन्होंने अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दी, सब कुछ दिया, और उसके बाद मुझे बुलाया और कहा कि मेरी जितनी बुक्स हैं मेरी वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो उन्होंने कहा इसकी हकदार तुम। उनके अंडर में बहुत से पीएचडी लोग कर रहे थे लेकिन मेरे सर ने सारी बुक्स राम कल्लब तिवारी सर ने मुझे दी।
0: क्या बात है।
1: और मैं अपनी बुक्स लेकर यहाँ कॉलेज आ गई। फिर उन्होंने कहा कि कॉलेज में रख रही हो तो फिर 4,000 रुपए मुझे दिए कि एक अलमारी खरीदना और अपने कॉलेज में ये बुक्स रख लेना।
0: वाओ।
1: तो यहाँ भी मुझे बहुत उपहार
0: सच में
1: मिले।
0: काफी मायनों में आप बहुत ज्यादा लकी साबित हुआ है, क्योंकि हर जगह आपको बहुत प्यार मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिला, और आज भी लगातार मिलता चला आ रहा है। अभी चूंकि आपके सब्जेक्ट का हमने नाम लिया मनोविज्ञान, तो सबसे पहले तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, मनो के साथ विज्ञान लगा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: इसकी क्या वजह है?
1: देखिए विज्ञान क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, मनो तो है मन और शरीर से युक्त प्राणी, तो मनोविज्ञान व्यक्ति को मन और शरीर से युक्त प्राणी मानकर ही स्टडी करता है कि मनोविज्ञान है क्या। वैसे तो शुरू हुआ था आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतन का विज्ञान, लेकिन उस सब से वो सक्सेस नहीं हो पाया। जब आया मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है तब ये आगे बढ़ा और उस पर अध्ययन शुरू हुए कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियर ये है कि व्यक्ति रो रहा है तो उसका वो रोने का व्यवहार, सो रहा है तो सोने का व्यवहार, सामान्य है तो सामान्य व्यवहार, अगर व्यक्ति एबनॉर्मल हो गया तो असामान्य व्यवहार, सेना में काम कर रहा है तो सैन्य विज्ञान, उद्योग में उसका अध्ययन करना है तो उद्योग विज्ञान। तो ये है क्या, उसका व्यवहार, व्यक्ति जो कर रहा है। विज्ञान ये मानता है कि कोई भी जो व्यवहार होता है बिना कारण नहीं होता, हर कार्य चाहे वो किसी को कोई मार रहा है, गाली दे रहा है, प्यार कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका एक कारण होता है, और यही है मनोविज्ञान की व्यवहार का विज्ञान है, तब जाकर ये सक्सेस हुआ। और सर्वमान्य परिभाषा ये कहती है साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर। अब बात आती है विज्ञान की, कि विज्ञान शब्द इसके साथ क्यों लगा है। तो वास्तव में विज्ञान होता क्या है? साइंस का मतलब होता है सच। जो सच है वो विज्ञान है, जो प्रमाणित करने योग्य है वो विज्ञान है। तो जो चीज सामने है सच, विज्ञान होता है सच्चाई। तो जो प्रमाणित किया जा सके, जो सच हो, जो विश्वसनीय हो, जो वैध हो, जिसको बार बार करे परिणाम वही आए, यानी बारंबारता हो, वो है विज्ञान। देखिए केमिस्ट्री कहती है H2O से पानी बनता है। तो दो अणु हाइड्रोजन के लीजिए और एक अणु ऑक्सीजन का लीजिए तो पानी बन जाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, ये सत्य है। इसको आप गोंडा में करें, चाहे लखनऊ में करें, चाहे अमेरिका में करें, यानी किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी वातावरण में आप H2O मिलाएं, पानी बन जाएगा,
5: सेम रिजल्ट आएगा,
1: सेम रिजल्ट आएगा। तो ठीक इसी तरह से विज्ञान क्या कहता है? व्यवहार। अगर मनोविज्ञान का व्यवहार है और वो प्रमाणित कर दे कि ये सत्य है, तो वो विश्वसनीय है, वैध है और बारंबार, यानी बार बार किया जाए परिणाम वही आए। तो मनोविज्ञान के जितनी भी प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो सत्य साबित हुए हैं, वो प्रमाणित हुए हैं, वो बार बार किए जा सकते हैं। तो उनकी जितनी बार भी वो की जाए, प्रमाण सत्य होता है। इसीलिए मनोविज्ञान विज्ञान है।
5: क्या बात है। तो आपने पहले तो विज्ञान को डिफाइन किया कि विज्ञान क्या है, और उसके बाद आपने ये बताया कि मनोविज्ञान यानी लोगों का जो व्यवहार है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि फिर इसके थ्रू हम कैसे पता करें कि कोई इंसान नॉर्मल है और कौन एबनॉर्मल है।
1: जी, इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं सामान्य और असामान्य का अंतर क्या है।
5: बिल्कुल बिल्कुल, सरल शब्दों में हम यही कहेंगे।
1: तो मैं ये बताऊंगी कि सामान्य और असामान्य में गुणों का कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके कुछ और क्वालिटीज हैं असामान्य जो लोग हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल गुणों का अंतर नहीं है, गुण की मात्रा का अंतर होता है। असामान्य जैसे एंजाइटी, चिंता की बात आ गई
5: जी,
1: तो चिंता सामान्य व्यक्ति भी करता है। तो अगर व्यक्ति चिंता न करे तो असामान्य कहा जाएगा कि इसको तो चिंता ही नहीं। इसका मतलब कोई कारण हो, यानी परिस्थिति हो और चिंता की जाए, तो वो चिंता सामान्य होती है और उसकी भी एक मात्रा होती है कि हाँ इसलिए चिंता की गई। लेकिन असामान्य चिंता वो चिंता होती है जिसका कोई कारण नहीं होता, कोई परिस्थिति नहीं होती और चिंता की मात्रा भी अत्यधिक होती है। ठीक इसी तरह से अगर डर है किसी को, माना ऊंचाई से डर है, तो कोई कहता है 2 मंजिल जाओ नीचे झांको तो डर लगता है, तो कोई कहता है मैं तो 5 मंजिल जाता हूँ नीचे झांकता हूँ तो डर लगता है, सामान्य सी बात है। तो कोई कह सकता है छत से नीचे देखो तो डर लगता है, सामान्य लगता है। लेकिन एक व्यक्ति आया और कहता है बेड से नीचे देखो और उतना ही डरे जितना 2 मंजिल से डरता है, यह
5: असामान्य है। सही बात,
1: बात आ गई मात्रा की, यानी न परिस्थिति है न मौका है और मात्रा अधिक है, ये है असामान्य। तो असामान्य और सामान्य की लिमिट वहीं पर हो जाती है जब बात ज्यादा हो जाती है।
5: क्या बात है, इतने आराम से आपने इस बात को समझा दिया कि मुझे भी और हमारे श्रोताओं को जो सुन रहे हैं आपको, उनको भी ये बात बखूबी समझ में आ ही गई होगी।
1: देखिए मैं समय समय पर आती हूँ अपने मनोविज्ञान में, जितने भी डिजीज हैं मैं चाहती हूँ श्रोतागण सुने और उनसे अवेयर हूँ। मैं डराना काम नहीं मनोविज्ञान का, जगाना है काम, कि जागो, खुद जागो और अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों सबको जगने दो, जगा दो, अवेयर कर दो, ताकि बचा जा सके।
5: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैम का जो आना होता है वो आना होता है ज्ञानस्थली लाइव प्रोग्राम में, जो कि आता है 12 से 1:30 बजे के बीच, जिसमें डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें मैम भी आती है और अपने जो सब्जेक्ट है उसमें कई सारे टॉपिक्स पे 1 by 1 लोग बातचीत करते रहते हैं। अभी एक बात होती है कि इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, और कहीं घायल हो गया, गिर गया तो भी जाता है। तो वो स्वास्थ्य जरूरी होता है, यानी आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। अगर शरीर अच्छा है तो फिर सब चीजें बेहतर होती है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की एक बात आती है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य पहले तो हमें ये बताइए कि क्या होता है, और दूसरी बात ये कितना जरूरी होता है।
1: देखिए जैसे शरीर में बीमारियां लग जाती हैं तो शरीर बीमार हो जाता है, ये तो सच है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि जब हमारा मन की स्थिति खराब होती है, तो जब हमारी मन की स्थिति अपने सामान्य जीवन में नहीं रह पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते, न घर में, न समाज में, ऑफिस में या पड़ोस में, किसी के साथ समायोजन नहीं बनता, तो वो स्थिति असामान्य हो जाती है। और मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी चीज है। इस समय आप देख रहे हैं लोग बीमार होते हैं तब तो वाकई डॉक्टर पास चले जाते हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो लोग अपनी बीमारी को छिपाने लगते हैं। उनके परिवार में ही अगर किसी को कोई मानसिक कष्ट है तो या तो ऐसे जादू टोना हो गया, ऊपरी फेर हो गया और कोई चौराहे नांग गए, इस तरह से पुरानी बातों को लेकर समय बर्बाद करते हैं जिससे रोग की मात्रा और बढ़ती जाती है। इसकी जगह अगर मनोचिकित्सक से मिलकर समय रहते उनका इलाज करवाया जाए, परामर्श ले लिया जाए तो बहुत जल्दी उनको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है।
5: तो आपने ये बताया कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है और उससे कितना ज्यादा जरूरी है इसका होना। तो सही बात है, किसी भी तरह की कंडीशन में आपको मनोचिकित्सक से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें हो गई, आपने बताया अपने सब्जेक्ट पे, अब मैं आप पे एक बार फिर से आता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी बात की जाए डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव मैम जी, तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है?
1: देखिए सबसे बड़ी चीज है सच्चाई और ईमानदारी मेरी। पहले तो मुझे लगता था मैं ऐसे कहूंगी किसी को कि मैं सच बोलती हूँ तो कोई क्यों मानेगा, सभी लोग ऐसे कहते हैं मैं सच हूँ। लेकिन आज इस उम्र पे आके मैं कह सकती हूँ इतना लंबा जीवन मेरा बीता, मैंने झूठ बहुत कम बोला। और यही मेरी पापा की सिखाई हुई बात है कि सच रहो, ईमानदारी से काम करो, फिर देखो कोई ताकतवर है ही नहीं तुमसे ज्यादा। वही चीज मेरी स्ट्रेंथ बन गई
5: और कहीं ना कहीं ये आपने अपनी जिंदगी में इसको उतार भी लिया और आज भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी लाइफ।
1: मैं अपनी स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, मैं साथ साथ नैतिक शिक्षा जरूर देती रहती हूँ कि जैसे सच्चाई की बात, ईमानदारी की बात, इसके अलावा नकल ना करना, परिवार में कैसे रहना है, थोड़ा सा कोई बुरी समय भी आए तो उसको सहन करना सीखो। जरूरी नहीं कि हमेशा सक्सेस ही हो, फेलियर को भी मानो कि फेल हो गए तो फिर से सक्सेस होंगे। इस तरह की बातें मैं अपनी क्लास में बच्चों से करती रहती हूँ। मेरा मानना है कि नैतिक शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा के साथ मेरी ये क्लास भी चलती रहती है और मुझे लगता है शायद मेरी बातों का प्रभाव बच्चों पर जरूर पड़ता है।
5: डेफिनेटली होगा। और शायद शब्दों में अगर कहा जाए तो आप जिंदगी के पहलुओं के बारे में उनको अवेयर करती हैं, जिंदगी में कैसे उनको जीना है, कैसे उनकी लाइफ बेहतर होगी, किस तरह से उनकी लाइफ आसान हो जाएगी, इस पे आप चर्चा हमेशा हर क्लास के दौरान करती रहती हैं। क्योंकि सब्जेक्ट भी जो होता है वो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होता है, और अगर महज

0: होना सीखो। जिस दिन संतुष्ट हो जाओ तो जो सामने है उसी में आनंद आता है, जो सामने है उसको एंजॉय करो। तो देखिए मुझे लगता है कि कम में ही खुश हो लेते हैं और बहुत अच्छा। जो लोग संतुष्ट नहीं होते मुझे लगता है वो दुखी रहते हैं। खुशी करने के लिए जीवन दूसरा नहीं मिलेगा, तो जो है उसमें खुश रहना सीखें, एंजॉय करें उसको। और यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आपको वो माहौल मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाए।
1: आपने एक बात बोल दी है कि खुशी के लिए कोई अलग से जीवन नहीं मिलने वाला है, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि बस यही एक जीवन है। और शायद ऐसे ही अगर हमको 50 और जीवन दे दिया जाए तो भी उसमें ऐसा ही होने वाला है, यानी हमको तब भी उसमें खुशी निकालनी ही पड़ेगी। अलग से कोई ऐसा जन्म होने ही वाला नहीं जिसमें सिर्फ खुशी खुशी हो। तो सेटिस्फैक्शन के लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीना होगा, जो आपको पहले से हासिल है उसके साथ आपको खुश होना होगा। शायद आपका कहने का मतलब यही है।
0: जी जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना अच्छा लगा आज आपसे बात करके। तो आपने चूंकि अपने लाइफ के बारे में बताया, अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, अपने करियर के बारे में बताया, ना जाने कितनी सारी बातें आज आपसे हुई और आपने उसका बखूबी आंसर दिया। अब चूंकि चलने का समय होने चला है, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ बोलना है या कुछ कहना है हमारे श्रोताओं से।
0: हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि मैं ज्ञानस्थली से जुड़ी और यहीं पर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ के श्रोतागण जो ये जाने कि ये कॉलेज जो है सबसे अच्छा कॉलेज क्यों कहा जाता है। इसके लिए भी मैंने देखा यूनिवर्सिटी में जब भी मैं गई, ज्ञानस्थली का एक अलग से, और उसका कारण है कि यहाँ नकल विहीन परीक्षाएं होती हैं। और मैं भी सबसे ज्यादा खुश इसीलिए हूँ इस कॉलेज में कि यहाँ नकल का नामो निशान नहीं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी लाइफ में सुना तो है कि नकल की जाती है, लेकिन न कभी की, न किसी कॉलेज में जहां रही ना वहां नकल हुई। और ये एक ऐसा कॉलेज है जहां एक भी स्टूडेंट नकल नहीं करती कभी, और यही इसकी पहचान है और यही ज्ञानस्थली का आकर्षण है। और मैं चाहूंगी कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आती है वो ये लेकर जाती है कि यहाँ नकल नहीं, सिर्फ पढ़ाई और ज्ञान लेकर जाएंगी जो उनको जीवन भर साथ देगा, उनकी पहचान बनाएगा और ज्ञानस्थली की भी पहचान हमेशा रहेगी ऐसी।
1: तो ये जो कॉलेज की वैल्यूज के बारे में आपने बताया बहुत ही अहम बात है कि ज्ञान लेके जाने का मतलब है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, यानी हर पहलू में आपका आगे होना, आपका अच्छा होना। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारा स्टाफ इसमें लगा हुआ है, कॉलेज भी आज उसको मेंटेन करता आ रहा है, जब से स्टार्ट हुआ तब से आज तक मेंटेन करता रहा, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना हूँगा। थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में
0: आज का दिन तो मेरे लिए भी बहुत खास आया।
1: बिल्कुल,
0: जो बचपन से लेके अब तक का मैंने सब कुछ बोला आपके
1: सामने। क्या बात है। तो ये हमारी
0: उम्मीद करती हूँ श्रोतागणों को कुछ न कुछ ये जो है आगे मोटिवेट करेगा।
1: बिल्कुल,
0: मेरी बात को वो जानेंगे
1: क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है ये चीजें मुमकिन की है आपने, तो ये नामुमकिन वाली बात ही नहीं है। तो उसको सुनने के बाद बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी, आइडिया मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं करके इसको कामयाब भी होंगे, ऐसी हमारी आशा है। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वंदना। थैंक
1: यू। तो अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि कल फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, कुछ नई बातों के साथ, उनके जिंदगी के पहलुओं को जानेंगे, उनके काम को जानेंगे। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य

0: एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: अच्छा बच्चों, एक बात बताओ।
3: जी सर।
2: अगर कोई स्कूल में बम रख जाए तो क्या करोगे?
3: तो क्या करना है, एक दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, वरना फिर अच्छे से लाके स्टाफ रूम में रख देंगे। और क्या,

0: कोटा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-1416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ भाई, बड़ी दूर से आए हैं और आपके लिए तो प्यार का तोहफा ही लेकर आए हैं। जी हाँ, इस प्यारी सी मॉर्निंग में, इसको मॉर्निंग ही कहेंगे भाई, इस प्यारी सी मॉर्निंग में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, नमन है। और आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। तो बहुत ढेर सारी बातें करनी है आपसे भाई। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन तो बहुत ढेर सारी बातें होती हैं, हमारी होती हैं, आपकी होती हैं, गुफ्तगू होती हैं। और जी, अब तो इस मौसम ने भी करवट कुछ बदल ली है। चलिए, और इस बदलते हुए मौसम में आप बताइए जनाब, आपके यहाँ लाइट आ गई या नहीं? फिलहाल पीने का पानी, जिसकी आदत पड़ चुकी है हम सभी को कि आरओ का पानी ही पीते हैं, और उन लोगों के साथ भाई क्या मसले हैं, इन सभी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आपकी प्यारी सी शाम में। जी हाँ, तो आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत भाई। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, और ये तोहफा आप सब कबूल कर लीजिए तो बहुत ही शानदार रहेगा। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए भाई, आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत और तब तक अगर हमको सुन रहे हैं तो भाई अपनी उपस्थिति जरा चैट बॉक्स में दर्शाइए कि हाँ आप हैं हमारे साथ, और अगर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अब आपके संदेश की, कि आपका संदेश हमको प्राप्त हो, हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं। और तब तक आप सुनाते हैं प्यारा सा गीत और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ, और अब आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत रफ़ी साहब की प्यारी सी आवाज़ में, और हम आपको पुकार रहे हैं और कुछ इस अंदाज से पुकारेंगे। हमारा तो भाई पुकारने का अंदाज यही है। अब देखते हैं कि ये पुकार आप तक पहुंचती है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं कि भाई हमारे इस मोहब्बत का असर, इस प्यार का असर आप तक पहुंचता है या नहीं। फिलहाल इस गीत के माध्यम से आपकी एक छोटी सी परीक्षा है, देखते हैं कितने लोग हैं भाई जो शुभ संध्या के साथ यहाँ पर हैं। तो आप सभी की प्रतीक्षा है, और फिलहाल ये प्यारा सा गीत हम डेडिकेट कर रहे हैं आपको, आपको पुकार रहे हैं। हमने आवाज़ आपको दी है बड़ी नाज के साथ, आप भी अपनी आवाज़ मिला दीजिए मेरी आवाज़ के साथ। ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए है।

0: जी हाँ, मैंने कहा था कि आवाज़ मैंने दूंगा, और वास्तव में हमारी आवाज़ पे कोई आया या नहीं आया ये तो अलग सी बात है। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी आ चुके हैं और हमारे साथ मैं शुभ संध्या, और आवाज़ मैंने दूंगा, आवाज़ दी भी नहीं, और हमारी को होस्ट आप सभी की जी, खजाना हमारे पास आ चुका है, हमारे पास पहुंच चुकी है निधि जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं निधि जी आपके ही कार्यक्रम गोंडा मैसेज मसाला में।
1: थैंक यू सर।
0: और कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया एकदम। मतलब आजकल क्या अच्छा कहा जाए, पिछले 3 दिनों से कुछ अच्छा हो रहा है। मतलब आपने कैंडल लाइट डिनर किया है? नहीं किया
1: सर, मत कहिए।
0: हाँ
1: किया है सर,
0: कैंडल लाइट डिनर किया।
1: आपने पहली बार कब किया?
0: हमने तो कई बार किया, हमने कल जो है वो ढेबरी स्पेशल डिनर किया। हाँ मतलब ढेबरी समझते हैं आप?
1: जी जी बिल्कुल समझते हैं।
0: तो मोमबत्ती भी समाप्त हो चुकी थी, तो ऐसी स्थिति से जो है वो कल एक नया आविष्कार हुआ, और ढेबरी के उजाले में लंच भी हुआ और डिनर भी हुआ।
1: क्यों सर, वो आपका यंत्र कहाँ था जो 24 घंटा आपके पास रहता है?
0: जी 24 वो डिस्चार्ज। वही तो बात है, मतलब क्या आपका जो यंत्र है वो डिस्चार्ज नहीं हुआ?
1: जी बिल्कुल हुआ था।
0: तो फिर मतलब चार्ज कैसे हुआ?
1: सर आपके पास 2 फोन रहता है, मैंने देखा है अक्सर।
0: नहीं मेरे पास सिर्फ 1 फोन रहता है, 2 नहीं रहता है।
1: जी हो सकता है।
0: तो ये बताइए, मौसम ने कुछ कहा, कैसा लगा फिलहाल? चलिए कुछ होता है ना डिजास्टर, जो आपदाएं होती हैं वो कभी कभी जीवन में आती हैं और जीवन को एक नया रंग देती हैं। तो आपने इस बारिश को, तूफान को, लाइट के जाने को कैसे इंजॉय किया?
1: सर मैंने इंजॉय किया और लोगों को देखा भी, उससे मैं ये समझी कि आप शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहें तो चलेगा, पर मानसिक रूप से आपको बहुत ताकतवर रहना चाहिए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, मानसिक रूप से बहुत ताकतवर होना चाहिए। मतलब कैसे तैयार रहें हम?
1: परिस्थितियाँ आपके विपरीत ही रहती हैं अक्सर, ऐसा नहीं होता आप जैसे चाहें। अब किसको पता था 3 दिन बारिश होगी, ऐसी विपदा आ जाएगी। हो सकता है किसी के घर में सब्जी रही हो, किसी के घर में ना रही हो, लाइट जाने के बाद जिसके घर में नल ना हो उससे पूछिए, और जिसके घर में चूल्हे पे खाना बनता रहा हो उससे पूछिए। और कुछ लोग बस पानी ना होने से परेशान हो जाते हैं, हमारे घर में लाइट नहीं है, ये नहीं है। बारिश हो रही थी, आपको भी इंजॉय करना चाहिए।
0: हाँ इंजॉय करना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है, इंजॉय करना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं इंजॉय भी तभी हो पाता है जब आपका पेट भरा होता है।
1: सर आपके पास कुछ ना कुछ रहा होगा खाने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कुछ ना रहा हो, बस आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत थी।
0: जैसे आपने क्या बनाया?
1: मैंने बनाया सब्जी, रोटी, चावल, मैंने सब बनाया। अगर हमारे पास कुछ भी ना होता तो मैं रोटी बना लेती, अचार के साथ खा लेती, ऐसा क्या था?
0: अच्छा क्या बात है, मतलब आपको संतुष्ट रहना चाहिए।
1: बिल्कुल संतुष्ट रहना चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, मतलब इस आपदा में आपने कहीं धैर्य नहीं खोया?
1: बिल्कुल नहीं खोया।
0: क्या बात है, तो क्या कुछ खास बनाया या सब सामान्य ही रहा?
1: वही बारिश में सर अक्सर क्या बनता है,
0: अब बारिश में पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं,
1: बस,
0: और सैंडविच भी अच्छे लगते हैं।
1: जी सर।
0: हाँ तो मतलब आपने क्या बनाया?
1: सर मैंने पकौड़ी बनाई।
0: क्या बात है।
1: समोसा बनाया जो थोड़ा टेढ़ा बना पर सीधा बना।
0: क्या बात है, मतलब आप, हमारे मुंह में पानी आ रहा है।
1: जी सर।
0: और उसके साथ चटनी भी बनाई होगी आपने?
1: नहीं सर,
0: चटनी नहीं बनाई आपने?
1: जी बिल्कुल नहीं बताए।
0: जी हाँ भाई, और धर्मेंद्र मोहन जी पूछे, निधि जी गुड इवनिंग और शुभ संध्या, आप कैसी हैं जरा बता दीजिए भाई।
1: धर्मेंद्र जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हाँ। बरसात के मौसम में आपने क्या किया, आपका फोन डिस्चार्ज हुआ कि नहीं?
0: हाँ
1: नहीं हुआ होगा तभी धर्मेंद्र मोहन जी हमें सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, नहीं हमको लगता है उन्होंने जुगाड़ लगा कर कहीं चार्ज किया होगा।
1: जी आपको सुनने के लिए अक्सर लोग आया करते हैं।
0: हाँ नहीं नहीं मतलब ये शो ही ऐसा है पुराने गीतों वाला, तो हमको लगता है धर्मेंद्र मोहन जी ने कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाया होगा कि किस तरीके से अपने को, कि 3 दिन किसी का फ़ोन डिस्चार्ज ना हो ये तो बड़ा असंभव सा लगता है।
1: जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो मतलब आपने इस 3 दिन को कैसे इंजॉय किया?
1: सर मैंने कुछ बुक्स ऐसी देखी अपने यहाँ जो मैंने शायद नहीं देखी थी।
0: अच्छा।
1: कुछ मेरे लिखे हुए नोट्स मैंने देखे, उसको मैं भूल चुकी थी कि कभी मैं इसको पढ़ती थी, ये सब फोन की वजह से। और कल मैंने शाम को देखा हमारे घर वाले अपनी लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे कि एक समय हमारे साथ ऐसा हुआ था, पता है, एक दिन ऐसा हुआ था, हम सोचे चलो कुछ तो अच्छा हुआ।
0: मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो 3 दिन थे इसमें घर वाले एक साथ बैठे
1: जी।
0: सभी के फोन डिस्चार्ज थे तो सभी के मुंह पर ताला लग नहीं सकता, लोग बातचीत कर रहे थे
1: जी।
0: तो बहुत दिनों के बाद लोगों को एक अपनेपन का एहसास हुआ कि एक परिवार है
1: जी। अपनेपन का एहसास हुआ और जो वास्तविक जरूरतें थी हमें वो दिख रही थी कि वास्तविक जरूरतें बस हमारी इतनी ही हैं और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो हमें ये चाहिए होता है, वो चाहिए होता है, सब चाहिए होता है, नहीं
0: मतलब। और यही अगर फोन अगर साथ में होता, हाथ में होता है, तो लोग अपने अपने फोन के साथ बिजी होते।
1: जी सर, अगर आपके घर में, घर आपका बड़ा सा है, तो आप किस कोने में होते हैं, आपके बच्चे किस कोने में होते हैं, आपकी बीवी कहाँ होती, पता नहीं।
0: हाँ, लेकिन सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए
1: जी।
0: अब चूंकि मोमबत्ती भी एक ही है तो चलिए एक ही कमरे में सब लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने मिलकर खाना खाया।
1: अगर किसी का फोन चार्ज भी है तो वो इसलिए नहीं देख रहा है कि डिस्चार्ज हो जाए।
0: ये हाँ, और इसके बाद चार्ज कैसे करेंगे, अगर बहुत जरूरी कॉल करनी हुई तो फिर कैसे कर पाएंगे।
1: हाँ, किसी अपने के पास कि वो सुरक्षित हैं, ठीक हैं, सही सलामत हैं, इसलिए
0: मतलब लोग डर के मारे फोन नहीं देख रहे थे
1: जी। बिल्कुल,
0: हमको लगता है ये अच्छी बात है,
1: बहुत अच्छी बात है सर। मुझे लगता है कभी कभी ऐसी आपदा आनी चाहिए, लोगों को जो चाहिए होता है, जो आपने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान,
0: हाँ,
1: वास्तविक जरूरतें इतनी ही है इंसान की, पर आजकल इंसान इतना परेशान है चीज़ों के लिए और उसी परेशान में वो अपना वर्तमान नहीं जी पा रहा है।
0: क्या बात कही, 100% की बात कही आपने कि वर्तमान को जीने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी आवश्यकताओं को कम करना पड़ता है
1: जी।
0: क्या बात है, तो आवश्यकताएं मतलब रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित होकर भी हम एक खुशहाल जीवन बिता सकते हैं
1: जी। बिल्कुल बिता सकते हैं,
0: और आपने बिताया
1: जी। बिल्कुल बिताया, मुझे लगता है ऐसी कोई समस्या नहीं है जो मुझे दुखी कर सके।
0: अच्छा, ये बात है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपको दुखी कर सके, मतलब अगर फोन आपका स्विच डाप भी हो जाए 2-3 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको।
1: बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है।
0: क्या बात है, हालचाल लेने वाले हालचाल लिया ही करेंगे
1: जी। हालचाल लेने वाले लोगों की संख्या सीमित है सर, इतनी नहीं है।
0: अच्छा, मतलब अपने आप को आपने काफी दायरे में समेट रखा है
1: जी। बिल्कुल,
0: क्या बात है भाई। हमारे साथ अमरेंद्र मिश्रा जी भी हैं। गुड इवनिंग निधि जी, भाई आप शुभ संध्या।
1: गुड इवनिंग अमरेंद्र जी।
0: हाँ भाई, बहुत ही प्यारे लोग निधि जी, और कुछ दिनों के बाद ये निधि जी ही संडे को
1: सर,
0: आपको
1: आपने मुझसे मेरा पूछ लिया, आपने अपना नहीं बताया।
0: अब अपना क्या बताएं, देखिए घर की कुछ स्थिति ऐसी थी कि कुछ चीज़ें एकदम ख़राब थीं
1: जी।
0: जैसे आरओ का पानी समाप्त हो गया
1: जी।
0: अब वो नल का पानी किसी को अच्छा ही न लगे, अब क्या किया जाए, तो वो आरओ वाला जो आता नहीं है 20 लीटर वाला
1: जी,
0: वो पानी बरस रहा था लेकिन भीगते हुए गए उसको लेकर के आए। फिर ये हुआ कि अब तलो पकौड़ी खाई जाए तो तला प्याज ख़त्म हो चुका था, जानकारी नहीं थी
1: सर। समस्या को देखने का नजरिया भी हो सकता है, मैं घर में उतनी जिम्मेदार नहीं हूँ जितनी आप हैं, आप हैं, तो समस्या को देखने का तरीका अलग अलग है। मेरे लिए जो बहुत नॉर्मल था वो आपके लिए बहुत टफ था।
0: नहीं, तक कुछ नहीं कठिन था, बस ये है कि बाइक उठानी थी, थोड़ा सा भीगना था और प्याज लेकर आना था, तो प्याज लेकर के चले आए। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था, प्याज लेकर चले आए
1: जी।
0: जब प्याज लेकर के चले आए तो ये हुआ कि बेसन जिस डिब्बे में रखा था वो मिल नहीं रहा था। अब ये हुआ बेसन नहीं मिल रहा है। अब समझ लीजिए, हम कल्पना कर रहे थे कि हम कुछ चंद मिनटों के बाद पकौड़ी खाने वाले हैं
1: जी।
0: तब तक आवाज आई, बेसन यहीं रखे थे लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया।
1: तो सर पकौड़ी बनी कि नहीं,
0: अब सोचिए आप। मैं तीसरी बार गया और बेसन लेकर के आया, हमने कहा पकौड़ी तो खाएंगे क्योंकि निधि जी वहाँ खा रही होंगी तो हम यहाँ खाएंगे। जो मुझको ये वाइब्स आ रही थी कि उधर पकौड़ियाँ खाई जा रही हैं, हमारी को होस्ट पकौड़ी खाए और हम न खाएं तो सोचिए ये अन्याय होगा।
1: सर आपको यूट्यूब खोलना था और कुछ देखना था, बिना बेसन की पकौड़ी कैसे बनाएं।
0: अच्छा ये बात है, मैंने बताया कि फ़ोन डिस्चार्ज था।
1: चलिए, मतलब आपने कभी ऐसा कुछ झेला ही नहीं है लाइफ में।
0: हाँ नहीं, झेला बहुत कुछ है लाइफ में, लेकिन अब क्या बताएं, इतना झेला है कि झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचा है। बस अगर आपको अपनी स्कूटी निकाल करके प्याज और बेसन दो बार लाना पड़ता जी, तो शायद आप उस पकौड़ी का दर्द समझती।
1: सर आप भूल रहे हैं, आप एक पुरुष हैं और मैं एक महिला हूँ।
0: लेकिन यहाँ तो नारी सशक्तिकरण की बात होती है, पुरुष और महिला में कोई अंतर ही नहीं।
1: सर आप बस, आपको कहा गया प्याज नहीं, आप प्याज लाने गए, मैं एक बार चेक करके जाती क्या नमक है हमारे पास, एक दिन का है तो मैं एक्स्ट्रा ला के रख लेती।
0: मतलब जिसने हमको समस्या बताई उसने सही ढंग से नहीं बताई।
1: नहीं सर, उन्होंने सही ढंग से, हो सकता है कभी हो गई
0: हो गलती। अब देखिए तुरंत जो है, हाँ नहीं नहीं वही बात है भाई जी। हाँ तो देखिए भाई, नारियां हैं जो हमेशा नारियों का ही साथ देंगी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ पुरुष हैं। और चलिए भाई, आपको भी खिलाते हैं पकौड़ी इस गीत के माध्यम से, और आप लौटते हैं।

0: जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी कव्वाली इस और इस शाम को इसने और खास बना दिया। और भाई आज हम बात करते हैं कुदरत की। आपने देखा कि समुद्र ने हल्की सी अपनी छवि दिखाई और हम छवि देखने के लायक नहीं रह गए। हाँ, और कहीं कहीं होता भी है। अच्छा, कुदरत में कई सारी चीज़ें हैं और मेरी को होस्ट निधि जी मौजूद हैं, तो आपसे पूछते हैं कि जो भी चीज़ आप प्रकृति की देखती हैं, कुदरत की, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है?
1: सर, धूप।
0: धूप मतलब गर्मी में अगर आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए एक घंटा तो बहुत अच्छा लगेगा।
1: नहीं सर।
0: हाँ,
1: पर जिस नज़र से आप गर्मी में देखते हैं उसी नज़र से आप उसको ठंडी में क्यों नहीं देखते?
0: हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी बात यह अच्छी लगती है, मतलब जो हमेशा अच्छी लगती हो।
1: सर, धूप ही है जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है।
0: मतलब गर्मी में भी?
1: जी बिल्कुल।
0: मतलब हमको लगता है कि जब आप छोटी रही होंगी
1: जी
0: और होमवर्क नहीं करती रही होंगी तो आपको क्लास के बाहर धूप में खड़ा किया जाता रहा होगा।
1: जी बिल्कुल नहीं, मुझे कभी ऐसी पनिशमेंट नहीं मिली।
0: तो मतलब धूप से इतना लगाओ क्यों? क्या कुछ धूप से कुछ ऐसी कोई बात है क्या?
1: सर, कभी आप उसकी किरणों को आते हुए देखिए, मतलब आप खिड़की के पास बैठे रहिए या कहीं ऐसे ऐसे सीधे धूप आ रही हो, जो उसकी किरणें होती हैं वो इतनी चमकीली और इतनी अच्छी लगती हैं, और जहाँ वो पड़ रही हों, कभी आप ध्यान से देखिए या कभी आपने देखा होगा।
0: हाँ।
1: कोई कोई लाइट आप देखते हैं तो वो आपको बहुत सुंदर लगती है, और एक धूप को देखिए कभी कभी ऐसा लगता है उसमें कई लाइट्स मिली हुई हैं।
0: हाँ, तो मतलब सात सूर्य के पास तो सात रोशनी है, ये विबग्योर के नाम से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तो मतलब धूप अच्छी लगती है
1: बहुत ज़्यादा
0: बहुत ज़्यादा। पेड़ के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: सर, पेड़ भी बहुत अच्छे होते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पेड़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है?
1: आम का सर।
0: आम का?
1: जी।
0: मतलब अगर उसके ऊपर कोई चीटी या माटा टाइप के लसे होते हैं वो आपके ऊपर कभी गिरे हैं, कभी काटा है उन्होंने आपको?
1: नहीं सर।
0: नहीं हुआ है?
1: नहीं।
0: अच्छा, आम के पेड़ पर चढ़कर आपने आम तोड़ा है?
1: सर, मैं चढ़ तो उस पर नहीं पाई, और पेड़ों पर मैं चढ़ गई पर वो बहुत मोटा होता है।
0: अच्छा, तो आम के पेड़ पर नहीं चढ़ पाई आप?
1: जी।
0: तो आम के पेड़ में क्या खूबसूरती नजर आती है आपको?
1: सर, उसका फल।
0: अच्छा, मतलब आपको आम का फल पसंद है?
1: नहीं सर, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है जब उसमें फल लदे होते हैं तो वो कितना झुका झुका सा रहता है।
0: ओहो,
1: इंसान के पास जब ऐसी कोई वो आती है तो वो कितना तन के घूमता रहता है कि मेरे पास इतने धन दौलत शोहरत आ गए। और पेड़ हमें सिखाता है कि जब आपके पास कुछ आए तो आपको बहुत झुक के रहना चाहिए।
0: क्या बात कही भाई, बहुत डीप बात कही। नमन तिदीक्षा फलोद्गमई, यानी जब पेड़ में फल आते हैं तो पेड़ की डालियां झुक जाती हैं। मतलब प्रकृति हमको सिखाती है कि जब आपके पास कुछ चीजें हों तो आपको और विनम्र हो जाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: मतलब झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है।
1: जी।
0: मतलब आप बहुत अच्छी बात कही आपने जी कि जब पेड़ में फल आते हैं तो पेड़ झुकते हैं और वो ये दिखाते हैं कि जब आपके पास कुछ होता है तो विनम्रता आपके पास होती ही होती है।
1: और वही टहनियाँ हवाओं में रह जाती हैं जिसमें थोड़ा लचीलापन होता है।
0: क्या,
1: जो तने रहते हैं वो टूट जाया करते हैं।
0: क्या बात है भाई, बहुत, किसी एक शायर का शेर है कि बड़ा मुश्किल ही सही अपना मिजाज बदल लो तुम, लचक जिनमें नहीं होती तने वे टूट जाते हैं।
1: जी सर।
0: तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी हम सीखते हैं पेड़ों से।
1: जी।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब पेड़, और वो भी आम का, और इसलिए अच्छा क्योंकि जो उसमें फल आए तो वो झुके।
1: जी।
0: फूलों से हम क्या सीख सकते हैं?
1: सर, फूल कभी कभी उसको देख के ही बहुत अच्छा लग जाता है। आपको कौन सा फूल पसंद है?
0: मुझे मुझे अशोक का फूल बहुत पसंद है।
1: वैसे अशोक का फूल मैंने देखा नहीं, पेड़ देखा है।
0: हमने भी नहीं देखा, बस खाली कल्पना की है।
1: जी।
0: मतलब बहुत अच्छा होता होगा। असलियत में इंग्लिश के टर्म में एक चीज़ है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। मतलब जिन चीज़ों जिन आवाज़ को हमने सुना वो मधुर होती हैं और जिसको नहीं सुना वो और मधुर होती हैं। तो हमने सोचा कि जिसको हमने देखा है वो तो खूबसूरत होगा ही, जिसको नहीं देखा है वो शायद
1: और ज़्यादा खूबसूरत
0: हो। फिलहाल आपको कौन सा फूल पसंद है?
1: सर मुझे वाइट रोज बहुत ज़्यादा पसंद है।
0: वाइट रोज मतलब सफ़ेद गुलाब, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ
1: शांति का प्रतीक।
0: ओहो क्या बात है, मतलब फूल आपको इसलिए अच्छे लगते हैं ताकि क्योंकि उनमें शांति होती है।
1: शांति होती है और फूल आपके हर अवसर पे काम आते हैं, शादी ब्याह हुआ, आपके घर में कोई पूजा पाठ है, आपने किसी को प्रपोज किया, किसी ने आपको प्रपोज किया, कुछ भी छोटा छोटा, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, शादी है, आपका घर फूलों से सजा होता है। और जैसे फूल महकते रहते हैं आपका जीवन भी वैसे ही महकता रहता है। कभी बाग में जाइए फूलों से भरे, आपका मन वैसे ही महक जाता है।
0: क्या बात है, मन क्यों महका दे महका आधी रात को, क्या बात है। मतलब फूलों से की तरह इंसान की अगर जिंदगी भी महक जाए तो वास्तव में बहुत खूबसूरत बात होती है।
1: जी सर
0: क्या बात है, एक एक कुदरत की किन किन चीज़ों को आपने कितने करीब से देखा। चंद्रमा कैसा लगता है आपको?
1: बहुत प्यारा लगता है।
0: कब?
1: रात में।
0: नहीं मतलब रात में से होता ना, रोज घटा बढ़ा करता है।
1: जी सर।
0: तो कौन सा चांद है, किस दिन का चांद है जिस दिन आपको बहुत अच्छा लगता है?
1: अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी थी, उस दिन का चांद आपने देखा था?
0: नहीं नहीं देखना चाहिए।
1: पर मैंने देख लिया था सर, तो फिर क्या कर सकते हैं। मैंने देखा, मतलब एक चांद था उसके नीचे जैसे एक तारा था।
0: हाँ?
1: वो देखने के बाद इतना सुंदर, मैंने दो बार देखा, बाद में दूसरे दिन मुझे पता चल रहा है नहीं देखना चाहिए।
0: हाँ, मतलब लोग कहते हैं चौथी का चंदा नहीं देखना चाहिए।
1: अब वो चाहे जब का हो मैंने देख लिया है। और चांद मुझे अक्सर इसलिए अच्छा लगता है, मैं रात में खिड़की के पास, अक्सर मेरे रूम में खिड़की है, मैं बैठती हूँ तो चांद को देखती हूँ, उसको देख के बहुत मन में कल्पना आता है ये चांद कितना अकेला है, इतना दूर है, कैसे रहता है, हर मौसम में यहीं रहता है मेरी ही खिड़की पे।
0: आहा क्या बात है। अच्छा जो चंद्रमा को हम लोग मामा क्यों कहते हैं, चंदा मामा?
1: सर कई पोएम हम लोग पढ़े होते हैं शायद इसलिए।
0: नहीं मतलब हम ये सोच रहे थे कि वास्तव में चंद्रमा को कोई और नाम दिया जा सकता था। मामा जो रिश्ता बनाया चंद्रमा के साथ हम लोगों ने, उसकी कोई ना कोई तो वजह होगी।
1: सर हमारे मामा भी चांद इतने प्यारे होते हैं।
0: अच्छा नहीं हमको तो लगता है कि मामा जो दो माँ के बराबर प्यार करे उसे हम मामा कहते हैं।
1: तो चांद भी हमारे शायद दो मामा के बराबर है।
0: हाँ लेकिन चांद को मामा किस लिए कहते हैं पता है?
1: नहीं सर आप बताइए।
0: क्योंकि हम धरती को माँ कहते हैं और धरती और चंद्रमा आपस में भाई बहन है, तो जो माँ का भाई होगा वो क्या होगा?
1: मामा।
0: हाँ तो इसलिए हम चांद को मामा कह देते हैं। अब चांद को मामा कहना समझ में आया, लेकिन ये बंदर मामा सुना होगा ना, बंदर मामा पैंट पजामा।
1: जी सर।
0: सोचिए मतलब बिल्ली को। अच्छा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न दिमाग में आ रहा है, चंदा को मामा कह दिया चलिए कोई बात नहीं, बंदर को मामा कह दिया, ये बिल्ली को मौसी क्यों कहा गया?
1: सर उसका भी कोई रिश्ता होगा जी।
0: अब जरा सोचिए सोचिए सोचिए, मतलब हम मौसी को
1: ये हमारे लिसनर के ऊपर छोड़ते हैं सर।
0: हाँ नहीं नहीं मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरा रख कर देखिए, बहुत अच्छा इसका उत्तर मिलेगा आपको।
1: बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं? मौसी तो बहुत प्यारी होती हैं, बिल्ली को मौसी से जोड़ना सर ये मुझे नहीं समझ आ रहा।
0: नहीं समझ में आया ना?
1: जी नहीं।
0: देखिए जब एक पुरुष का विवाह होता है
1: जी,
0: तो एक बार की बात है कि एक शेर की शादी हो रही थी, तो जब शेर की शादी हो रही थी तो गाना वाना बज रहा था, तो एक चूहा बहुत खुश था जी। तो लोगों ने उससे पूछा कि यार शादी शेर की हो रही है तुम इतने खुश क्यों हो? तो उसने उत्तर दिया कि विवाह के पूर्व मैं भी शेर ही था। मतलब आप समझ गए होंगे कि विवाह के पश्चात जो शेर होते हैं
1: जी,
0: वो क्या हो जाते हैं, वो चूहे हो जाते हैं। रीज़न जो सामने वाली आती, देखिए 150-200 लोग बारात लेने जाते हैं, उधर से जो है वो लक्ष्मी बाई अकेले चली जाती है।
1: जी सर,
0: अच्छा सोचिए कल्पना कीजिए, हम तो खाली सोच कर डर जाते हैं कि 100-150 व्यक्ति हमको लेने आए और हमको अकेले जाना हो उस घर में जिसके बारे में हमको कुछ न पता हो तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन ससुर जी जब चलती है, जब विदाई का समय होता है, तो दूल्हे से कहते हैं बेटा ख्याल रखना
1: जी, तो वो कहते हैं अपना ख्याल।
0: हाँ, मतलब हमारी बेटी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तुमको दिक्कत में डाल सकती है। तो मतलब उसमें अपना शब्द जो है वो साइलेंट हो जाता है
1: जी।
0: तो जब पत्नी घर पर आ जाती है
1: जी,
0: तो पति को पता चलता है कि शेरनी किसको कहते हैं। और आप जानती हैं कि जो बिल्ली की प्रजाति है वही शेरनी की प्रजाति है, ये लोग कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं
1: जी, जी।
0: तो चूंकि घर में शेरनी है इसलिए बाहर जो उसकी बहन है उसे हम
1: बिल्ली मौसी
0: है, मौसी कहते हैं, क्योंकि शेरनी अंदर होती है और बिल्ली
1: बाहर।
0: तो अच्छा, सूरज हमको क्या सिखाता है?
1: सूरज सिखाता है कभी कभी आप जितना गर्मी में तेज आपकी किरणें होती हैं, ठंडी में उतनी सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि कभी कभी आप जितना गुस्सा होते हैं उतना आपको कभी कभी नर्म हो जाना चाहिए। आपके अंदर जितनी गर्मी है उतना आपको सॉफ्ट भी रहना चाहिए।
0: क्या बात है, मतलब। और सूर्य से जो मैं सीखता हूँ वो ये सीखता हूँ कि उदेत सविता ताम्र ताम्र वास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। अर्थात जब सूर्य उगता है तो भी लाल रंग का होता है
1: जी,
0: और डूबता है
1: तो भी
0: लाल रंग का। हमको सिखाता है सूर्य की जो महापुरुष होते हैं उनकी स्थिति सुख और दुख में
1: सेम रहती है,
0: एक समान होनी चाहिए, ये महापुरुषों का लक्षण है। तो सूर्य से हम ये सीख सकते हैं। और वास्तव में अगर कभी सूर्य को घमंड हो गया कि हम बहुत
1: तेज
0: जलते हैं, तो वहाँ पर एक पंक्ति आती है कि कत तुम अपना कितना ही ऊंचा क्यों ना उठाओगे, कत तुम अपना की कितना ही ऊंचा क्यों ना उठाओगे, जो आसमान है उसे कभी छू ना पाओगे, इस तेज रोशनी पर इतना गुरूर क्यों, सूरज हो ये सच है मगर डूब जाओगे
1: जी। बिल्कुल,
0: तो कोई भी सूर्य चाहे जितना चमके उसको एक ना एक दिन अस्त होना है, और लेकिन अस्त होने के बाद एक अच्छी बात यह है कि वो फिर उगता है। हमारे साथ धर्मेश त्रिपाठी जी हैं, भाई जी प्रणाम करते हैं आपको। सोनिया तिवारी जी हैं, हेलो एवरीवन, जी हाँ हेलो आपको भी। और नागेश्वर धाकर जी हैं, गुड इवनिंग आज जी मनुसर जी। और हमारे साथ हमारी को होस्ट है नागेश्वर जी, जिनका नाम निधि है। सबकी आवश्यकता, मतलब सबको खजाना चाहिए होता है। और किस दिन का चांद? गणेश चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए, कहा जाता है कि इसको अगर आपने देखा तो आपके ऊपर लांछन लगते हैं, सो कॉल्ड, ये जनश्रुति है।
1: जी बिल्कुल,
0: लोग अगर भगवान कृष्ण ने भी देखा था लोग बताते हैं, तो उनके ऊपर भी लांछन लगा था। तो भाई बिल्ली को मौसी को कहते हैं, ये तो हमने आपको उत्तर दे दिया, क्योंकि दोनों बहनें एक तो शेर दूसरी सवा शेर है। छोटी बहन की शक्ल अगर बिल्ली से मिलती होगी तो भी बिल्ली को मौसी कहा गया होगा। जी हाँ, हमारे साथ यही है भाई। और इसके पश्चात हम निधि जी हैं और जुगल किशोर वर्मा जी हमको सुनते हैं। भाई शुभ संध्या मनु जी, और आपको घर जाना है कि नहीं आज? देखिए देखिए, श्याम नाम की पगली माता जी चरण स्पर्श करते हैं, ये हमको डरवा रही हैं
1: जी, जी।
0: ये कह रहे हैं मतलब हम अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी पत्नी शेरनी है
1: जी, जो सर के बाहर रहने में पूरे घर को
0: सुरक्षित रखती है। मतलब हमने तो तारीफ किया, मतलब घर जाना है कि नहीं? मतलब हम तो हमेशा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, नारी शक्तिकरण चल रहा है। तो माता जी मतलब मैं प्रशंसा कर रहा हूँ और आप सभी की प्रशंसा करता हूँ। देखिए भाई, और श्याम नाम की पगली श्रीमती सुमित्रा गोयल जी हैं, और नागेश्वर धाकर जी ने भाई आपको नमस्ते कहा है। नमस्ते
1: जी, नमस्ते
0: जी। हाँ, तो चलिए भाई, आप सभी का नमस्कार स्वीकार कर लिया हमने, और आपको फिर ले चलते हैं गीतों की दुनिया में। तो क्यों ना एक प्यार सा गीत सुना जाए?
1: जी सर, बिल्कुल सुना जाए,
0: बिल्कुल सुनते रहिए। और रेडियो गणेश 89.6 एफएम, ये है गोंडा
1: शहर की धड़कन।
0: हम नहीं सुधरेंगे
1: जी, बिल्कुल नहीं।

0: हाँ, तो बड़ा प्यारा गीत बजा निधि जी।
1: जी सर।
0: जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
1: जी सर, बिल्कुल।
0: क्या लगता है आपको कि ये गीत किसने लिखा होगा और कब लिखा होगा?
1: जिसने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा होगा उसी ने लिखा होगा।
0: जिसने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा होगा उसने लिखा होगा।
1: जी।
0: मतलब किसने बहुत नजदीक से देखा होगा?
1: सर, दिखती सबको है पर सब देख नहीं पाते हैं। जब देखने का समय आता है तब उनकी तलाश पूरी हो जाती है और वो चले जाते हैं।
0: नहीं, जैसे कहा जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ऐसा कब होता है?
1: सर, हर इंसान तलाश में उसके पास ही चला जाता है। आप उठते हैं, मतलब आप जीवन की शुरुआत होती है, आप पढ़ते लिखते हैं, आपको लगता है जीवन अच्छा होगा, आप अपने लिए जीते ही नहीं हैं और मौत के इतने पास चले जाते हैं।
0: अच्छा, हमको लगता है जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
1: जी।
0: अगर ये गाना आपको बजाना हो तो कहाँ बजाएंगी, किस मौके पर?
1: सर, मैं तो जहाँ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होगा
0: वहीं बजाएंगे ना।
1: जी।
0: अच्छा, आप मुझसे पूछिए कि हम ये गाना कहाँ बजाएंगे।
1: सर, आप कहाँ बजाएंगे?
0: हम ये गाना विवाह में तब बजाएंगे जब दूल्हा दुल्हन के गले में जयमाला डालने वाला होगा।
1: सर, गलत कर रहे हैं, तब टूट सकता है जब सिंदूर लग चुका हो।
0: हाँ, सिंदूर लग चुका हो
1: जी।
0: और इसके पश्चात जो है वो दूल्हे को एहसास हो जाता है कुछ दिन के बाद।
1: ऐसा इतना भी बुरा नहीं होता है सर।
0: नहीं, तो इतना मतलब बुरा होता है?
1: लड़की की तरफ से भी आप ऐसा सोच लीजिए।
0: अच्छा, तो लड़की की तरफ से क्या सोच लें? मतलब लड़की बारात लेकर आई है, बारात लड़का लेकर गया है,
1: मतलब लेके भी जा रहे हो, ला भी रहे, ऊपर से ऐसा पछतावा भी हो रहा है कि हमने बहुत गलत किया है।
0: नहीं नहीं,
1: कैसे?
0: गलत की बात नहीं है यहाँ पर, मतलब अब ये हो गया ना कि अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ऐसा कुछ। मतलब मुझे सिचुएशन बेस्ड गीत है ये, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। ये एकदम सिचुएशन तभी फिट बैठती है जब एकदम सिंदूर दान होने वाला होता है
1: और लड़की जब घर पहुंच जाए तब वो बजाती होगी।
0: हाँ, मतलब तब वो बता देती है कि ये गाना बजना चाहिए, आप क्यों नहीं?
1: नहीं सर, वो लड़की को भी ऐसा महसूस होता है कि मैं जितना अच्छा सोच समझ रही थी उतना अच्छा कुछ नहीं, अब तो मौत ही निश्चित है।
0: ओह, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विवाह के पश्चात लड़कियों की स्थिति ज़्यादा खराब होती है।
1: सर, विवाह से मुझे आया ये जो जेंजी जनरेशन है
0: जी,
1: सबसे मतलब ज़्यादा लोग यहाँ जो रहेंगे वो विवाह नहीं करेंगे, एक सर्वे के हिसाब से पता चला है
0: जी। वो लोग कहते हैं कि विवाह नहीं करना है, फिर उसके पश्चात एक उम्र आती है, लोग कहते हैं कि भैया कुछ तो ख्याल करो।
1: वो सर, मैं समझ रही हूँ बात को, पर ये सत्य भी है कहीं ना कहीं, लोग अकेले रहना चाह रहे हैं। मतलब हम आप अभी ऐसे चर्चा कर लिए गाने पे, पर हमें आपको पता है कि ये बहुत पवित्र रिश्ता होता है।
0: हाँ, हाँ,
1: ये मतलब हम लोग का
0: वो तो जोक्स अपार्ट, मतलब हाँ,
1: पर आपने देखा होगा मतलब शादी को अब लोग बहुत ऐसे ले रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए, पर जीवन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, शादी विवाह करना चाहिए।
0: हाँ,
1: और
0: शादी
1: जो आज की जनरेशन है वो नहीं करना चाह रही है ऐसा।
0: नहीं, नहीं, आज की जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, मुझको तो लगता है। देखिए, अपने यहाँ हमारे यहाँ साक्षी जी एडिटर थी, अभी हाल ही में उनका विवाह हुआ
1: जी,
0: और आपके सामने मतलब देखिए श्वेता जी थी, उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, तो मतलब लोग विवाह तो कर ही रहे हैं, मतलब ये सामाजिक प्रथा कहाँ टूट जाएगी? जो
1: सर, वो सर्वे गलत नहीं थी।
0: नहीं नहीं, वो सर्वे रहा होगा, लेकिन देखिए इंफॉर्मेशन बेस्ड हम बात करें या फिर फैक्ट बेस्ड बात करें तो सत्य ये है कि वो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, बट आगे एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि अभी आपसे मैं पूछूं कि आपको विवाह में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो आप कह देंगी क्या, आपका उत्तर क्या होगा?
1: बिल्कुल है,
0: बिल्कुल है ना, तो मतलब देखिए अब आपका है। तो ऐसे ही लोग बाहर से बोलते हैं कि नहीं नहीं विवाह नहीं करना है।
1: नहीं सर, पर ये भी है जहाँ हम लोग जैसे माहौल में रह रहे हैं।
0: हाँ?
1: कुछ लोग, चलो किस लोग का मन है नहीं कर रहा है, कुछ लोग समाज को देख के कर लेते हैं कि समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, और चलो एक लड़के ने नहीं की तो कोई बात नहीं, पर किसी एक लड़की ने नहीं की तो वो समाज के लिए बहुत बड़ा पाप हो जाता है। हालांकि समाज ना हमें देख रहा है, ना हमारा खर्चा देख रहा है, ना कुछ कर रहा है। अगर मैं भी कह रही हूँ हाँ इंटरेस्ट है, तो मेरा भी कहीं है कि ये समाज।
0: हाँ, हम आपको बताएं कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री भी नहीं वो, और नाम नहीं लेंगे लूँगा मैं, और उन्होंने जो है विवाह नहीं किया, किरण बेदी ने नहीं किया विवाह, तो मतलब ऐसा नहीं था कि समाज उनके पीछे पड़ गया कि नहीं नहीं नहीं आपको शादी करनी ही करनी है।
1: समाज लड़की को लड़के को बहुत अलग नज़र से देखता है सर। कभी एक लड़का जो है वो जॉब नहीं कर रहा है, उसने शादी नहीं की, तो ये हो जाता है चलो नहीं की, किसी लड़की की ज़िंदगी नहीं ख़राब हुई, आती तो कैसे रहती।
0: हाँ।
1: अगर वही लड़की नहीं कुछ कर रही और उसने शादी नहीं की, तो उसको बहुत पॉजिटिव में नहीं लिया जाता है।
0: लेकिन अब समय आ गया है कि लोग पॉजिटिव मिलेंगे। और नागेश्वर लिखते हैं, भाई सर जी हम उम्मीद करते हैं कि अगली आरजे निधि जो होंगी हमारी ज्ञानस्थली की, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, कार्य में वो गुण होते हैं वो सब दिख रहा है, कंग्रेचुलेशंस। देखिए भाई आपको शुभकामनाएं,
1: धन्यवाद।
0: देखिए भाई आपको शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारी बहन जी हैं गीता जी, शुभ संध्या जी। जी जी हाँ, आपको भी प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श है। और कैसी हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी होंगी। गीत बहुत अच्छा लगा आपको। जिंदगी के सफर में हम कहाँ आ गए, मौत दरवाजे पर खड़ी और हम अंदर आ गए, छुप जाने से मौत टलती नहीं, मौत से पहले कभी मौत आती नहीं। नागेश्वर धाकड़ जी, अगर आप विवाहित होंगे तो आपने बिल्कुल बारात लेकर आप गए होंगे और आपको इस गीत का एहसास वहाँ हुआ होगा। और सर जी फिर तो शादी की जगह हम पहले आपको पिटिंग, हर मुसीबत के ढोल के साथ। ये नागेश्वर जी आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब हम आपके शुभ चिंतक हैं। मतलब अभी तक आप अगर अविवाहित हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन के बाद खुशी आपसे रूठ जाएगी। और सर जी का क्या कहना है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। ये देखिए ये 100% की बात ही है, ममता की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ममता, ये ममता कौन है भाई, जरा हमको बताइए भाई। ममता, आप किसी ममता को जानती हैं नागेश्वर जी, किसी ममता की बात कर रहे हैं
1: सर? हो सकता है वही जानते हो, मैं नहीं।
0: हाँ भाई, और लिखते हैं कि हाँ मुसीबत को तो ढोल बाजे के साथ अंदर लाते हैं। देखिए ये ऐसे पुरुष हैं, बताइए, जो मुसीबत आप अपनी पत्नी को मुसीबत कहें या होने वाली पत्नी को मुसीबत कहेंगे आप?
1: ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, ऐसे हाँ। मतलब कोई महिला भी कह सकती है कि इस मुसीबत को मैंने 9 महीने पाले थे।
0: हाँ ये बातें, खैर देखिए इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो तो माँ का जो रिश्ता है वो तो खैर कोई रिश्ता उसके बराबर हो ही नहीं सकता।
1: जी बिल्कुल सर,
0: क्योंकि बाकी लोग इस दुनिया में हमको तब जानते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं, लेकिन हमारी माँ हमको तब से जानती है जब हम उसके गर्भ में रहते हैं।
1: जी सर बिल्कुल सही तो कहा आपने।
0: कहा भी गया है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, जब उठाया माँ ने गोद में तब आसमान छुआ। तो वास्तव में माँ का तो खैर उस पाकीज़े रिश्ते की तो हम तुलना किसी दूसरे रिश्ते से कर ही नहीं सकते हैं, मतलब हम तुलना भी कर सकें। और हमारे साथ एक्स कुमार जी बहुत दिन के बाद दिखाई पड़े हैं। ए आरजे मनु जी, हाँ हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सर अभी अभी आपने बोला कि हम उसका नाम नहीं लेंगे और एक प्रधानमंत्री रह चुकी है। जी हाँ भाई, अब आप जानिए, मतलब आवश्यक नहीं है कि लोग कहते हैं हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी महिला का लात होता है।
1: नहीं सर, हाथ होता है।
0: अच्छा नहीं, हमने जब अच्छा ये हमने सुना जब ये कि हर कामयाब पुरुष के पीछे, तो हमने कुछ कामयाब पुरुष की लिस्ट तैयार की। तो नंबर एक पर हमारे बहुत पसंदीदा कवि हैं तुलसीदास जी।
1: जी
0: तो पहले हमने उनको पढ़ा, तो जब उनको पढ़ा तो ये समझ में आया कि जब उनकी पत्नी ने, आपको पता होगा यही बारिश थी और
1: जी,
0: वो हाँ अपने घर से निकले और लाश को जो है वो मान लिया कि नौका है और चले गए। तो वहाँ पर पत्नी ने हड़काया कि अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी जो रघुनाथ में हो न तो भोबीत, इस हाण मार्ग के शरीर से इतना प्यार है, अगर इतना प्यार राम से किया होता तो ज़िंदगी बदल जाती। तो मतलब वहाँ से फिर तुलसीदास बहुत कामयाब इंसान बन कर लौटे, एक महान कवि बने। उसके पहले वो महानता नहीं थी। फिर मैंने जॉन कीट्स को पढ़ाया, उनकी सबसे अच्छी कविता तब आई जब उन्होंने, फैनी ब्राउन ने जो उनकी बिलब्ध थी उसने ये कहकर मना कर दिया कि आप हमसे लंबाई में कुछ इंच छोटे हैं। तो मतलब हमने ये देखा कि इस दुनिया में जो पुरुष हैं उन्होंने जब कालिदास बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो तो बताइए, मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति की जिस पेड़ पर बैठे थे उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे, और विद्योत्मा का ये प्रण था कि वो उस व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उनको शास्त्रार्थ में पराजित करेगा। वहाँ पर भी विवाह तो हो गया, लेकिन जब ये पता चला कि कालिदास मूर्ख हैं तो उन्होंने उनको लात मार दी। उसके पश्चात कालिदास ने कहा ठीक है अब मैं पढ़ लिख कर दिखाऊंगा। तो मतलब ये जितने कामयाब लोग रहे, टाटा साहब की बात करें, हम तो इंग्लैंड में रहते थे, किसी के साथ अफेयर था, ये वह शादी आप ही से करेंगे, अब लौट करके आए तब तक वो गए तो विवाह हो चुका था, फिर उन्होंने भी विवाह नहीं किया। तो मतलब जो रामदेव बाबा जी हैं इनको मैं देख रहा हूँ, तो इस दुनिया में मुझको जो कामयाब पुरुष दिखाई दे रहे हैं उनमें ज़्यादातर संख्या ऐसे लोगों की है जिनको या तो पत्नी से लात पड़ी
1: जी,
0: और या तो पत्नी का कोई चक्कर ही नहीं रहा। तो हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी महिला का लात होता है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं?
1: इस बात से सर सहमत नहीं, हाथ होता है, इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ।
0: अच्छा, कोई ऐसा पुरुष बताइए जिसकी कामयाबी के पीछे उसकी पत्नी का हाथ हो।
1: सर ज़्यादातर पुरुष देखिए मतलब अक्सर होता है कि अगर उसकी प्रेमिका है तो उसको पत्नी बनाने के लिए वो इतना प्रयास करता है कि लाइफ में जब तक वो कुछ अच्छा कर ले वहाँ कोशिश करता है, या कभी होता है कि ऐसे पुरुष की शादी हो जाती है किसी पत्नी से तो उसके लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता है कि इसे जीवन में सुख सुविधा देनी है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा अगर कोई लड़का कुछ नहीं कर रहा होगा उसके शादी के पश्चात वो बहुत कुछ कर लेता है।
0: हाँ, मतलब हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने उधार लेकर के जो है वो अपनी पत्नी को, प्रेमिका को जलेबियाँ खिलाईं, फिर उनसे उनका विवाह हो गया और इस समय गोंडा में उन्होंने जलेबी की बहुत बड़ी दुकान भी खोल ली है।
1: वाओ सर, अब आप खुद हाँ, देख सकते हैं।
0: अब इसके पश्चात मैं, हमारे एक दूसरे मित्र हैं, उन्होंने भी प्रेम विवाह किया तो पत्नी के साथ बैठकर वो झील में कंकड़ डालते थे, तो वो कंकड़ जो झील में पड़े हुए थे आजकल दाल में आ रहे हैं। जिन
1: कैसे दाल
0: में, मतलब दाल में कंकड़ आ जा रहा है और क्या, बीन नहीं पा रहे हैं कायदे से। जिस कहते थे कि जिस जुल्फों की छाओ में मैं जिंदगी की शाम कर लूँगा, अब वो बाल अगर कहीं रोटी में निकल आता है तो बवाल हो जाता है। तो मतलब पत्थर फेंके गए, कंकड़ फेंके गए, और वो एक बहुत ही पत्नी ने जो है वो प्रेमिका के सर में गोद रखकर, प्रेमी लेटा हुआ, तो उसने कहा तुम क्या चाहते हो
1: जी?
0: तो उसने कहा मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारी इन हसीन जुल्फों के नीचे गुजार दूँ। उसने अपना बालों का विग उतारा, कहा लो संभालो, इसी के नीचे बिताओ और मैं चली।
1: सर ये सब बात कहने की है पर आप गधे को घोड़ा बनाएंगे तब नहीं होगा, आपको पहचान होनी चाहिए कौन गधा है कौन घोड़ा है।
0: मतलब पहले पहचान, पहले घड़ी डिसीजन कहता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
1: नहीं सर, पहले विश्वास करना चाहिए
0: फिर इस्तेमाल करना चाहिए। तो वही तो कहते हैं विश्वास में आकर ही शादी हो गई, या शादी के बाद पता चला कि ऐसा।
1: आपके अंदर पहचानने का तरीका होना चाहिए, आपके पेरेंट्स होते हैं, ऐसे कैसे हो गया भाई?
0: अच्छा, ऐसे कैसे हो गया, मतलब हो सकता है, मतलब कुछ मामले में लोग धोखा खा जाते हैं।
1: नहीं, जीवन में इतना संघर्ष करे रहिए कि धोखा मत खाइए।
0: नहीं, धोखा खाएंगे तभी तो आपको अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है।
1: सर फिर गलत जगह धोखा ना खाएं।
0: अच्छा ये जी हाँ भाई, तो हमारी निधि जी ये लगभग लगभग मानने को तैयार हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है और हाथ के साथ साथ लात भी होता है।
1: जी ये हमारे सर मान रहे हैं और मैं सर की बात को हमेशा मानती हूँ।
0: जी, और हमारे साथ वंशिका जी जुड़ी हैं बहुत दिन के बाद। है आर्य मनु, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या आपको भी। और इट्स कुमार जी, क्या बात है भाई, जुल्फें बड़ी खूबसूरत आपकी, वेरी गुड इवनिंग आर्य मनु जी। लुढ़के ऐसा बेड में आप कैसे हैं? हाथ होता है शायद मेरे पीछे लात। देखिए नागेश्वर धाकर जी की कामयाबी के पीछे उनकी पत्नी की लात है, उन्होंने साफ साफ लिख कर भेजा है चैट बॉक्स में, और ये जो है वो
1: काश उनकी पत्नी भी हमें सुन रही हो,
0: सुन रही हो, और नागेश्वर धाकर जी की पत्नी या प्रेमिका जो कुछ भी हो, उन्होंने लिखा है कि शायद मेरे पीछे लात ही है, मतलब आप कामयाब हो चुके हैं, आपकी कामयाबी मुबारक हो आपको। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसा पॉसिबल है क्या? मुझे नहीं लगता। जी हाँ, हमारे साथ भाई पप्पू जी भी जुड़ चुके हैं गोंडा से, और सबसे अच्छे हैं कि शादी ही ना करो। देखिए
1: जी, देखिए सर आ गए कुछ लोग,
0: ऐसा पॉसिबल है क्या? मुझे नहीं लगता, मेरी मम्मी का बेलन है, क्या बात है। सूर्यवंशम पिक्चर में पत्नी कहाँ था ये नागेश्वर धाकड़ ने बताया, लेकिन ये बताइए कि उनको आईएएस बनाया किसने था?
1: अमिताभ पहले से पढ़ रही थी,
0: पढ़ रही थी, लेकिन शादी के पश्चात जब ये हुआ तो अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं ठीक है तुम पढ़ो, बेचारा वो ड्राइवर बन गया, कुली का काम करना करने पड़ा अपने पत्नी को कामयाबी पर पहुंचाने के लिए, तो उस स्त्री के पीछे उस पुरुष का हाथ था।
1: हाँ जी हाँ, कभी कभी स्त्री के पीछे भी एक पुरुष का हाथ,
0: हाँ तो ज्यादातर होता है। जी हाँ, आर्य मनु से
1: हमारे पापा ही होते हैं।
0: हाँ वंशिका जी लिखती हैं, आर्य मनु से बातों में जीत पाना इम्पॉसिबल। जी नहीं बिल्कुल वंशिका जी, आप बिल्कुल आप जीत सकती हैं, ये जीत सकती हैं। और हम न खेल अब, हम पहले एक महीने का ट्रायल, क्या बात है भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल आप ट्रायल ले लीजिए।
0: नागेश्वर जी लिखते हैं, मुझे निधि से पूछना था कि क्या धोखा भी धोकर खाना चाहिए?
1: नहीं आप वैसे खा लीजिए, ज्यादा बेहतर है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: खाएंगे फिर आपको मजा नहीं आएगा, आप लाइफ में कैसे सीखेंगे?
0: सीखेंगे कैसे? जी हाँ, अगर ठीक रहा तो रियल वाली शादी कर दो। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और वंशिका जी हमारे साथ, नहीं सर जी नहीं, अभी वो सौभाग्य मुझे नहीं मिला लात खाने का। नागेश्वर धाकड़ जी हम ईश्वर से कामना करेंगे कि जल्दी ही आपको वो सौभाग्य मिले। और आइए बातचीत करते करते, देखिए अच्छे लोगों के साथ आप बैठिए तो बातचीत करते करते समय कब बीत जाता है ये पता नहीं चलता।
1: सर सच कह रहे हैं
0: ना
1: जी, बिल्कुल 7:45 भी हो गए,
0: 7:45 हो गए और हम निधि जी के साथ थे और हमको पता ही नहीं चला वक्त कब बीत गया। ये तो भी देखा कि धर्मेश त्रिपाठी जी का लिंक आ गया, तो हमको लगा ये तो क्या बात हो गई,
1: नहीं तो 8:45 भी हो जाता।
0: क्या बात, जी हाँ। तो 7:45 का मतलब ये दस्तक है कि अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा
1: फोन आया है।
0: जी हाँ, अब हम लोग इंतजार करेंगे आपके फोन का और आपकी फरमाइश को पूरी करेंगे आपकी वाली आरजे यानी निधि जी। जी हाँ, तो पहली फरमाइश मेरे पास जानती हैं कहाँ से?
1: जी सर कहाँ से?
0: उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम
1: सर कहाँ से? मैं
0: अब उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है
1: सर मुझे नहीं पता।
0: अरे जिस प्रदेश में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है
1: सर? कहीं दिल्ली तो नहीं?
0: तब निधि जी मतलब जोक करने से मतलब कहीं पर भी हंसाने से बात नहीं आती है। अब अभी कहती कि जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी हैदराबाद।
1: अरे नहीं सर, अब मैं मणिपुर कह दूंगी तो हमारे लेसन मान लेंगे, सबको पता है हमारी राजधानी लखनऊ है।
0: जी हाँ, तो पहली फरमाइश हमारे पास आई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, और हमारी बहुत ही प्यारी बहन है आशु मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और इसके साथ अब शुरुआत करते हैं आपके फरमाइशी गीतों की इस आपके गीत के साथ। तो प्ले द सॉन्ग बदरा छाए रे वेरी धूम मचाए। जी हाँ, तो फरमाइश शुरू की जानी थी जी क्या?
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो आप अनाउंसमेंट कीजिए, पहली फरमाइश आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, बदरा छाए रे वेरी धूम मचाए, बोलिए।
1: बिल्कुल आशु मिश्रा जी की ये गीत हम बजा रहे हैं, बदरा छाए रे धूम मचाए रे, और बदरा छा भी रहा है।
0: जी हाँ, बसरते ये है कि भाई 10:30 तक धूम ना मचाए क्योंकि हमको स्टूडियो में रहना है, उसके बाद मचाए
1: 11 बजे
0: 11 बजे

0: जी हाँ, अब चलते हैं हम अपनी अगली फरमाइश की तरफ।
1: जी हाँ, और अगली फरमाइश होने वाली है बहुत खास। पूछिए क्यों?
0: क्यों
1: क्यों? क्योंकि आप बताइए क्यों इसका उत्तर। तो
0: ये गाना है धर्मेश त्रिपाठी जी की ओर से, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया।
1: जी हाँ, तो अब राधा जी बोलेंगी भाई, बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। श्री धर्मेश त्रिपाठी जी की फरमाइश पर अब चलते हैं और इस गीत को बजाते हैं भाई। बहुत बढ़िया गीत सुना हमने आशु मिश्रा जी से, और अब चलते हैं श्री धर्मेश त्रिपाठी जी की इस प्यारी सी फरमाइश की तरफ।
0: जी सर बिल्कुल।
2: के लिए आए हैं ना, गांव की भलाई के लिए और ना ही किसी और मकसद से। आज राधा आपसे अपने दिल की बात कहने आई है। शगुन स्वीकार कर लीजिए।

0: जी हाँ, हम चलते हैं अपनी अगली फरमाइश पे, जो है राजस्थान से महेंद्र दीपेन जी की।
1: जी हाँ, फरमाइश है चंदा सितारे बिंदिया तुम्हारी। बहुत ही प्यारा सा गीत ये उनकी फरमाइश पर।

जी हाँ, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो है इश्क कुमार की, मैं रंग शरबतों का। जी बिल्कुल, इस गाने को सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, मैं रंग शरबतों का।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया भाई। सुकुमार जी की तो चॉइस ही निराली होती है जी। बहुत ही मैरंग शरबतों का बहुत ही प्यारी फरमाइश। अब चलते हैं भाई भाइयों के भाई निब्बल भाई की तरफ। और बहुत ही प्यारी सी फरमाइश भेजी है उन्होंने। गाना ये कहाँ कहाँ से हेर कर लाते हैं, ढूंढ कर लाते हैं। बहुत ही शानदार गीत लेकर आते हैं और आज गीत लेकर आए हैं मैं हूं दीवाना मुझे अपना बना लो। जी हाँ निब्बल भाई, कोई आपको अपना बनाए या ना बनाए, लेकिन रेडियो गणेश के 89.6 FM परिवार ने अपना एक भाई पा लिया है निब्बल भाई के रूप में, और हम आपको अपना बना चुके हैं इस गीत के माध्यम से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी।

0: अरे उसको उठा लो।
1: हाँ अपना बना लो, जो अपना बनाने में वास्तव में अंदाज है, जो उसका मज़ा है वो निराला ही है। और इस बीच भाई सोनिया तिवारी जी से क्षमा प्रार्थी हैं कि जब गीत उनका लिखा हुआ आया तो कंप्यूटर ऑपरेटर साहब हमारे जरा जल्दबाजी में थे, उस दिन लिंक पर चले गए और सोनिया जी का गीत नहीं बज पाया। जी हाँ, तो भाई आपसे क्षमा मांगते हुए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब आपका गीत एकदम सामने आ चुका है कि बहुत ही प्यारा सा गीत है और गीत के बोल। जी हाँ, आकाश किसी दीवाने को। जी हाँ, तो भाई क्षमा के साथ, क्षमा प्रार्थी होने के साथ ही साथ अब चलते हैं सोनिया तिवारी जी की बहुत ही प्यारी सी फरमाइश, जो तीन गाने के बाद आई लेकिन अंततः पूरी आई और मुकम्मल।

जी हाँ, इसी श्रृंखला में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारी अगली फरमाइश है नबीन राजपूत की, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। जी बिल्कुल, अब हमारा अगला गाना चालू हो गया है।

जी हाँ, अब हम चलते हैं नागेश्वर धाकड़ जी की गाने की तरफ। जी, उनका गाना है दीदी तेरा देवर दीवाना। जी हाँ, बिल्कुल।

जी हाँ, इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं अपनी फरमाइश की ओर, जो है पप्पू हार्डवेयर गोंडा से। तो उनका गाना भी कुछ बहुत अच्छा है, ठुमक ठुमक। तो चलिए हम ठुमक ठुमक के एक गाना सुनते हैं।

0: जी हाँ, हम चलते हैं अपनी अगली फरमाइश की ओर, जिनका गाना ही बहुत ज़बरदस्त है। मैं एक राजा हूँ। जी बिल्कुल जी के साथ जी, आप एक राजा ही हैं और आपका गाना हम बजा रहे हैं।
1: यहाँ राजा कहाँ है?
2: मैं एक राजा

जी हाँ, हमारी अगली फरमाइश है राजेश कुमार सिंह जी की तरफ से, जो है मालवीय नगर से। जो गाना है उनका मेरे प्याले में, किशोर कुमार जी की आवाज़ में, बहुत ही ज़बरदस्त गाना। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, अब हम चलते हैं अपनी अगली फरमाइश की तरफ, जो है सविता दुबे जी की हवा हवाई। इतनी हवा हवाई में आपके गाने भी बहुत अच्छे हैं। हवा हवाई

जी हाँ, और इसी बीच भाई हमारे साथ अब तो आशीर्वाद लेने का वक्त आ चुका है, पंडित भोलेनाथ मिश्रा जी हैं। और जहाँ कहीं भी वो बैठे हैं भाई, इसमें मौसम की खराबी के कारण नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, तो उन्होंने सभी श्रोताओं को शुभ आशीर्वाद दिया है, यथाउचित प्रणाम भी किया है और अपना गीत भी भेज दिया है, तेरी उंगली पकड़ कर चला। तो भाई जो श्रोता उनका उत्तर नहीं पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या है जो कल तक संभवतः दूर हो जाएगी। तो पंडित जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपको भी, और आपका गीत तेरी उंगली पकड़ के चला हम बजाते हैं न्यूज़ के बाद। जी हाँ, समाचार सुनिए और समाचार के पश्चात सीधे चलेंगे हमारे पंडित जी की गीत की तरफ।

0: मैं
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
3: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
2: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
3: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहाँ के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
0: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3

0: रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और एलएनजी दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth: technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैंपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैंपेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जी हाँ, समाचार के पश्चात अब चलते हैं पंडित भोलेनाथ मिश्र जी की फरमाइश। पहले आपको चरण स्पर्श और इसके पश्चात तेरी उंगली पकड़ के चला।

हमने सुना भाई पंडित भोलेनाथ मिश्र जी की फरमाइश पर, अब चलते हैं अपने दर्द कुमार उर्फ सुरेश कुमार जी की तरफ। क्या बात है भाई, जितना दर्द आवाज़ में है उतना ही दर्द गानों में लेकर आते हैं। और राजगीत भेजा है, आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया। रे रफ़ी साहब की कायनाती गले से निकली हुई ये आवाज़ दिलों को छू जाती है। फिलहाल सुरेश कुमार उर्फ दर्द कुमार जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9281-976-9860-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंब्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, इस्तकबाल आप सभी का आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं नींव के ईंट की, जो ऐसे लोग, जो कलमकार जिनकी लेखनी से लिखे हुए शब्द निकले, संगीतकारों ने संगीत दिया, गायक कलाकारों ने गाया और एक अमर नाम बन गया। ऐसे ही हिंदुस्तान के एक बहुत महान शायर, आप सभी लोग उनके नाम से बावस्ता होंगे, रूबरू होंगे, संपूर्ण सिंह कालरा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नाम तो हमने शायद नहीं सुना है। जी हाँ, इनका उपनाम है गुलजार, और गुलजार साहब का नाम आप सभी ने सुना होगा। उनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा ही है। जी हाँ, थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या है आज, और ईश्वर ने चाहा, आसमान वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और आज बात करेंगे गुलजार साहब की, उनकी लिखी हुई गजलों की। उनकी बहुत सारी गजलों को तो जगजीत सिंह साहब ने गाया। उन्होंने लिखा कि दिन ऐसे गुजारता है कोई, दिन ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे ऐसा उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। अब दिखेगा एक नया रुख शायरी का, गजल का। पेड़ पर पक गया है फल शायद, पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। जी हाँ, ये गजल लिखी है संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार साहब ने। आइए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में। और चूंकि बात दर्द की हो रही है, और जब हम गजल में दर्द तलाश करते हैं, तो मुझे लगता है अताउल्ला खान दर्द के मामले में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़े हुए मुझको नजर आते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है ये। आइए अब जब बात दर्द की हुई है, तो आज दर्द से दर्द को मिलाते हैं, और अताउल्ला खान की गजल से शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम को। सुनते रहिए और रेडियो गणेश की 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी, मैंने मुंह को कफन में छुपा जब लिया, तब उन्हें मुझसे मिलने की फुर्सत मिली। और कुछ ऐसी ही पंक्तियां मैंने कभी पढ़ी थी कि ऐ खुदा मुझे एक पल की जिंदगी और दे दे, मेरी कब्र से उदास जा रहा है कोई। तो वास्तव में जो इम्तिहान होती है वो अपनी हद पर पहुंचती है कभी कभी। हमारे साथ जेके शाह जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी जी, स्वागत है आपका भी। और खैर मकदम, वो चीज़ जिसे दिल कहते हैं हम भूल गए हैं रख के कहीं, गुलजार साहब। अरे क्या पंक्तियाँ हैं साहब, गुलजार साहब तो गुलजार साहब हैं। और उनकी एक गज़ल पढ़ता हूँ, और ये गज़ल जगजीत सिंह साहब ने गाई भी है, तो ये गज़ल आपको सुनाएंगे भी, और इसके पश्चात जगजीत सिंह की प्यारी सी आवाज़ में इसे आप सुनेंगे। उन्होंने कहा कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, मतलब हाथ छूट जाना और रिश्ता छोड़ देना दो अलग अलग बातें हैं। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, जिसकी आवाज में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, साहिल मतलब किनारा। लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते। शायद यहां पर कहने की ये बात कर रहा है कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जो चाहते हैं किसी प्रकार का खतरा न हो, एकदम किनारे किनारे चलें, उनका नहीं। ऐसे लोगों को के लिए अगर आप सोचते हैं कि वो अपना रुख बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते। जागने पर भी नहीं आँख से गिरती किरचे, मतलब पीसेस टुकड़े। जागने पर भी नहीं आँख से गिरती किरचे, इस तरह ख्वाबों से आंखें नहीं फोड़ा करते। जो शीशे का टूटा हुआ भाग होता है उसको किर्च बोलते हैं। शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए दिल नहीं तोड़ा करते। जाके कोहसार से सरमारो की आवाज तो हो, कोहसार का मतलब वो स्थान जहां पर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हो, कोई सुनने वाला ना हो। जाके कोहसार से सरमारो की आवाज तो हो, खस्ता दीवारों से माथा नहीं फोड़ा करते। मतलब वास्तव में कभी कभी सुनने में आता है कुछ चीज़ें हमने केवल सुनी है, उनको कभी देखा नहीं। मैंने कहीं पढ़ा कि सुनी है सुधा देखी है ये गजल, अति कदितूत मदाल। हम सभी जानते हैं कि जो अमृत होता है उसका पर्याय, उसका जो विलोम होता है वो विष होता है, जहर। अच्छा, हम लोगों ने दोनों शब्द सुने हैं,

अमृत भी सुना है और जहर भी सुना है, लेकिन हम में से शायद किसी ने अमृत को नहीं देखा होगा। सुनिए सुधा, सुनते हैं कि अमृत होता है, देखी है गरल, दिखने में जहर, हर चीज में आप गुड नाइट लिक्विड पी जाइए जहर है, पता नहीं मतलब सल्फास जहर है, तो जहर तो आता है, दिखाई पड़ता है हमको कि हाँ मैं जहर हूं, लेकिन आज तक अमृत नहीं दिखाई पड़ा कि ये अमृत होता है। तो सुनने में लगता है कि ये अमृत है, होता है, लेकिन देखा नहीं गया। किसी शायर ने कहा भी था कि जख्म तो हमने इन आंखों से देखे हैं, लोगों से सुनते हैं मरहम होता है। तो जख्म दिखाई पड़ता है साहब, सुना जाता है कि यहाँ जख्म भर जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना निशान, कहीं ना कहीं अपना जो स्कार है उसको छोड़ जाते हैं। आइए, हमने आपको जब गजल सुनाई है गुलजार साहब की, तो इसी गजल को बहुत ही प्यारे से अंदाज में जगजीत सिंह साहब ने गाया भी है। मेरी कमजोर आवाज में आपने गुलजार साहब की इस गजल को सुना, और आइए अब मखमली आवाज में इसी गजल को आपको सुनाते हैं। जी हाँ, जगजीत सिंह के प्यारे से कंठ से निकली हुई ये प्यारी सी गजल आपका दिल छूने के लिए आ रही है। तैयार हो जाइए साहब, जगजीत सिंह साहब की गाई हुई गजल और गुलजार साहब की लिखी हुई गजल, मतलब सोने पर सुहागा, ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ, और ये अताउल्लाह खान की गजल तब की गाई हुई है लाइव परफॉर्मेंस से जब वो 30 से 35 साल के आसपास रहे होंगे और दर्द उनके कंठ में ऊपर वाले ने दे दिया। बहुत ही प्यारी गजल। और इसके बाद भी बहुत सारे सिंगर्स ने इसे गाया, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अताउल्लाह खान वाला टच, वो किसी के साथ वो दर्द नहीं आया। उन्होंने कहा गुलजार साहब ने कि रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, करार दे के तेरे दर से बेकरार चले, उठाए फिरते थे एहसान जिस्म का जहाँ पर, उठाए फिरते थे एहसान जिस्म का जहाँ पर, चले जहाँ से तो ये पैरहन उतार चले। पैरहन मतलब कपड़ा। न जाने कौन सी मिट्टी वतन की मिट्टी थी, न जाने कौन सी मिट्टी वतन की मिट्टी थी, नजर में धूल जिगर में लिए गुबार चले, सहर ना आई। सहर मतलब सुबह। सहर ना आई कई बार नींद से जागे, थी रात रात की ये जिंदगी गुजार चले, मिली है शम्स से रश्म आशिकी हमको, गुनाह हाथ पे लेकर गुनाहगार चले। उन्होंने कहा कि जिंदगी दुनिया ऐसा मानती है कि भाई मोहब्बत करना जुर्म है और ये जुर्म हमने किया है। क्या बात है। और भाई बहुत खूबसूरत सी शाम आपके साथ बिताई हमने। हमारे साथ भाई उस्मान खान भी हैं, जेके शाह लिखते हैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस शख्स से बस इतना सा ताल्लुक है फराज, वो परेशान हो तो नींद हमें नहीं आती। क्या बात है भाई। उस्मान खान जी हैं, शुभ संध्या जी। मनुसर जी हाँ, आदाब करते हैं आपको, और बहुत अच्छी गज़ल, क्या बात है। और जी अब चलिए आपको ले चलते हैं जी, हमने गज़लों की बात की और आपको बताऊँ मैं कि गज़लें लता जी ने और रफ़ी जी ने बहुत कम गाई हैं, लेकिन जो गाई हैं वो बाकमाल गाई हैं। तो आइए, अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। और चलते चलते भाई बहन की जोड़ी का एक प्यारा सा नगमा हम आपको सुनाते हुए जाएंगे। एक तरफ लता जी और दूसरी ओर फिर कायनाती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो ज्ञान असली के क्राइम शो पर्दा में। क्योंकि साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और हर सच के पीछे एक धोखा जरूर होता है। उतरेगा हर राज से मुखौटा जब खुलेगा पर्दा। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति।
1: और मेरा नाम है आयुषी।
0: और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी, और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आप ही के देश भारत की एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी क्राइम स्टोरी की तरफ जिसने दुनिया के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम बना रखा है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं हिला पाया। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो 19वीं सदी के भारत के सड़कों पर फैले खौफ की है। कल्पना कीजिए, साल 1819 के आसपास की रातें, ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हेनरी सिलिमन को कंपनी ने एक बहुत बड़ी समस्या सौंपी। रिपोर्ट्स आ रही थी कि दिल्ली से ग्वालियर और ग्वालियर से जबलपुर के रास्ते में मुसाफिर लगातार गायब हो रहे हैं। पूरा काफिला जाता लेकिन कुछ लोग कभी अपने घर नहीं पहुंच पाते, उनकी लाशें भी गायब, सुराग भी नहीं होता। और उस दौरान उस ऑफिसर के दिमाग में क्या आ रहा होगा, और अगर आप उस जगह होते या उस समय आपको छोड़ दिया जाता तो आप क्या कर रहे होते?
1: उन्नति, ये सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। इतने सारे लोग गायब हो गए, कोई जानवरों का हमला तो नहीं था ये, या फिर कोई भयानक साजिश?
0: शुरुआत में यही कन्फ्यूजन सबको थी, लेकिन सिलिमन की जांच ने एक ऐसा भयानक सच खोला था जिसने सबको हिला दिया, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम बनाया और जिसका रिकॉर्ड आज भी कायम है। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज़ नहीं हुआ करते थे तो उससे पहले होते थे मुग़ल। मुग़ल भारत पे राज कर रहे थे और उस मुग़ल राज के दौरान भारत में कुछ ऐसे कबीले भी थे जो जंगलों में रहा करते थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि उन जंगलों में रहने वाले कबीले के लोग काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो काली माता की आराधना करते थे और उन कबीले वालों ने मिलकर लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों की जान ली थी। ये रिकॉर्ड 1790 से 1840 के बीच माना जाता है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो एक ऐसा ठग था जो जब भी जाल बिछाता था तो उसके हर जाल में कोई ना कोई फंस ही जाता था। उसे कहते थे मास्टरमाइंड, नाम था बहराम। आप उसे बेरहम भी कह सकते हैं क्योंकि उसका काम ही कुछ इस तरह से था। उसके पास था एक पीला रुमाल और उस रुमाल में बंधे 2 सिक्के, बस यही उसका वेपन था।
1: उन्नति, उसे ठग बहराम कहने से अच्छा है उसे ठग बेरहम कहा जाए। तो मुझे ये बताओ कि ये सिलसिला आखिर शुरू कब हुआ?
0: बात है 1790 के आसपास की। ठग बहराम पहली बार इस काली अंधेरी दुनिया में आया था। उसके बाद लगातार 50 सालों तक उसने इस अंधेरी, काली, खून से भरी दुनिया पर राज किया, इतिहास में अपना नाम छोड़ा। और तुम तो ये बात जानती ही होगी कि 1790 आते आते भारत में मुगलों का राज खत्म हो चुका था। उनकी जगह पर भारत में अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी थी और अंग्रेज आए थे एक लंबे समय के लिए भारत पे राज करने। उस वक्त जब अंग्रेज भारत में आए हुए थे तो वो चाहते थे कि लोगों पर राज करें, और लोगों पर राज करने के लिए लोगों की संख्या भी होनी चाहिए। और भाई, ठग बहराम वो इंसान था जो धीरे धीरे लोगों को गायब कर रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि हम तो यहाँ राज करने आए थे, यहाँ से लोग ही गायब हो गए।
1: वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इसके पर्टिकुलर हिस्से वो कौन कौन से थे?
0: ये सवाल तुमने काफ़ी अच्छा किया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अंग्रेज़ों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि लोग गायब तो हो रहे हैं लेकिन वो पूरे देश से नहीं हो रहे, वो एक पर्टिकुलर हिस्से से गायब हो रहे हैं। और वो हिस्से थे मेनली दिल्ली, जबलपुर, हरियाणा, पंजाब और इनके आसपास का जो एरिया था, उस एरिया के स्पेसिफिक जगह से लोग सफ़र पर निकल रहे थे, चलते चलते गायब हो जाते और पूरी की पूरी टोली कभी कभी सफ़र से गायब, कभी उस टोली के सिर्फ 2-3 लोग अपने घर तक आते और उनकी लाशें भी नहीं मिल रही थी, ना उनकी कोई खास खबर थी किसी के पास।
1: ओह माय गॉड, बिना किसी सबूत के लोग गायब हो जा रहे थे। आखिर वो लोग होते कौन थे, मतलब स्पेसिफिकली वो कौन थे?
0: ये मेनली हुआ करते थे व्यापारी जो घूम घूम कर अपना व्यापार पूरे भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वही सबसे ज़्यादा सफ़र पर निकल रहे थे और महीनों के लिए सफ़र पर निकल रहे थे, और उसी दौरान सफ़र में उन्हें कोई ऐसा मिल रहा था जो उनका दोस्त बनता और दोस्त बनकर उन्हें जान से मार देता।
1: ओह अच्छा, अब क्या हुआ आगे?
0: अंग्रेजों की टेंशन बढ़ती जा रही थी। लोग ना सिर्फ गायब हो रहे थे बल्कि बिना किसी सबूत के गायब होते जा रहे थे। अगर कोई ये अनुमान लगाए कि वे मर रहे हैं तो इनकी लाशें कहाँ हैं? लाशें तो कभी मिलती ही नहीं, ना उनकी लाश मिलती ना लाश का एक बाल भी मिलता। बिना किसी निशान के कहीं गायब हो जाना कितनी बड़ी बात है।
1: तो हो सकता है कि कोई जानवर उन्हें ले जाए, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि इंसान ही लेके गया और मार दिया।
0: बट ये भी तो सोचो, अगर कोई जानवर लेके जाता तो शोर होता, अफरा तफरी मचती, लोग भागते, मदद बुलाते, लाशें मिलती, कपड़े मिलते, खून के निशान या हड्डियां मिलती, कुछ तो ऐसा होता जो पता चलता कि हाँ यहाँ पर किसी की हत्या की गई है।
1: इतना शातिर और इतनी चालाकी से क्राइम।
0: बिल्कुल, अपने 50 सालों में बहराम ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा, और जब वह पकड़ा गया तो उसने कुछ ऐसा बताया जिससे लोगों की रूह तक कांप गई।
1: ऐसा क्या बता दिया उसने? मतलब लोग इतना परेशान हो गए, मुझे बताओ जरा क्या बताया था।
0: बताऊंगी पर अभी नहीं, अभी तुम वो सुनो जो इस कहानी के बीच में चल रहा था। जब अंग्रेजी सरकार ने इस केस को सॉल्व करने और लोगों को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई थी कि अब तो बहुत हो गया, अब पता करके ही रहेंगे कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं, कौन इन्हें गायब कर रहा है और ये कहाँ ऐसे छूमंतर हो जाते हैं, क्यों पता नहीं चलता। तो कमाल की बात ये है कि वो टीम भी गायब हो गई। जो टीम ढूंढने जा रही थी अब उसी टीम को ढूंढने के लिए एक और टीम भेजी जा रही थी, और कमाल की बात यह है कि अब दूसरी टीम भी गायब होती जा रही थी।
1: यार ये सब सुनने पे ही मुझे हंसी आ रही है। तुम बताओ कि आगे आखिर हुआ क्या था?
0: अंग्रेजों ने अपनी टीम को ढूंढने और इस केस को सॉल्व करने के लिए अब डिटेक्टिव हायर करना शुरू कर दिए थे। मुझे नहीं पता लेकिन अंग्रेजों को डिटेक्टिव से कुछ ज़्यादा मोहब्बत है। और कमाल की बात ये है कि जिन डिटेक्टिव को केस सॉल्व करने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए बुलाया जा रहा था इंग्लैंड से, वो भी भारत आकर गायब हो चुके थे और उनकी भी निशान पूरी तरह से मिट चुके थे।
1: हैं, ये क्या हो रहा है? मतलब शिकारी खुद शिकार बन जा रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है। मुझे हंसी आ रही है कि यार एक ठग इतना माहिर है कि पुलिस को भी धोखा दे जा रहा है।
0: हाँ यही तो बात है जो ठग बहराम को दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बनाता है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड का टैग भी दिलाता है।
1: मैंने सुना था बचपन में कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान तो छोड़ ही जाता है। यहाँ ये कहावत भी मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठी पड़ जाएगी।
0: और आगे आगे देखो तुम्हें अपने बचपन की सारी कहावतें झूठ लगने लगेंगी, क्योंकि ये इतना शातिर, इतना चालाक और इतना मास्टरमाइंड है कि पुलिस भी इस तक नहीं पहुंच पाई 50 सालों के अंदर।
1: अच्छा बताओ यार, मेरी तो क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही है।
0: अंग्रेजों का दिमाग अब पूरी तरह से ठनक चुका था। वो यहाँ केस सॉल्व करने के लिए लोग बुलाते, उनके लोग उल्टा यहीं से गायब हो जाते। अब वो सोच रहे थे ये केस सॉल्व होगा तो होगा कैसे, यहाँ हम लोगों पर शासन करने आए थे लेकिन इसका उल्टा होता जा रहा है। हम लोगों पर अत्याचार करते थे ये बात तो समझ में आई, लेकिन हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, अब ये बात उनके दिमाग में नहीं बैठ रही थी। और इसीलिए उन्होंने अब एक बहुत ही शातिर ऑफिसर को, बहुत ही माहिर ऑफिसर को बुलाया जिसका नाम था द विलियम सिलिमन, और अब ये केस गया था उसके हाथों में।
1: अब तुम ये मत कह देना कि विलियम भी गायब हो गया।
0: अरे नहीं, ये गायब नहीं हुआ था। अब तुम आगे सुनो हुआ क्या।
1: अच्छा बताओ फिर।
0: तुम्हें मैं बता दूं कि 1809 में ठग और डकैती के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। जो लोगों को लूटते थे उन्हें ठग कहा जाता था, और पकड़े गए ठगों को अप्रूवर बनाया गया, यानी कि वो गवाही देते थे, बाकियों को पकड़वाते थे। खुफिया नेटवर्क बनाया गया, हेडक्वार्टर जबलपुर में बनाया गया, जिसके ऑफिसर बने विलियम, वही जिनको अंग्रेज़ों ने बड़ी उम्मीद से बुलाया था भारत में, और जो सोचते थे कि ये केस अब कोई और नहीं वही सॉल्व करेंगे। विलियम अब गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से पूछताछ करते थे। पता चला कि पिछले कई सालों से ये समस्या यूं ही चली आ रही है, कभी कोई अकेला व्यापारी गायब होता, कभी पूरा परिवार, और कभी सैनिक, कभी छोटा काफिला, कोई चीख नहीं आती, कोई लड़ाई नहीं होती, किसी लड़ाई के निशान नहीं दिखते, बस लोग गायब हो जाते। एक चीज़ थी उस वक्त जो विलियम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और वो ये था कि भारत में उस वक्त हाईवे बहुत ज़्यादा कम हुआ करते थे। और जो भी रास्ते हुआ करते थे वो जंगलों से घिरे रहते थे, और उन्हीं जंगलों के बीच में वो जो मेन रास्ता था जहाँ से लोग गायब हो रहे थे वो था जबलपुर। इसीलिए विलियम ने जानबूझकर इस ठग और चोरी की डिपार्टमेंट को जबलपुर के बीच में रखा और अपने लोगों को तैनात किया कि सड़कों पर घूमो, देखो कि लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किस से मिलते हैं, क्या तुमसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, और क्या कुछ हो रहा है।
2: इसके बीच में अपनी कोई लाइन डाल दो।
1: तो क्या इतने काम से कोई फायदा हुआ? और अगर लोग इतना कर ही रहे थे तो उनके मन में पहला थॉट क्या आता था?
0: पहले थॉट से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि उस वक्त विलियम क्या कर रहे थे। इसके अलावा विलियम ने अपने लोगों से कहा था कि सारे के सारे जंगल कटवा दो, क्योंकि उस वक्त जंगल के बीच में ही कोई ऐसा इंसान है जो लोगों को गायब कर रहा है। ना रहेगा जंगल, ना बचेंगे वो लोग। और यही सोचकर उसने सारे जंगल कटवा दिए। अब क्योंकि जंगल कट चुके थे, सड़कें साफ दिख रही थीं, तो विलियम का निशाना और भी ज़्यादा साफ होता जा रहा था। फिलहाल जो जंगल के बीच में रहते थे अब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। और अब बात कर लेते हैं तुम्हारे सवाल की कि क्या फ़ायदा हो रहा था और लोग क्या सोचते थे। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि कोई तो जंगली जानवर है जो लोगों को खा जाता है या डाकू लूट लेते हैं। लेकिन जब सिलेमैन ने गहराई से देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को कोई रोकता नहीं है, कोई ठग का पूरा ग्रुप है जो ये काम कर रहा है। ठीक से देखने पर उन्हें यह समझ में आया कि ये कोई रैंडम नहीं बल्कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हत्याएं की जा रही थी। एक ऐसा गुप्त समूह है ठगों का जो लोगों के साथ यानी कि मुसाफिरों के साथ घुल मिल जाते हैं, दोस्त बनते हैं और फिर सही मौके पर हमला कर देते हैं। और ये सब जानते हुए विलियम ने अपने लोगों को आदेश दिया, उन्हें कहा कि अब तुम लोगों को अलग अलग ग्रुपों में बंटना पड़ेगा। कोशिश करो कि इनकी संख्या पता करके लाओ, ये जो ठग हैं इनकी संख्या पता करो। और जब इनकी संख्या निकल कर सामने आई तो विलियम के होश उड़ गए। लगभग 200 से ज़्यादा लोग शामिल थे इस ठग के ग्रुप में जो लोगों को लूटने का और मारने का काम कर रहे थे।
1: 200 से ज़्यादा? ओके, मतलब वो हमला कर देते थे पर हमला करने का तरीका क्या था?
0: जब इस केस को और भी बारीकी से देखा जा रहा था तो समझ में आया कि इन 200 लोगों के बारे में जानकारी निकाली जा रही थी तब एक जानकारी सामने आई कि इस ग्रुप का लीडर है जिसका नाम है बहराम, जो इसको लीड कर रहा है। और जब बहराम की जानकारी निकाली जा रही थी तब पता चला कि इसका जन्म जबलपुर में ही हुआ था और बाद में ये ठगों का बादशाह प्लस मास्टरमाइंड बना। उसे सबसे ज़्यादा अपने रुमाल से प्यार था क्योंकि वो रुमाल उसके लिए उसका स्पेशल हथियार था, उसका ख़ास हथियार जिससे वो लोगों की जान ले रहा था। और उस रुमाल से ही उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
1: रुमाल? मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है कि आज तक मैंने इतने केस देखे हैं, लोग चाकू, जहर, एसिड, न जाने क्या क्या यूज़ करते हैं, और ये रुमाल, मतलब रुमाल का ये तो मैंने पहली बार सुना। इतना छोटा सा रुमाल कैसे किसी को मार सकता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। या तुम झूठ बोल रही हो?
0: यही तो बात है जो उसे सभी क्रिमिनल से सबसे अलग बनाता है। वो अपने पीले रुमाल से लोगों की जान ले रहा था। उसका पीला रुमाल उसका सबसे बड़ा हथियार था, पीला रुमाल जिसमें एक सिक्का बंधा था और उस सिक्के से ही वो लोगों की जान लेता। इतने कस के, इतने सफाई से लोगों के गले में पीछे से वो रुमाल डालता और झटके से खींच देता कि इंसान की झटके से जान चली जाती और एक चीख भी बाहर नहीं आ पाती। ये तरीका इतना परफेक्ट था कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनका साथी कोई गायब हुआ है।
1: ओह माय गॉड, मतलब लाश क्यों नहीं मिलती थी? लाश क्यों नहीं मिलती थी इन सबकी?
0: क्योंकि बहराम जैसे ही किसी की जान लेता तो उसके साथ आए उसके साथी उसके इशारों पर तैनात रहते थे। गैंग तुरंत ही पीछे से लाश उठा ले जाती, उसे कहीं दफना देती, कहीं फेंक देती या उसे कहीं पर छुपा देती। लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके ग्रुप से कोई मेंबर गायब हो गया है और इसी वजह से कोई सबूत भी नहीं हाथ लगता था।
1: यानी कि बेरहम यानी कि ये बहराम बहुत ज़्यादा शातिर था। अब ज़रा इस असली किरदार के बारे में मुझे तुम बताओ कि आखिर ये था कौन?
0: बहराम, उसका जन्म करीब 1765 के आसपास हुआ था। जब वो 16 से 17 साल का था तब वो एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल हमारे जैसे। ना किसी का कत्ल करना, ना किसी को मारना, ना चोरी, ना डकैती, ना लूटमार। लेकिन जब वो 17 साल के बाद एक ऐसे इंसान से मिला जिसने उसे इस खूनी, इस अंधेरी दुनिया को दिखाया पहली बार, और उस पीले रुमाल से उसकी जान पहचान कराई। और मैं तुम्हें बता दूं, ये वो इंसान था जिसने इस पेशे में पहले भी बहुत बार काम किया था।
1: मतलब ये जितना काम था, ये जो उसका पेशा था, ये पहले से ही चला आ रहा था।
0: बिल्कुल, तुमने सही कहा। इसे वे अपना धर्म मानते थे और हत्या को बलि का नाम देते थे।
1: धर्म, बलि,

0: लोगों को मारने का हुनर नहीं था, वो बस लोगों को लूटना जानता था। मारने का हुनर सिर्फ बहराम के अंदर था।
1: मतलब उनके साथ एक लड़की भी थी?
0: नहीं, उनके साथ कोई और भी था, तो मैं कहूँगी हाँ एक लड़की थी। तुम पूछोगे कौन?
1: अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब उनके साथ कोई और भी था।
0: क्या उनके साथ कोई और भी था? दो लोग ऐसे।
1: क्या उनके साथ कोई और भी था?
0: हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि उनके साथ एक लड़की भी काम करती थी, पर इस बात का कोई पुख्ता सबूत आगे नहीं पता चलता है।
1: क्यों?
0: क्योंकि कहते हैं उसने बीच में ही इस ग्रुप को छोड़ दिया था। उसे समझ आ गया था कि इस ग्रुप में कुछ भी नहीं रखा है और ये सिर्फ लोगों को मारते हैं। जब तक लोगों की चोरी डकैती कर रहे थे तब तक तो उसे मजा आ रहा था, बट क्योंकि उसने ग्रुप बीच में ही छोड़ दिया तो डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम कहीं भी दर्ज नहीं किया गया।
1: अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? मतलब वो पकड़ा गया था या फिर अभी भी खुला घूम रहा है?
0: विलियम ने जब इतनी सारी जानकारी निकाली तब उसे समझ में आ गया था कि अगर इसको पकड़ना है तो व्यापारियों के बीच में ही जाना होगा। और विलियम ने अपने लोगों से कहा कि तुम भी अब भेष बदलो और इन व्यापारियों की टीम में शामिल हो जाओ। पहले लोगों से कहा गया था कि किसी से भी बात नहीं करना है, क्योंकि जब इस तरह से लोगों की हत्याएं बढ़ती जा रही थी, लोग गायब होते जा रहे थे, तो लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आ चुकी थी कि सड़क पर मिलने वाला हर आदमी एक ठग हो सकता है, जिसके कारण लोग अब बात नहीं करते थे। बट तुम्हें पता है भारत के लोग बड़े प्यारे होते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं। अगर आप उनसे दो बार अच्छे से बात करो या पूछने की कोशिश करो तो वो बता देते हैं। और यही हो भी रहा था। विलियम के लोग अपना भेष बदल रहे थे, लोगों के ग्रुप में शामिल हो रहे थे और महीनों महीनों वो उनके साथ चल रहे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि भेष बदले उन सैनिकों के साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ, उनके हाथों कुछ भी नहीं लगा, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन फाइनली उन सैनिकों की और उस ऑफिसर की मेहनत सफल हुई और उनके हाथ लगा फिरंगा।
1: फिरंगा? अच्छा, तो उसने बताया क्या कि क्या हुआ था?
0: उसकी काफी अच्छे से सेवा पानी दी गई, तब जाकर उसने अपना मुंह खोला और बताया कि वो क्या करता है, कैसे करता है। उसने बताया कि वो बहराम के साथ कम से कम 40 से 50 सालों से काम कर रहा है। वो लोग पहले रास्ते से गुजर रहे ग्रुप में जाते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं, उसके बाद बहराम अपने साथ एक हुक्का लेकर ज़रूर जाता है। जैसे ही वो अपना हुक्का लेकर लोगों के पास बैठता है, और उसका एक नियम था, वो हमेशा व्यापारियों के ही एक मेंबर से कहा करता था कि मेरा हुक्का बनाओ, और ये इशारा होता था टीम मेंबर्स के लिए कि अब इन लोगों का खेल ख़त्म करना है। दो तीन ठग तुरंत ही उस हुक्के को सिग्नल मानकर लोगों के पीछे बैठ जाया करते थे, और जैसे ही वो हुक्का आता था पहली गश्त ली जाती थी, उसके बाद ही बहराम अपना पीला रुमाल निकालता, गले में लपेट कर जोर से खींचता, 20 से 40 सेकंड के अंदर ही अपने शिकार की सांसों को बंद कर देता।
1: अच्छा, फिर वो आगे क्या करता था?
0: लोगों को मारने के बाद ठग बहराम के वो लोग उन लाशों को उठा ले जाते, कहीं खेत में कभी जंगलों में दफना देते, और कहते हैं कि जहां पर ठग बहराम उन लोगों को दफनाता था उसी के ऊपर बैठकर वो प्रसाद खाता था।
1: प्रसाद?
0: हाँ, प्रसाद। वो मानते थे ये मौत नहीं है, ये काली माँ को दी गई एक बलि है, और वो प्रसाद वो एंजॉय करते थे, जिसमें मेनली गुड़ हुआ करता था, और अगर आसपास से कोई इंसान गुजर रहा है तो उसे भी ये प्रसाद बांटा जाता था, और कहते थे कि जो इंसान इस प्रसाद को ग्रहण करता था वो भी उस ठग बहराम की टीम में शामिल हो जाता था।
1: अनबिलीवेबल यार, मतलब कोई इतना पागल कैसे हो सकता है?
0: क्या पता, लोगों की अपनी अपनी सोच। आज भी तो अंधविश्वास की हजारों कहानियां भारत में नजर आती हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अंधविश्वास का कभी कभी अंत ही नहीं होता?
1: देखो, ये विश्वास की एक कड़ी है जो एक बार जुड़ जाए तो फिर जुड़ती ही रहती है। छोड़, लेकिन आगे क्या हुआ था ये बताओ।
0: आगे जब फिरंगा ने सारी बातें बता दी तो होना वही था जो तुम सोच रही हो। 1839 के आसपास बहराम को पहली बार पकड़ लिया गया था। बहराम की शक्ल जो दिखने में एकदम राजकुमार जैसी थी, उसकी हरकतें उतनी ही उल्टी। ट्रायल में उसने खुद कन्फेस किया कि अपने हाथों से करीब 125 कत्ल किए हैं, लेकिन अगर आप कुल गिनोगे तो तो 931 यानी कि 931 लोगों को उसने अपनी

0: पूरी जिंदगी में मारा है। प्लस उसने जज के सामने ये भी कहा कि 931 तो मैंने गिने हैं, 1000 के ऊपर होते ही मैंने गिनती करना ही बंद कर दिया था।
1: 40 से 50 साल बाद भी इसे कोई नहीं पकड़ पाया तो ये कैसे संभव था?
0: क्योंकि बहराम बेहद शातिर था, वो कभी भी किसी को अपना संदेह होने ही नहीं देता था। ट्रायल के दौरान जज ने भी जब उससे पूछा था तो भी उसने यही कहा था कि सबूत किसी के हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो लोग उस लाश को तुरंत दफना दिया करते। उसके लोग इतने सफाई से काम करते थे कि कोई निशान छूटता ही नहीं था। लोग मारे तो जाते थे बट उनके साथ चल रहे लोगों को कभी पता ही नहीं चलता था कि उनकी टीम से कोई गायब हुआ है और वो गायब करने वाला इंसान कौन है। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि 931 तो उसने खुद गिने थे, 1000 होने के बाद उसने गिनना भी बंद कर दिया कि उसने कितने लोगों को मारा था।
1: मतलब इतना कैजुअली और जज से बात कर रहा है ये?
0: हाँ, ठगों के लिए कत्ल नहीं बल्कि बलि माना जाता था, काली माता की पूजा की बलि। हर हत्या को वो एक बलि मानते थे, उनका रुमाल पवित्र होता था, अक्सर उसमें एक छोटा सा सिक्का जो उसके वजन को मेंटेन करता था ताकि जब गला किसी का दबाया जाए तो वो बहुत सटीक और बहुत ठीक तरीके से हो और उसका असर तुरंत दिखे। और एक सीन, एक परिवार वाला काफिला। ये मुझे याद है जब मैं इस केस को रीड कर रही थी तब
1: नहीं, इसका कुछ और, एक और सीन है।
0: आयुषु, तुम्हें पता है इस पूरे केस में जो सबसे इमोशनल पार्ट है वो कौन सा है?
1: कौन सा?
0: एक सीन है जब मैंने पढ़ा था और मेरी आंखों के सामने जब वो आया था तो मेरी आंखें भी नम हो गई थी। एक परिवार वाला काफिला, माँ बाप छोटे बच्चे, ठग उनके साथ घुल चुके थे। एक रात जब बच्चे सो गए, माँ ने पूछा कल सुबह कब निकलेंगे। अगली सुबह परिवार अधूरा रह गया, इतना खौफ फैल गया था कि इस पूरे रूट की यात्रा उसके बाद ऑलमोस्ट बंद कर दी गई थी। व्यापार ठप पड़ चुके थे, दिल्ली ग्वालियर जबलपुर का इलाका दहशत में जीने लगा था और वो परिवार जो सुबह निकलने की कोशिश में था सोच रहा था कि आज रात आराम करके ये जो नए दोस्त मिले हैं इनके साथ अपने रास्ते को आगे, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो परिवार हमेशा के लिए सो गया।
1: और अभी तुमने बताया कि इनके गैंग में बहुत सारे लोग थे तो जाहिर सी बात है इनका कोई सीक्रेट भाषा या कोई कोड जरूर रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
0: उनकी भाषा का नाम था रामसी। इसमें कोड वर्ड्स थे, फांसना मतलब मारना, ठगना मतलब धोखा देना। सुलेमान ने बाद में इसकी पूरी डिक्शनरी भी तैयार की थी।
1: ठगी का सिलसिला लगभग खत्म हो गया था।
0: इसके बाद ठगी का सिलसिला लगभग खत्म हो गया था ना?
1: इसके बाद मुझे लगता है कि ठगी का सिलसिला तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा।
0: हाँ, और यही सुलेमान, और इसी के बाद सुलेमान को एक टाइटल भी मिला और वो टाइटल था ठग सुलेमान।
1: उन्नति, ये पूरी कहानी सुनकर क्या लग रहा है? ये पूरी कहानी सुनकर आखिर क्या लग रहा है?
0: बहुत डिस्टर्बिंग और सोचने वाली। एक इंसान 40 साल तक किसी का भरोसा जीतता है और उस भरोसे को जीतने के बाद लोगों का कत्ल करता है, और ये भी है कि वो अंधविश्वास में करता है। उसे सिखाया जाता है कि ये तो तुम हत्याएं नहीं बलि दे रहे हो, ये एक पुण्य का काम कर रहे हो।
1: और 1931 मर्डर्स नहीं, हाँ, और 931 जैसे मर्डर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मर्डर वाले मर्डरर का एक नाम है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी ये नाम दर्ज है और आज भी इस नंबर को कोई नहीं तोड़ पाया। ठग बहराम, जिसने 931 लोगों की जान ली और अपना एक रिकॉर्ड बनाया, लोग आज भी इस रिकॉर्ड के आसपास नहीं होते। यूं तो आपके आसपास कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। आपने कई सारे केसेस सुने होंगे जो सीरियल किलर्स के हैं, बट ठग बहराम जैसा कोई नहीं। फिलहाल तुम बताओ आयुषी, अंधविश्वास को लेकर तुम्हारा क्या कहना है? क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारे केसेस मुझे देखने को मिलते हैं जहां पर अंधविश्वास सबसे ज्यादा नजर आता है।
1: देखो, अंधविश्वास जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये एक कड़ी है और जुड़ती ही चली जाती है, लेकिन अगर किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया तो शायद नेक्स्ट ठग बहराम भी जन्म ले सकता है।
0: और तुम्हें पता है मेरे पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसमें एक माता पिता ने अपनी दो बच्चियों की बलि चढ़ा दी और उम्मीद किया कि वो बच्चियां सुबह जिंदा हो जाएंगी।
1: सगी बच्ची थी वो?
0: हाँ।
1: कोई कैसे कर सकता है?
0: और कमाल की बात ये है कि वो मैथ और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे।
1: है मतलब इतने एजुकेटेड उसके बाद भी?
0: बिल्कुल, और यही बात तो सुन के अजीब लगती है ना कि हमारे आसपास बहुत पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास का शिकार हो सकते हैं। वो भी मान सकते हैं कि अगर हम किसी की बलि दे देंगे तो हो सकता है भगवान हमसे खुश हो जाए, हो सकता है वो अगले दिन जिंदा हो जाए। एक ऐसा ही और कपल है जिसने खुद की बलि चढ़ा दी महादेव को खुश करने के लिए।
1: महादेव को? ये तो मुझे लग रहा है कि अंधविश्वास धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ी क्राइम का रूप ले लेगा, क्योंकि अगर इन्होंने खुद की बलि चढ़ाई तो चढ़ाई, लेकिन दूसरों को भी ये मार सकते हैं जैसे ठग बहराम ने मारा।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अपनी अगली पर्दा की कहानी गुजरात के राजकोट से ही होने वाली है।
1: तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि अगली कहानी क्या होने वाली है, जल्दी लाना प्लीज़।
0: फिलहाल के लिए आप रखिए अपना ख्याल, आप भी एक्साइटेड हैं तो ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM, ये है आपका शो पढ़ता।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

कोई नहीं था, कोई नहीं था।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग, संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए, थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम की तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे